नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों कई हैं। एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल्ट से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्त, दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वो दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है, तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है, लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है।
एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदी हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है? ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, भूख न लगना, हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, गिल्ट की भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज यह है दोस्तों कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है, तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद जरूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि परिवार से प्यार, अपनापन मिल रहा है, तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है, तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डालें। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए, तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार दे और उसे ये यकीन दिलाए कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डाले। नियमित रूप से उसे बात करते रहे, ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक चेतन को इजाजत दीजिए, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: देखिए यहाँ बैठी सभी महिलाओं की चूड़ियाँ भी खनक गई हैं आपके इस गीत से।
1: मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये गाना मेरी जिंदगी का, मतलब मैं क्या कहूँ, एक ऐतिहासिक गाना है
0: जी।
1: जब पहली बार मुझे भारत की कोकिला लता जी के साथ लाइव,
0: बिल्कुल
1: देखिए उस जमाने था कि ऐसा नहीं था कि के पहले बजा के चले गए, आज तो सब कुछ वैसे भी कीबोर्ड पे हो रहा है
0: जी।
1: पर तब इतने म्यूजिशियंस और ये लाइव, एक तरफ लता जी और एक तरफ मैं, और जिसने कभी कुछ ज्यादा गाया ना हो, सीखा ना हो। और मैं शिव जी को भी याद करती हूँ, पंडित शिव जी को भी, और अपने हरिप्रसाद चौरसिया जी को भी याद करती हूँ, और सबसे पहले यश जी को, और श्रीदेवी जी को, और सरोज खान जी को। देखिए मेरे लिए बड़ा इमोशनल मामला है, इनमें से आधे लोग रहे नहीं है, पर गाना कैसे बनता है, कैसे पकता है। और इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जब सरोज जी ने देखा कि मैं डांस भी कर रही थी, सर्दी का मौसम था और धौरों पे, मतलब रेगिस्तान के टीलों पे, तो उन्होंने कहा ये तो ज्यादती है कि गाना इन्होंने गाया है और ज्यादा हिस्सा श्रीदेवी जी के पास है
0: जी।
1: तो उन्होंने एक लता जी की लाइन पे मुझे डांस करवा दिया। अब मुश्किल ये थी कि इसको डब करना था, तो कैसे ये गाना बाद में हरी जी ने, और उनका सुर बहुत हाई है
0: जी,
1: और मेरा ऑक्टेव नीचे है, कैसे ये हुआ, वो है सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी
0: जी।
1: और ऐसे गाना बनता है जो कि टीम वर्क है। तो आज मैं समर्पित उन हमदम परिंदों को जिनके दम से जिंदगी के लम्हे महक गए, मगर उन परिंदों की याद बहुत आएगी जो मेरे गुलशन में दो पल को चहक गए।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो लता जी के साथ बिताए पल के बारे में आप बताना भी चाहती थी, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा मैं जरूर बताना चाहूंगी, तो बताइए ना कि इस गाने को गाते वक्त लता जी के साथ क्या माहौल रहा आपका।
1: पहले तो मैं ऐसे कांप रही थी, मैं क्या बताऊं आपको, कि जिनको जिंदगी भर आपने, आपके लिए तो मतलब ऐसा है कि
0: भगवान
1: भगवान
0: जी,
1: उनके दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे
0: जी, जी।
1: और वो सादगी का एक ऐसा सरस्वती रूप, तो वो आई और शिव जी हरि जी ने मुझे कंफर्टेबल कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी। अब जब मैंने उनका सुना तो मेरी तो आवाज ही नहीं निकली, वैसे भी थी नहीं, और भी गड्ढे में गई। फिर जब रिकॉर्डिंग करने गए तो बाद में उन्होंने एक मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आपके गुरु जी कौन है। बस इस बात से मैं मतलब सोच रही थी, या तो गुरुजी की मार पड़ेगी गुरुजी को, और या फिर ये उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, क्योंकि मैंने सीखा नहीं था कहीं। उनके साथ गाने में बहुत अच्छा लगा, मैं जो कुछ मैंने सीखा मजदूरों से, बंजारों से, सुन सुन के, मेरे पास कान है आवाज का पता नहीं
0: जी।
1: तो
0: आपकी आवाज में पूरे राजस्थान की मिट्टी है।
1: तो लता जी के साथ दो गाने हो गए, ये भी था और रैना बावरी भाई, अनु मलिक जी मैंने सुना आपके साथ आने वाले हैं,
0: आने वाले हैं।
1: तो उनके साथ जाल फिल्म का एक गाना था, वो भी मैंने लता जी के साथ गाया था
0: जी।
1: पर ये

0: इमोशनल यादगार है। बहुत सुरीली गायिकाओं को भी मौका नहीं मिलता है कि लता जी के साथ गाएं, और मुझे मौका मिला इसके लिए मैं यश जी की और हरि जी और अपने शिव जी की बहुत बहुत मैं क्या आभारी हूँ, शुक्रगुजार।
1: और हम भी ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपसे हमें आज मिला दिया। हम उनके आपकी आंखों से या आपके मन से उन तक पहुंच रहे हैं आज। जी, जी, बहुत बड़ा पल है हमारे लिए, विविध भारती के लिए, सभी विविध भारती के परिवार के सदस्यों के लिए कि आज एला जी दोस्तों हमारे स्टूडियो में पधारी हैं, अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिता रही हैं। तो एला जी आप गायिका हैं जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अभिनेत्री हैं और आप लेखक हैं। आपकी अभी अभी एक किताब आई पर्दे के पीछे।
0: जी जी,
1: है ना,
0: इसलिए लोग देख तो नहीं सकते।
1: हाँ,
0: पर मेरी किताब ये है,
1: क्या
0: पर्दे के पीछे,
1: बहुत सुंदर, पर्दे के पीछे। और आप भी कितनी खूबसूरत लग रही है पर्दे के पीछे, देखिए। तो इसमें आपने अपने जीवन को खोल कर रख दिया है।
0: जी,
1: क्या कहना चाहती हैं आप, मतलब ये आपका आत्म कथात्मक एक
0: बिल्कुल जिंदगी पूरी है। क्योंकि क्या हुआ, देखिए ये गाना मैंने गाया था।
1: हाँ,
0: तो लोग बाग जो होते हैं ना, कलाकार को कलाकार नहीं समझते हैं। और गायन को भी, क्योंकि फिल्मों में सिचुएशंस होती हैं। एक गाना मैंने गाया था, मैं तो कह सकती हूँ चोली के पीछे, तो उससे लोगों ने मतलब उसको जैसे ऐसे मान लिया जैसे कोई बहुत बुरा गाना गाया हो, जबकि इसमें लड़की की तो कोई बुराई नहीं है। ये लड़के हरकतें करते हैं जो ऐसी बातें पूछते हैं, बट एनीवे वो मेरा एक, मेरे लिए एक झंडा हो गया कि ये तो यही गाना गाती हूँ। पर मेरी जिंदगी पर्दे के पीछे, मैंने रंगमंच किया अपने बचपन से, जिसके आगे आपको याद हो बचपन में मखमल का पर्दा हुआ करता था।
1: जी बिल्कुल।
0: फिर छोटा स्क्रीन, फिर बड़ा स्क्रीन, तो पर्दे। और फिर जहाँ राजस्थान से हूँ वहाँ लाज का भी पर्दा है, घूंघट का भी पर्दा है। तो पर्दे के पीछे जो मेरी ये ऑटोबायोग्राफी है, उसमें ना केवल मैं हूँ, वो भी तमाम औरतें हैं जो मेरे इर्द गिर्द मुझे मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा देती रही। इसमें बहुत कहानियां हैं, और खास तौर से औरतों, क्योंकि औरत की नब्ज को मैं समझती हूँ, उसके दर्द को समझती हूँ, उसकी अंदर के जोश को मैं अपने गानों में सेलिब्रेट करती हूँ, पर उसके दर्द को मैं अपने नाटकों में निकालती हूँ। तो पर्दे के पीछे मैं एक माँ भी है, एक जवान लड़की भी है, उसकी मोहब्बतों का भी, स्कूल की शैतानियों का भी जिक्र है, फिर एक नानी का भी जिक्र है, बहुत सारी चीजें, एक मदर भी हूँ। तो औरत तो बहुत दौर से गुजरती है,
1: और आपने औरतों पर बहुत काम किया, इस पर भी हम आपसे एक सवाल करेंगे। लेकिन क्या पर्दे के पीछे ये जो किताब आपने लिखी है, इसे लिखना अपनी जिंदगी को दोबारा जीने जैसा था आपके लिए, कि कलम हाथ में लेने की जरूरत आपको कब महसूस हुई?
0: देखिए वैसे तो मैं काफी लिखती रही, लोगों को पता नहीं है, कभी कभी कविताएं लिखती थी, कभी मैं नाटकों का अनुवाद मैंने बहुत किया है, नाटक लिखे।
1: जी, जी।
0: पर जहां तक पर्दे के पीछे के लिए मुझे जो पब्लिशर थे वो पीछे पड़े थे, आप तो जानते हैं आजकल वो स्टार से उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। पर मुझे तो ऐसा था कि कलम जैसे हाथ में आई ना, तो मेरे लिए एक संवेदात्मक जर्नी हो गई, बचपन को पुनः जीना,
1: बिल्कुल
0: अपने आप में एक हिंडोला, जैसे कहते हैं ना झूले पे गए और झूले से वापस आप आए, तो वो उस दौर से दोबारा गुजरना मेरे लिए एक उपलब्धि थी। भावनाओं को मैं ऐसे समेट पाऊंगी, जिंदगी तो बहुत बड़ी है।
1: जी।
0: तो मैंने एक जगह किसी और का ही था कि जिंदगी गुजर गई है किरदार निभाते निभाते, मैं कौन हूँ ये सवाल आज भी है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने इस किताब में उन महिलाओं का भी जिक्र किया है जो आपके अनुभव में रही, आपके साथ रही।
0: बिल्कुल, जो मेरे साथ काम करती थी, जैसे पूरी की एक अधूरी कहानी, पूरी उसका नाम था, पर उसकी जिंदगी में वो जिस जाति से आती थी, बंजारन थी, उसका क्या था, उसके पीछे क्या कहानियां थी। या फिर मेरी दोस्त मानू ने सुसाइड क्यों किया, पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे मैंने अभी नाटक किया है, पर तब औरतों को आधा हिंदुस्तान नहीं समझता है कि जब वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके लिए एक जीवन को पुनः पाना है और जीना है, उसमें हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, तो ये सब चीजें, मानू का मरना या पुष्पलता का कैसे भगना, ये सब ये किरदार मेरी मस्तिष्क में समाते रहे। और सबसे बड़ी बात तो है मेरी माँ, जो जिनका एक चीज है मेरी किताब में लिखी हुई है, आवेश में कभी विवेक मत खोना। ये क्लैपर बोर्ड था, यानी आवेश तो जवान होंगे तो आएगा ही आएगा, पर जब भी ऐसी बात आती थी तो क्लैपर बोर्ड गिर जाता था। आवेश में कभी विवेक, सो मदर, उनकी लोकोक्तियां बहुत कुछ है, मतलब मैं सोचती हूँ पढ़ना चाहिए लोगों को।
1: जी, बिल्कुल।
0: मेरे लिए नहीं पढ़ना चाहिए, औरत को समझने के लिए
1: पढ़ना चाहिए। तो हमारी जो श्रोता इस वक्त आपसे आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं,
0: सुंदर महिलाएं बैठी
1: सामने, जो खूबसूरत महिलाएं बैठी हैं, उन सबसे

0: अनुरोध करते हैं कि और मैं भी ये किताब जरूर पढ़ूंगी और इसका इसके बारे में आपसे विचार विमर्श भी करूंगी कि इस किताब को पढ़ने के बाद क्या महसूस हुआ। अब एक गाना जो आप सुनना चाहती थी, आपने कहा कि मैं पुराने दौर में लौटना चाहती हूं क्योंकि विविध भारती में लोग पुराने गानों को पसंद करते हैं, तो आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा दें फिल्म ताजमहल से।
1: अरे बिल्कुल, ये तो मेरा पहला रोमांस था। करिए करिए
0: जी, सुनते हैं।

0: तो बताइए.
1: तो ऐसा हुआ
0: जी
1: कि देखिए उस जमाने में आप तो कह नहीं सकते थे ना माँ बाप से कि हमें कुछ हो रहा है. तो गर्मियों की छुट्टियों में
0: जी
1: एक हमारे दूर के रिश्तेदार भी ना कहें कम्युनिटी के कुछ तो बड़े हैंडसम से थे. सफेद चिकन का कुर्ता पजामा पहन के आए और बहुत अच्छा गाते थे.
0: जी जी.
1: और मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए गाया हो.
0: अच्छा
1: अच्छा. जो कुछ भी था उसके बाद सारी दोस्ती विविध भारती ने निभाई. यानी कि जब कोई खतो किताबत ना हो सके और ये गाना आपकी भावनाओं को मतलब कहीं ना कहीं आपको सहारा दे
0: जी.
1: तो क्या होता है उसी वक्त आप चिट्ठी लिखने बैठ जाते हैं और आपके आंसू टपक रहे हैं और आप चाहते हैं टपके ताकि अगले वाले को पता पड़े कि हम कितने रो रहे हैं. पर ये गाना वाकई में मुझे पता नहीं भगवान वो जिंदा हो जहां भी है पर वो एक वो जो जवानी मैं जो म्यूजिक जो काम करता था वो भी विविध भारती
0: जी. बिल्कुल.
1: क्योंकि आकाशवाणी में तो क्लासिकल और ये सब कुछ चलते थे. तो आप लोगों का बहुत सहयोग है कि आपने हमें उस आयु को जीने का एक
0: मौका दिया
1: और हमारी भावनाओं को समझा.
0: समझा बिल्कुल.
1: हर गाना लगता

0: वजह से आप हमारे लिए बजा रही
1: हैं। बिल्कुल सही कहा इला जी, हमारे श्रोता भी लगातार सुबह से लेकर रात तक विविध भारती सुनते हैं और इस वक्त भी आपको देख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इला अरुण जी का हार्दिक स्वागत है, साथ ही विविध भारती परिवार के साथ विविध भारती की स्थापना दिवस की भी हम हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष बधाई दे रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज इला जी भी ओल्ड इज गोल्ड है, जियो हजारों साल, हम श्रोताओं की लख लख दुआएं हैं इला जी के नाम भी और विविध भारती को भी।
0: बहुत धन्यवाद।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि इला अरुण जी इज ऑफ माई फेवरेट गायिका, बेस्ट ऑफ इंडिया रेडियो चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जहां पर आज इला जी पधारी हैं और इला मैडम का हम स्वागत करते हैं। और लिख रही है कि आज मंदाकिनी जी और इला जी को विविध भारती के स्टूडियो में साथ देखकर बहुत ही आनंद की जो हमें प्राप्ति हो रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है।
0: मुझे भी आनंद आ रहा है आपको देख के। आप तो मुझे साधना की याद दिला रही, साधना कट।
1: अरे
0: और 70s में जो आप लोग तैयार हुए ना, वो कमाल है। किसी ने, दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी ने पोलका डॉट पहना है, किसी ने सीक्वेंस पहना है, किसी ने, सब चमकीले बढ़िया भड़कीले लग रहे हैं और पुरानी तारिकाओं की याद दिला रहे हैं
1: जी। और ये सब आपके लिए है, हम सब आपके लिए तैयार हुए हैं और विविध भारती
0: हमारा काम है, ये काम, ये महिलाओं का काम क्या है, हर उत्सव को मनाना
1: जी। तो इला जी आज हम उत्सव मना रहे हैं विविध भारती की स्थापना दिवस के रूप में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके गले में जो राजस्थान की मिट्टी है, आपके गाय गीतों में जो आपकी आवाज में एक अलग ही धमाल है, जैसे कि रेशम का हा, ये जो आप करती हैं, ये है क्या? हुल्लड़, एक ठसक, एक देसी अंदाज, ये क्या है? मतलब आपने इस अंदाज को कैसे बनाए, कुदरती था आपके अंदर या आपने इस अदा को कहीं से संवारा? क्योंकि हमारे श्रोता आपकी इस अदा के कायल हैं और हम भी कायल हैं।
0: मैं इसमें राजस्थान की शुक्रगुजार हूँ। वो जो बेझिझक बना है, जो उनमें, जो उनका फड़त का लहंगा और उनके चूड़े और उनके, उनकी आवाजें और उनका निसंकोच होकर के गाना, ये शायद कहीं कानों में पड़ता रहा। हमारी माँ तो हमेशा ये कहती थी, तुम हर वक्त मत गाया करो, अगर उनका बस चलता तो मैं आज यहाँ होती नहीं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक एप्रिसिएशन की, एक कान दिए थे और कहीं ना कहीं मैं उनको जैसे गेहूं वाली हैं, जैसे कोई भी वहाँ भीख जो है वो मांगता नहीं है, वो भी कलाकार
1: ही
0: होता है।
1: बिल्कुल, वो उनमें ही।
0: और उनमें हमें क्या फर्क है, हम परफॉर्मेंस करते हैं, पैसे लेते हैं, वो उनके पास स्टेज नहीं, तो वो सड़क पे आते हैं, गाते हैं, उनकी जो धुने हैं, उनकी जो मस्ती है, वो कहीं ना कहीं मैं राजस्थान कि को इस मामले में मानती हूँ कि राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया है
1: जी, जी।
0: और ये खराश या जो कुछ भी है, मुझे ईश्वर ने अगर गला ऐसा दिया होगा, जो कि मम्मी कहती थी कि क्या तुम्हारी भारी आवाज है, बट
1: यही आवाज आपके लिए वरदान बन गई
0: जी। जो कई कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने उसे प्यार किया, या उस समय जिस समय पतली आवाजें हर जगह थी, या पार्श्व गायिकाएं या प्लेबैक सिंगर,
1: पतली आवाज था
0: उस समय, कभी भी ऐसा नहीं था कि मोटी आवाजें आए। तो फिर हमारी रेशमा जी तो मेरी रोल मॉडल रही है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। फर्क इतना है कि वो सब एक गायक घरानों से थी, उनके कहीं ना कहीं उनके खानदानी सारंगी और सब था, मैंने एक्वायर किया है, मैंने उन लोगों को अपना एक, जिसको कहते हैं, मेरे लिए एक प्रेरणा रहे हैं और मैंने उनसे कहीं ना कहीं फेस्टिवल से, उनके अंदाज से कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हुई। और फेस्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने चाहे पूरा भारतवर्ष देख लीजिए, राजस्थान नहीं है, कोई भी फेस्टिवल बिना संगीत के अधूरा है। और अगर आप फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे, आज मैं कह सकती हूँ कि मैं न केवल राजस्थानी बल्कि शादी जिनके घरों में होती है उनकी मैं एक महानायिका रह चुकी हूँ।
1: बिल्कुल,
0: अगर 5 फंक्शन होते हैं, एक इला अरुण का जरूर होता था।
1: बिल्कुल,
0: तो वो हमेशा था कि वो ट्रेडिशनल, लोग चाहते थे कि कुछ ट्रेडिशन आए, तो हमें अपने जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए। और ट्रेडिशन ही है जो आज दोबारा फैशन में आ गए हैं
1: और ये हमारी हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, जो कहीं नहीं जाती,
0: कहीं नहीं जाएगी।
1: और आपने कहा कि हर फेस्टिवल में आपका एक गाना जरूर होता है, एक गाना जो अब हम लेकर आए हैं आप ही की पसंद का, उसको सुनकर भी हमारे श्रोता जो है झूम उठेंगे। और मुझे लगता है खासतौर से महिलाएं आपके गानों को सुन सुनकर अपने घाघरे के जो स्टाइल है ना, वो बदलती रहती है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत आप ही की आवाज में।

कहता है निकला घना मोर्चा, कोई प्रेस वाला, कोई मोटा लाला, कोई संतरी जी, कोई मंत्री जी, कोई या बोले, कोई वाह बोले।

0: वाह वाह, क्या घाघरा घुमाया आपने।
1: देखिए ऐसा है कि ये इसके पीछे की जो कहानी है ना वो गजब की है
0: जी।
1: एक छोटी सी कहानी है, एक लड़की है वो गांव में खड़ी है और खीरा खा रही ककड़ी
0: जी।
1: उतरे हुए मिनिस्टर का लड़का था और वो आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसको लकड़ी मार देती है। वो कहता है कि देखो भाई मैं मिनिस्टर का लड़का हूँ, तुम नहीं जानती हो। वो कहते होगी। बात यहाँ से बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते बढ़ती, क्योंकि वो लड़की स्वाभिमानी है। वो कहती है ये मेरा वस्त्र नहीं है, ये मेरा शस्त्र है। अगर मैंने 20 मीटर का घाघरा घुमाया तो जैसे कि रेगिस्तान में आंधी आती तुम सब उड़ जाओगे।
0: अरे वाह।
1: उसके बाद

0: ऐसा थी उसकी पूरी जर्नी है। उसके बाद कोई आया मोटा लाला, प्रेस लाला, सीटी सर सर बजाती, पुलिस दौड़ी चली आई, कंगन मारा, उतारा, हथकड़िया पहनाई थानेदार के आगे। फिर मैं मुस्काई, मैंने दियो धच को, उन्हें खायो लच को, थोड़ी टेढ़ी हुई, थोड़ी मेढी हुई, हमारी कमर को मैंने जरा सी लचकाई, तो अपना जो उसका
1: एक
0: दूसरा, एक तरफ तो स्वाभिमान है, दूसरा जानती आदमी को कहां मैं गिरा सकती हूँ, ल्योर कैसे कर सकती हूँ। और एंड में फूलन देवी की तरह से होता है, इन्हें टिकट दिलाओ, इन्हें मंत्री बनाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ले बना। सो दिस इज नॉट पॉलिटिकल, इट इज अबाउट विमेन। औरत को कमजोर मत समझना,
1: बहुत सुंदर।
0: तो ये गाना उस पे था, इसकी रिदम अच्छी है। ये पहली बार राजस्थानी में रैप,
1: या सबसे बड़ी बात,
0: नहीं लड़की में ऐसी, नहीं लड़की में वैसी, हमारे सामने तू क्यों अकड़ी, क्यों तू क्यों झगड़ी, ये सारा कुछ जो है 7.5 मिनट का रैप मैंने लिखा है।
1: राजस्थान का पहला रैप,
0: है
1: जो इलाजी की आवाज में है। श्रोताओं, आप इस वक्त इलाजी से रूबरू हैं और हम आप सभी श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि अपने संदेश हम तक पहुंचाएं। इलाजी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कम शब्दों में अपनी बात रखें, इलाजी से हम जरूर वो सवाल पूछेंगे और वो उसका उत्तर देंगी। तो चूंकि बात चल रही थी आपके लोकगीतों की, अभी इन दिनों एक बहुत खूबसूरत लोकगीत आपका बहुत चर्चा में है, चरखा, जिसका जिक्र आप भी करना चाहती थी। तो ये गीत जो चरखा है, अगर सोशल मीडिया में जाएं तो लाखों फॉलोवर इसको,
0: 1 करोड़ हो चुका है,
1: 1 करोड़ हो चुका है,
0: 10 मिलियन।
1: क्या है इस चरखा लोकगीत में जो आपके दिल के इतना करीब है? और आपने मुझे कई बार कहा कि चरखा लोकगीत पर हम जरूर बात करने वाले हैं और अपने श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं सारी स्त्रियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि खुल के सामने आई, चाहे वो पुलिस की हो। आप शॉक्ड रह जाएंगे, वो शायद इंदौर था या बंगलोर था, वो सिक्योरिटी की लेडी थी और अपनी ड्रेस में थी, उनको अलाउड नहीं था कि वो सेलिब्रिटी से बात करें। उसने कहा मैडम आप मेरी रील देखिए, मैं जब घर जाती हूँ तो मैं नारी हो जाती हूँ। ये चरखा है वैसे 400 साल पुराना है, इसे आदिवासियों ने भी गाया, पर जब मेरे सन इन लॉ ध्रुव गाने करने इसको, क्योंकि देखिए लोक संगीत को अगर जिंदा रखना है तो उसको हमें एक नया पैकेज लाना पड़ेगा, वरना वो क्या होगा, चौपाल जैसे हम करते थे। ये तो किसानों का, नहीं है जो ताकत लोक संगीत में, हर म्यूजिक डायरेक्टर लोक संगीत को ही चुरा रहा है क्योंकि वो धुने, वो आवाज। तो ये जो चरखा मैंने जब दोबारा गाया तब यंगर जनरेशन को समझ में आया कि लोक संगीत क्या है। मैं तो चरखे से वैसे भी, चाहे कबीर ने चरखा कहा हो, चाहे वो हमारे सूफी गानों में आया हो, पर ये चरखा औरत की बात करता है कि औरत जब सूत काटती थी, गांधी जी का चरखा तो
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: पर ये औरत का वो चरखा है कि पहले वो अपना धागा बुनती थी, उसके बाद वो उससे अपना वस्त्र बनाती थी। और वो कहती है कि चरखे की कमाई से मैं नणदल ने परणाई, चरखी
1: एक जो मैंने
0: ब्याह किया है
1: इसकी कमाई,
0: ये
1: यानी एक औरत की कमाई,
0: जो है वो ये। हमारे यहाँ जोधपुर की भी एक आपके अनाउंसर है जो मुझे मिली थी, और मैं चाहूंगी कि वो जहाँ भी बैठी इस गाने पे डांस करें, क्योंकि चाहे वो जोधपुर है, चाहे बीकानेर, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई सा भी हिस्सा है, चरखे ने जो दोबारा एक क्रांति लाई है और औरत को जो एक फ्रीडम दी है, यानी जिन पोशाकों में उन्होंने डांस किया है वो कॉम्बिनेशन तो मुझे भी नहीं पता थी कि क्या पर्पल के साथ चटनी ग्रीन हो सकता है, क्या कथई रंग के साथ बैंगनी आ सकता, ऐसे ऐसे बेस पहन के ट्रेडिशनल चूड़े, ये सब चीजें जो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ वो पहन के औरतें आई। तो आप ये चरखा गाना मेरी तरफ से मेरे श्रोताओं को 70वीं वर्षगांठ विविध भारती पे मैं भेंट करना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल, हम सुनवाने वाले हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप ध्रुव का नाम ले रही हैं इस संगीत से, इस लोक संगीत के साथ, तो ध्रुव ने किस तरह से लोक संगीत की जड़ों को समकालीन संगीत के साथ जोड़ा, आप क्या सोच रही हैं?
0: अब उनके जीवन में एक पुरातन आ चुकी थी इला अरुण, जो कि उनकी मदर इन लॉ हैं और वो वर्ल्ड म्यूजिक करते हैं। मैंने उनके साथ एक जो आजकल नया ट्रेंड चला है कोक स्टूडियो में, निमरी निमोली भी मैंने गाया है। ही इज वेरी गुड, क्योंकि वो खुद भी गायक भी हैं, तो वो गाने की ताकत को समझते हैं और ये भी समझते हैं हमें कहाँ तक पहुंचाना है इंटरनेशनली, हमारी ऑडियंस तो इंटरनेशनल भी है। तो वो जो उन्होंने भरा है ना, और उसकी चरखे की मादकता को रखते हुए जो इसका ग्रूव बना है, ग्रूव इसकी ताकत है। मतलब अगर ध्रुव मेरी ताकत है तो ग्रूव इस गाने की ताकत है।
1: जी, जब ध्रुव की बात चली है तो ये गीत तो हम आपको सुनवाएंगे। हम लगे हाथों आपकी बेटी इशिता जी की भी बात कर लेते हैं।
0: जी जी, जी।

0: और इशिता की बात इस वक्त हम कर रहे हैं, वो भी कला और अभिनय की दुनिया से जुड़ी हुई है
1: जी। वो गाती भी बहुत अच्छा है, अच्छा। पर पता नहीं क्यों नहीं पब्लिकली गा रही है, पर गाती भी बहुत अच्छा है।
0: तो क्या कभी ऐसा हुआ इला जी कि पुरानी कला और नई कला के बीच में, या जो बदलते तौर तरीके हैं युवा पीढ़ी की ओर से, उस सोच को लेकर कभी आप दोनों में कोई टकराहट हुई?
1: किस वक्त नहीं हुई, हर वक्त टकराहट होती है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल में वो तो उन्होंने देखा है कि मैं मेरी माँ को पुणे जी रही हूँ, पर वो महाराष्ट्र में रही हैं और मराठी तो आपने देखा फरफट बोलती हैं वो, तो
0: जी,
1: बहुत ज्यादा बिंदास भी हैं, ह्यूमर भी अच्छा है, पर मैं उनसे बराबर ये बात कहती हूँ कि मैं पुराने को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती हूँ। पुराने ने जो दिया वही हमारी ताकत है। टकराहट होती है पर वो वाद विवाद अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है।

0: नाद आया था टकराहट से, तो मेरी जीवन का नाद है, नाद स्वर है, और ये टकराहट मुझे पसंद है
1: जी। और ये टकराहट होनी चाहिए,
0: होनी चाहिए,
1: हेल्दी टकराहट,
0: ना वो दबी रहे ना मैं दबी रहूं, और इससे कुछ अच्छा निकल के आए तो अच्छी बात है।
1: चलिए तो पहले चरखा लोकगीत सुन लेते हैं। चूंकि बात ध्रुव और इशिता की हमने की, तो आप अपनी ग्रैंड डॉटर को नहीं भूल सकती है। आपने बातचीत करते समय उनका जिक्र किया था,
0: उनका एक गाना बाद में सुनाइएगा,
1: और उस पर आपके विचार भी लेंगे कि किस तरह से आप गीतों को जीती हैं।
0: जी,
1: अभी एक चरखा लोकगीत सुनते हैं
0: जरूर।

0: मुझे ये कहना है कि एक तो बड़ा अच्छा है
1: जी,
0: लोग पता नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ जो 70 साल मन रहे हैं
1: जी,
0: यानी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, कोई अनाउंसर है, कोई स्टेशन डायरेक्टर है, सब डांस कर रहे हैं इस पे, वैसे ही जैसे राजस्थान में चरखी पे डांस होता है। पर यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं जितने भी शोज बाहर भी मैंने किए और यहाँ भी किए, मैं लंगा और मांगनियार
1: जी,
0: ये जो हमारी कम्युनिटी है, ये जो आपने आलाप सुनी होगी,
1: बिल्कुल,
0: तो जब ये पहली बार रिकॉर्ड कराए ना, तो मैं तो इनके बाप दादों के साथ कर चुकी हूँ। तो जब एक एक लड़का आया, उसको मैंने कहा, उसने कौन सा गाना है, अरे मैंने कही तो तुम्हारा ही गाना है, तुम्हारे दादाजी गाते थे
1: जी।
0: तो देखिए, मैं उनके गाने को प्यार कर रही हूँ, और वो लोग जो है, वो लोग सब कुछ आज के पॉप पॉप बनना चाहते हैं, सनग्लासेस लगाना चाहते हैं, जर्सी पहनना चाहते हैं, और मैं चूड़े पहनना चाहती हूँ, मैं टैटू कराना चाहती हूँ, चाहती नहीं हूँ, ये फैशन नहीं है,
1: नहीं ये आपके अंदर है,
0: ये मैंने मुझे अगर मैं ना पहनूं,
1: हाँ।
0: सॉरी बच गए होंगे ये, तो मैं उतारने वाली थी, पर मैंने आज क्यों नहीं उतारे, हर स्टूडियो में मेरा ये झुमका छूट जाता है
1: जी, जी।
0: क्योंकि वो टन टन करता है, फिर वो स्टूडियो की इंजीनियर जैसे अभी आई थी, उन्होंने कहा आपका कुछ बज रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, पर उतारूंगी नहीं, हर बार उतारती हूँ वो वहीं रह जाता है।
1: बहुत अच्छी बात, लेकिन आज आपको नहीं उतारना है। और पता है, अभी जब सभी लोग डांस करने लगे थे तो लगा कि हम जैसलमेर आ गए हैं, रेगिस्तान के धुरों में आ गए हैं। आपने विविध भारती के स्टूडियो को एक तरह से रेगिस्तान के धुरों में तब्दील कर दिया,
0: मुझे बहुत मजा आया, एक्चुअली उन्होंने मुझे जोश दिलाया
1: जी। तो हमारे श्रोता भी कह रहे हैं कि आज एला जी को लाइव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन में दूरदर्शन पर इनके गाने बहुत देखने सुनने को मिलते थे, और लिखते हैं कि आप भी एक गीत गाकर हमें बताइए, क्योंकि हम आपको सामने से गाता हुआ देखना चाहते हैं, तो एक गीत आपसे हम गवाएंगे, लेकिन चूंकि
0: ये मत करिएगा, क्योंकि क्या है कि ये जो उम्र का एक वफा गुजर गया, तो उसके बाद मैं अब गाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो, अब आप गाइए ही मत, अब आप बंद कर दीजिए।
1: नहीं नहीं, हमारी श्रोता बिल्कुल आप और एक ही लाइन आपसे सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं,
0: हाँ अभी मुझे थोड़ा रेस्ट दीजिए, क्योंकि कल ही मुझे डॉक्टर ने कहा था कि देखिए आपको कुछ दिन का, क्योंकि परसों मैंने एक नाटक किया था लाइव, है ना, तो सच बोलना चाहिए, तो मैंने बहुत जोर का बोला, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने थोड़ा उसको डैमेज किया, हाँ। या तो आप थोड़ा वॉइस रेस्ट लीजिएगा, और कुछ नली दी मुझे ऊं करके पानी में करना है, वो सब हुआ। दूसरा, मैं गांधारी का रोल बहुत अच्छा करती हूँ, तो जब मैं श्राप देती हूँ ना, तो कृष्ण जी अगर होते उससे मेरी आवाज श्राप से जाती रही, तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है।
1: बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है और हमारे श्रोता बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपके पति पर हम बात करते हैं, आपके जो अधिकारी नेवी अधिकारी रहे अरुण
0: जी,
1: उनकी जिंदगी जो है समुद्र और सफर से जुड़ी रही हमेशा, और आपकी दुनिया गीत संगीत की मिठास से लगातार जुड़ी रही। तो कभी ऐसा हुआ कि समुद्री सफर में और आपके सुरों के सफर में कभी टकराव हुआ हो, भूचाल आ गया हो, या फिर किस तरह का योगदान आपके अरुण जी का आपके जीवन में रहा?
0: अरुण जी, मैं बताऊं, जैसे कि जहाज पे लंगर कहते हैं ना, एंकर, एंकर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो जहाज हिलने लगता है
1: जी। बिल्कुल,
0: अरुण जी मेरी जिंदगी के बहुत ही सशक्त एंकर रहे हैं, ही हैज ऑलवेज एडमायर्ड। और एक आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्पेस की, और उन्होंने मुझे ये स्पेस दी। अगर आप खुला छोड़ेंगे, तो जैसे मम्मी कहती थी कि जैसे जहाज को पंछी पुनी जहाज पर वापस आए, वो हाल है। उन्होंने मुझे उड़ने दिया, और मैं कभी भी इस बात को भूलूंगी नहीं। सो दैट्स अ वेरी गुड एडजस्टमेंट। वो आर्टिस्ट नहीं, पर आर्टिस्ट की कद्र करते हैं। जैसे मैं अपना उठती हूँ, मेकअप होता है, ये करते हैं, ही ऑलवेज एडमायर्स, और हो सकता है अभी सुन रहे हो, तो शायद अरुण का मतलब, अगर मुझे करेक्ट करिए, जैसे सूर्य पृथ्वी का होता है, पृथ्वी उसकी धुरी पे, पृथ्वी की धुरी पे सूर्य घूमता रहता है, तो वो ही हमारा संबंध है। और मैंने अरुण जी के

0: साथ 3-4 वॉयज भी किए, मतलब मैं 35-35 40-40 दिन, उन दिनों में जब मैं बहुत यंग थी तो मैंने दुनिया के 3-4 चक्कर काटे हैं।
1: आप अभी भी उतनी ही यंग हैं।
0: तो वो जो अकेलापन होता है ना, वो आपको और मौसिकी आपके अंदर की कवित्री जगती है, आपके अंदर के सुर जगते हैं। बट ही हैज बीन नेवर हर्डल, ये तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हर औरत को जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए जो उसको उसके लिए थोड़ी सी स्पेस दे।
1: जी जी,
0: क्योंकि औरत जो है ना वो खिलती है
1: जी।
0: अगर आपको वो हर मिनट क्वेश्चन करते रहेंगे, आप सब भी आ रहे हैं, काम पे आ रहे हैं, तो फिर बात बिगड़ जाती है
1: जी।
0: या हो सकता है अगर कलाकार से शादी की होती, कहीं हमारा ईगो ही ना टकरा जाता तो अच्छा है। मतलब सब कुछ ठीक है, हाँ श्रोता हूँ, मेरी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है।
1: बिल्कुल, आपकी जिंदगी में बिल्कुल सही चल रहा है। और चूंकि आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, आपने अभी अपनी बेटी और दामाद को लेकर बात की, अभी हमने अरुण जी के बारे में बात की, और आप हमसे जब फोन पर बात कर रही थी तो बार बार अपनी ग्रैंड डॉटर की बात कर रही थी कि उन्हें नए गाने बहुत पसंद है। आपने कहा टन टन तारा और इस तरह के गाने।
0: अरे मैं इसका जोक ये बता रही हूँ, उनका नाम है, एक का नाम है अमाला, एक का नाम है अलाया। अमाला जब पैदा हुई थी ना तो ये गाना कोई मान नहीं सकता कि इलारू बजाएगी, यानी इतना बड़ा उनका खोपड़ा था और उस समय उनके बाल नहीं थे। दिल ने मारी टंक मारी टन टन टन टन, तो वो मुझे अभी तक याद है। पर दोनों बच्चे उनके, क्योंकि पिताजी म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, दोनों पियानो बजाते हैं, दोनों गाते हैं। अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि उनमें से कोई रेशम का रुमाल एक दिन गाए, क्योंकि ये बम्बई के बच्चे तो अंग्रेजी गा रहे हैं, वो मेरा दुख है। पर मैं चाहती हूँ कि वो राजस्थानी भी सीख जाएं या हिंदुस्तानी, पर वो इंडियन क्लासिकल भी सीख रहे हैं, तो सुर तो है कहीं ना कहीं। देखते आगे
1: पसंद
0: क्या।
1: अभी उम्र के मुताबिक
0: स्कूल भी है, उम्र के मुताबिक है, पर बहुत ज्यादा वो म्यूजिक को समझती हैं, पियानो बजाती हैं, क्लासिकल सीखती हैं, और पिताजी तो बराबर लगे रहते हैं तो
1: उनको समझाने में।
0: तो भारत की संस्कृति, जरूरी नहीं कल को कोई डॉक्टर बने, कोई लॉयर बने, पर ये तो आना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि हमारे उसमें है।
1: आप कह रही थी हमसे डॉटर की बात, तो आपने कहा कि मंदाकिनी पुराने गीतों में प्रेम शब्दों में नहीं होता था, भावनाओं में, पुराने गीतों में ठहराव होता था
0: जी,
1: भावनाएं होती थी, इशारे होते थे और उसमें हम प्रेम करने लग जाते थे। लेकिन आजकल तो टन टना टन टन टन तारा करते हुए हम गर्दन हिलाते हैं, नायक या नायिका से प्रेम हो जाता है,
0: शब्द और लिरिक्स वो रहे नहीं ना।
1: जी जी, तो आप इस पर भी चाहती थी कि मैं कुछ कहना चाहूंगी कि कितना अंतर आ गया इन गीतों में। एक जमाने में महान गीतकार किस तरह के गीतों को रचा करते थे और आज थोड़ा,
0: क्योंकि उसके पीछे की जो टीम होती थी, जहां इंदिवर जी लिख रहे हो, आनंद बख्शी लिख रहे हो, नीरज जी लिख रहे हो, और उस समय की हमारी सोशल वैल्यू भी ऐसा था कि कलम से और हारमोनियम तक पहुंचने का जो एक वो था जर्नी थी, वो बहुत ही भावनात्मक स्तर थी। समाज ही बदल गया ना, कहते हैं समाज साहित्य का दर्पण है।
1: बिल्कुल,
0: तो अभी जब सारे लोग इस पे डिस्को पे डांस कर रहे हैं तो वो धुने हैं। और मैं चाहूंगी कि एक गाना आप जरूर सुनाएं कि वो है मैं ना पहनू थारी चुनरी, जो मैंने लिखा है और उन कुंवारी लड़कियों के लिए लिखा है जो अपने घर से विदा होती हैं। मारे बाबू सा ने चुनरी रंगाई, मारो जियो उस चुनरी में जाए, मैं ना पहनू थारी चुनरी, जो चुनर तुम लाए हो वो नहीं पहनूंगी, मैं बाबू सा की चुनरी पहनूंगी।
1: कितनी बड़ी,
0: मैं अभी तक पुराने शब्दों को लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर उल जुलूल शब्दों में भी कुछ तो है। किसी को कमेंट करने की स्थिति में नहीं है, जो चल रहा है उसे चलने दो और जीवन को जियो, यही मेरा कहना है।
1: तो अभी आपकी ग्रैंड डॉटर की पसंद का गीत
0: टन टन टन
1: टन टन।

0: मेरी आंखों के आगे ना उनका बिना बालों का सर याद आ रहा है। वो तो लिटरली कार में मारती थी।
1: जी जी,
0: टन टन टन।
1: तो दिल में घंटी तो हमारी बजी चुकी है और आपने तो कहा कि आपकी घंटी दिल में बहुत बार बजी थी।
0: क्या करूं, कलाकार ऐसे होते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और राजस्थान लोग की बात करते समय दो राजस्थानी महिलाएं, अरे विविध भारती के स्टूडियो में अगर आज हैं तो इससे बेहतर और क्या होगा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही बिंदास हैं इला जी और बहुत अच्छा लग रहा है उनका ये बिंदास रूप देखकर, आज तो बड़ा सुंदर समा बंध गया है।
0: थैंक यू।
1: तो इला जी, जब बात चल रही थी कि दिल में घंटी कब बजती है आपसे, जब हम पर्दे के पीछे बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, तो आपने कहा था कि प्रेम और जवानी इस विषय पर हम जरूर बात करने वाले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मैं भी, कि लापसिंह ठक्कर का एक नाटक किया था मैंने, पीला गुलाब और मैं। उसमें नायिका कहती है कि जब मैं अपने डायलॉग्स बोलती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो अपने पति से कहती है कि वही डायलॉग जब मैं रात को तुम्हारे साथ बोलती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, मुझे वो असल का एहसास क्यों नहीं होता कि मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी उधेड़बुन में वो लगभग पगलाई सी हो जाती है कि ये क्या है, सच्चाई क्या है। तो अपने पति से सवाल करती है कि क्या सच है, मतलब मैं नाटक के डायलॉग बोल रही हूँ या सचमुच मैं तुम्हें
0: रियल एंड रियल।
1: हाँ, तो आपके जीवन में आपने पर्दे के पीछे प्रेम के कितने ही रंग जिए होंगे और आपकी आवाज में भी जो मोहब्बत का एक पैगाम लोगों को तो पहुंचता है, महिलाओं तक पहुंचता है। एक कलाकार जब जिंदगी भर प्रेम का अभिनय करता है, प्रेम भरे गीत गाता है, तो क्या सचमुच वो प्रेम को महसूस करता है या उनके अपने जीवन में प्रेम उसे एक रटा रटाया वाक्य सा लगता है या रटा रटाया सा भाव लगने लगता है, आप क्या सोचती हैं?
0: ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। पर सवाल है कि हम नाटक में ही कहते हैं कि जब भी अपनी लाइनें कहो तो ये मत सोचो कि तुमने पहले कही है।
1: जी, जी,
0: अगर पहले रटा रटाया करेंगे ना तो वहां भी एक स्टैग्नेशन, एक आपका मतलब वो फीलिंग होगी नहीं। हम जब कोई नाटक करते हैं, खास तौर से मैं, तो उस पल को मैं जीती हूँ। वो हर पल नया होता है, चाहे नाटक का 200
1: एपिसोड
0: नाटक किया जा चुका हो, पर ये बात वास्तविकता में आप कहेंगे कि क्या यही डायलॉग, क्या मैं कहूंगी अपने आप, बताइए कि मैं घर से निकलूंगी, लो मेरे लाल गुलाब, मैं निकल रही। धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ जब जिंदगी शुरू की जाती है तब वो रोमांस होता है, सभी की जिंदगी में हुआ होगा, मेरा भी हुआ होगा। फिर धीरे धीरे जीवन सामने आता है और जीवन में जितना एडजस्टमेंट हम करते हैं वो हमारा रोमांस है। आई कैन नॉट बी ड्रामेटिक विद माई हस्बैंड। अगर वो ये सोचे कि वहां ये कह रही थी, यहाँ ये कह रही है कि वो गैस वाले का बिल नहीं आया, तो उसमें भी कंसर्न है ना। तो वो जितना रियाज करेंगे आप भावनाओं का, और वो कहीं ना कहीं आपके जेस्चर्स बोलने लगते हैं, डायलॉग नहीं होता है, जेस्चर्स आपके बोलते हैं कि आपका कंसर्न्स क्या है, जो भावनाएं क्या हैं। तो बड़ा डिफिकल्ट है। और एक मैंने पहले भी अपने हस्बैंड को कहा था और सबसे कहती हूँ कि कलाकार दरअसल एबनॉर्मल होता है। उसको आप थोड़ा तो सोच लें कि आम व्यक्ति जैसी नहीं है ये, थोड़ा अगर उसका
1: टेढ़ा होता है,
0: टेढ़ा होता है, वो सच्चा भी होता है।
1: जी, बिल्कुल।
0: वो कल्पना में भी होता है और उसकी सच्चाई कभी कभी उससे टकरा भी सकती है। एवरीथिंग इज गुड विद मी, नो
1: जी,
0: ये सही नहीं,
1: उसको मैनेज करना पड़ता है,
0: उसको मैनेज करना पड़ता है।
1: और इलाजी, बहुत हम समय को भी अब मैनेज कर रहे हैं
0: जी।
1: एक अंतिम सवाल के बाद एक लाइन आपको हमारे श्रोताओं को गाके सुनानी है, रेशम का रुमाल पर, अनु मलिक साहब हमारे जाने माने
0: से, उनको बताने दीजिए, उन्होंने गाना गवाया था दरवाजा खुला छोड़ा है नींद के मारे, मैं पूरे होश में हूँ, मैं आज दरवाजा नहीं खोलूंगी। अच्छा, नहीं ये गाना मैं सुना नहीं सकूंगी।
1: अनु मलिक जी आने वाले हैं, उनके साथ बिताए पल आप याद करेंगी जब अभी आप उनसे मिलेंगी
0: जी।
1: तो दो शब्द अनु मलिक जी के लिए कहिए और फिर रेशम का रुमाल की एक लाइन गाते हुए आप इस,
0: दरअसल मेरा, मैंने जैसे कहा गला बहुत खराब है, पर आप कहेंगे तो मैं गाने की कोशिश करूंगी
1: जी, जी।
0: और क्योंकि मुझे वाकई में प्रॉब्लम है। अनु मलिक जी

0: के साथ पहली फिल्म मैंने करी थी जाल, और वो शायद आज कह भी सकते हैं कि पहला ब्रेक उन्होंने कमर्शियल फिल्म में दिया। वैसे जगजीत सिंह जी के साथ मैंने आशियाना की थी तो वो बड़े अच्छे, इज ए नेचुरल पर्सन, मतलब वो भी हुड़क में रहते हैं और उस हुड़क में हमारा समय समाप्त हो गया शायद।
1: तो रेशम का रुमाल की एक लाइन हो जाए,
0: आप गाना सुना दीजिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेशम का रुमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ।

साथियों दोस्तों, हमारे दरवाजे पे बहुत सारे कलाकार अनु मलिक साहब भी आ गए हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग अंदर आ गए हैं। आज का ये मैटिनी शो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का साथ बना रहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मैटिनी शो से अब अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। विविध भारती के स्टूडियो से लाइव है मेरे साथ अनु मलिक। 70वें वर्ष में विविध भारती प्रवेश कर रही है और इस समय अनु मलिक हैं विविध भारती के स्टूडियो में बिल्कुल लाइव। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई।
0: अनु जी, आपसे बातें करने के पहले जरा एक बार आपका एक प्रोफाइल प्ले कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो कौन से अनमोल गाने हैं जो आपके इस सफर में आपने हमें दिए हैं और विविध भारती से पिछले कई सालों से बचते रहे हैं। उन्होंने बनाए हैं कुछ बेमिसाल गाने।

0: अनु जी, इतने सारे गाने और ये सारे एक से बढ़के हिट हैं और विविध भारती जो है वो इस समय विविध भारती का ये कार्यक्रम दुनिया के कोने कोने में सुना जा रहा है, न जाने कितने देश हमें सुन रहे हैं। और जिस तरह की हमने पब्लिसिटी की थी कि आप विविध भारती पर आ रहे हैं, विविध भारती देश का सबसे पुराना एंटरटेनमेंट रेडियो चैनल है और 70वें साल में प्रवेश कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे और रेडियो से क्या नाता रहा है आपका?
1: देखिए, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं
0: जी
1: कि विविध भारती ने मुझे याद किया। विविध भारती एक ऐसा शब्द है जो हमारे नस नस में, रग रग में है
0: जी।
1: अब आप पूछेंगे ये कैसे है? मैं उनका बेटा हूं जिनका नाम है सरदार मलिक साहब,
0: मशहूर संगीतकार सरदार मलिक,
1: जिन्होंने कमाल कमाल के गाने बनाए। बचपन से ही मुझे उनसे सुनने को मिलता था। और ये कहा उन्होंने कि जब भी विविध भारती ने याद किया है मैं वहां गया हूं, और आगे चलकर तो कितना भी नाम कमा ले, याद रखना ये वो जगह है विविध भारती जहां ऐसे ऐसे संगीतकार आके अपनी कहानियां सुना के गए हैं, ऐसा कमाल का काम किया है, उन्हें कभी ना मत कहना।
0: वाह,
1: आज मैं यहां बैठा हूं तो एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, मेरा 100 बार ये दिल से एक आवाज निकल रही है कि आप कितनी भी मेरी तारीफ करो, ये कहो कि आप आए हैं, अनु जी आए हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूं और कहता हूं कि थैंक यू, आपने मुझे यहां बुलाया।
0: क्या बात है,
1: आपके इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को एक अंदाजा होने लगेगा मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी जान तोड़। आप जो गाने सुना रहे थे मैं अपनी यादों में चला गया
0: जी, बिल्कुल।
1: और वो यादें हैं उन निर्माता की, ज्यादातर निर्देशक का नाम लेते हैं लेकिन निर्माता जो प्रोड्यूसर होता है
0: जी
1: कम लिया जाता है उनका नाम, वो निर्माता सब याद आते हैं। जब आपने रफी साहब का गाना सुनाया अभी, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, मेरी उम्र थी 16 साल
0: जी,
1: 16 साल जब मैंने ये गाना बनाया था
0: पूनम फिल्म के लिए
1: जी, और ये हरमेश मल्होत्रा साहब ने मुझे मौका दिया था। फिर आपने सभी गाने सुनाए और सभी मेरे निर्देशक निर्माता सब याद आए, मेरे गायक याद आए, मेरे लेखक याद आए जिन्होंने गाने लिखे हैं
0: हाँ जी,
1: मेरे साजिंदे याद आए।
0: बिल्कुल, क्या बात है, ये कितनी प्यारी बात है कि आप अब म्यूजिशियंस को भी याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि संगीत एक संगत का काम होता है यूनु जी
0: जी,
1: आपको ये सब लोग सही मिल जाएं तो गाने बन जाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने पिताजी को याद किया। हम यहाँ ये दावा कर रहे हैं कि विविध भारती ने 70 बरस का अपना सफर पूरा किया
1: जी,
0: और इन 70 सालों में हमने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लेजेंड्स को रिकॉर्ड किया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेडियो चैनल है जिसके पास यादों का एक बहुत बड़ा खजाना है, और आपके लिए मैं एक तोहफा लेकर आया हूं। ये तोहफा है पिताजी की आवाज। मुझे सौभाग्य रहा है कि मैं पिताजी से मिला हूं, विविध भारती में ही मिला हूं जब वो विविध भारती में आए थे, और आज मैं आपके लिए खास तौर पर पिताजी की याद, उनकी आवाज लेकर आया हूं। बरसों पहले की ये रिकॉर्डिंग, 1 मिनट का टुकड़ा मैं आपको सुनवाता हूं।

ये गाना के जिसने गाया वो भी उतना ही बड़ा आर्टिस्ट था। उन्होंने कहा, मलिक साहब मैंने बहुत अच्छे गाने गाए, लोगों ने पसंद भी बहुत किए, लेकिन हर एक ने कहा कहीं ना कहीं आप फीके पड़ते हैं। मैंने कहा अगर आप मेहनत करें, जी मैं करूंगा, तो आप 10 से लेकर 12 बजे तक मेरे पास रोजाना इस कुटिया में आके बैठिए। 1 मंथ आप बिलीव करिए कि वो इंसान मेरे पास बैठा और हर वक्त ये पूछता था क्यों कोई कसर तो बाकी नहीं।

0: मुझे कैसा लगा पिताजी की आवाज सुन के?
1: मैं एक्चुअली भावुक हो गया हूं, क्योंकि मैं ये गाना, मेरी माँ कहती हैं, अब तो माँ भी नहीं रही, माँ कहती थी कि तू 4 साल का था जब मुकेश जी घर पर आया करते थे, तू डैडी की गोद में बैठता था,
0: अच्छा,
1: और रिहर्सल होती थी सारंग तेरी याद में। तो वो दिन ऐसे अब याद आ रहे हैं।
0: जी जी।
1: और जिस अंदाज से डैडी ने ये गाना बनाया और जो गाया है मुकेश जी ने, और मैं उनका भी तारीफ करना चाहता हूँ जिन्होंने गाना लिखा, भरत व्यास साहब का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो अम्बुवा का झूलना, वो पीपल से छाव,
0: घूंघट
1: में जब चांद था, मेहनती लगी थी पांव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गांव। डैडी एक महान इंसान थे, भरत व्यास जी, मुकेश जी, और ये गाना आज ऐसा लगता है कल रिकॉर्ड किया गया है।
0: बिल्कुल।
1: इतनी ताजगी है इसकी इसकी तर्ज में कि वो कूट कूट कर मेरे अंदर भरी हुई है। जो को सीखा वहीं से आया है, और मैं अपने फादर को नमन करना चाहता हूँ, और उनकी यादों में ही मैं रहता हूँ और आज भी काम करता हूँ। बल्कि मेरी जंग भी उनकी वजह से हुई।
0: जी।
1: जब उनको वो मुकाम नहीं मिला तो मैंने कहा मैं नाम कमाऊंगा डैडी आपके लिए।
0: बिल्कुल। और आपने वो करके दिखाया, और मुझे याद है कि जब मुलाकात मेरी हुई थी तो वो इतनी आपकी तारीफें करा करते थे और एक गर्व से भरे हुए थे कि मेरे बेटे ने वो मकाम हासिल किया जो जिंदगी ने मुझे मौका नहीं दिया हासिल करने का।
1: जी, बिल्कुल।
0: और चूंकि यादों की बात है तो वो गाना जो आपने इसलिए बनाया शायद ताकि जब भी कभी हम पुराने दौर को याद करें तो इस गाने को दोहराएं कि यादें याद रह जाती हैं।

0: अनु जी बिल्कुल जज्बाती मूड पर हम पहुंच गए, पिताजी को याद किया और
1: बिल्कुल
0: ये गाना आया सुभाष घई की फिल्म यादें। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरोज के गाने आपने बनाए। एक वो दौर था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, एक वो दौर था जब आपने अमिताभ बच्चन के लिए लगातार गाने बनाए, आगे भी बनाए, तो वो यादें बांटिए, यादें हैं।
1: देखिए ये मां सरस्वती की कृपा है। मैं बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट था
0: जी
1: ऐसे महान सुभाष जी के साथ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करना। उसकी जद्दोजहद बहुत हुई
0: जी,
1: आसान नहीं रहा, क्योंकि हमारे सामने बड़े जबरदस्त संगीतकार थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब
0: जी,
1: आर डी बर्मन साहब, कल्याण जी आनंद जी साहब, जो कमाल कमाल के गाने बना रहे थे। उनके सामने फिल्म मिलना भी बड़ा मुश्किल काम था
0: जी जी।
1: लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर गाने बनाने की एक चाह है
0: जी।
1: मैं गाना बनाता था, उसे कैसेट्स में रिकॉर्ड करता था, बाजा लेकर चल पड़ता था।
0: यस,
1: सुभाष घई साहब का म्यूजिक बड़ा कमाल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: उनकी हर फिल्म का म्यूजिक कमाल रहा है। तब जाके जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, अब ये जो गाना है नगमे हैं शिकवे हैं, इसमें आनंद बख्शी साहब बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बख्शी साहब ने कहा कि सुभाष जी सुनाओ ये लड़के ने क्या बनाया। मैंने जब ट्यून सुनाई उनको
0: जी,
1: मैंने ऐसे सुनाया,

0: अचानक वो रुक गए। बख्शी साहब कहते हैं, अन्नू मुखड़ा यहीं खत्म हो रहा है। मैंने कहा कुछ और आ सकता है। माजी ने भी ये कहा, मैं और क्या लेके आया है कि अचानक मैं समझ गया बख्शी साहब क्या चाहते हैं। वो लिखना और चाहते थे,
1: हाँ उसके आगे।
0: तो मैंने आगे ऐसे ऐसे गाया, डा डा डा डा डा डी डा डा डा डा डो डो डो डो डो डो डो। और उसके बाद जो तर्ज उनको इतनी पसंद आई, लिखने के बाद गाना वो सुभाष जी की तरफ देखते हैं आनंद बख्शी।
1: हाँ हाँ,
0: बख्शी साहब बोलते हैं, सुभाष ये तेरा लक्ष्मी है।
1: वाह वाह वाह, क्या स्टेटमेंट है ये।
0: ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि ये कहना सुभाष जी को,
1: हाँ
0: अन्नू तेरा लक्ष्मी है,
1: वाह वाह,
0: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बख्शी साहब बड़े बड़े उस वक्त भी संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे, जो लाजवाब काम कर रहे थे।
1: जी जी,
0: उन्होंने कहा ये बैठे बैठाए मेरे सामने अगर इस लड़के ने डा डा डा डाडी डा डा डा डा। अब ये आप सवाल बहुत से लोग पूछते भी हैं, बहुत से लोग पूछते भी नहीं है, ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। इतने संगीतकार है दुनिया में
1: जी।
0: और गुनीजन है, गुनीजन मैं क्यों बोलता हूँ उनको, सीखे हुए लोग हैं।
1: हाँ जी,
0: मैं एक नेचुरल म्यूजिशियन, मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज अ नेचुरल म्यूजिशियन। नेचुरल म्यूजिशियन वो होता है जो चीजें आमद होती, सरस्वती माँ की कृपा है।
1: जी जी,
0: मैं बाजे पर बैठा हूं और बाजा बजा रहा हूं और ये नोट साक्षात अंदर आते हैं।
1: क्या बात है।
0: जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैंने बहुत इंटरव्यू कहा है, अब आप पूछेंगे अनु जी आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। बात करते करते भी एक दिमाग में, एक सेक्शन ऑफ मेरे दिमाग में ट्यून चल रही है।
1: अच्छा,
0: एक लय चल रही है। तो मैं कभी फुल, मैं ये कहूंगा कि एक तो मेरे फादर
1: जी,
0: एक तो बड़े बड़े महान संगीतकार जिनको मैं बहुत, मैं सभी संगीतकार ने बहुत अच्छा काम किया हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मैं दीवाना हूं शंकर जयकिशन का, आर डी बर्मन का। इसलिए दीवाना हूं मैं क्योंकि मैं समझता हूं कि शंकर जयकिशन आर डी बर्मन एक कंप्लीट लोग थे।
1: जी जी,
0: उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, और उसके बाद आप गिनते जाइए, मदन मोहन जी के गाने सुन लीजिए,
1: वाह
0: सलील दा के सुन लीजिए, सचिन देव बर्मन के सुनिए, नौशाद साहब के सुनिए, क्या काम किया लोगों ने। अभी भी मुझे लगता है मुझे और मेहनत करनी है, और काम करना है। बल्कि आपको मैं न्यूज बताना चाहता हूं कि जब आपके 70th ईयर है ये
1: भारती
0: का,
1: जी
0: जनवरी 11 को 2027 में मैं 50 साल काम, आई विल बी कंप्लीटिंग 50 ईयर्स।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: 14 साल की उम्र में शुरू हुआ था, फिल्म थी हंटर वाली 77।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपको याद होगा।
1: बिल्कुल,
0: मैंने काम किया है लता जी के साथ, आशा जी के साथ,
1: रफी साहब के साथ,
0: किशोर दा के साथ और मोहम्मद रफी साहब के साथ, यहां तक मन्ना दा के साथ भी काम किया है, बस मुकेश जी के साथ नहीं किया। एक बेबाक लड़का 14 साल की उम्र में बाजा लेकर पहुंचता था सबके पास, मतलब मेरे पास तर्ज है, सुनोगे मेरे पास तर्ज है। कुछ लोग हंसते भी थे, कुछ लोग मजाक भी बनाते थे, लेकिन मैं हारा नहीं। और आज भी मुझे लगता है कि मैं फिर से काम शुरू करने को तैयार हूं।
1: क्या बात है। रफी साहब से जुड़ी कोई याद?
0: बहुत सी यादें, खास करके इसी गाने की, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता। हुआ यूं कि मैंने उनको अप्रोच किया, हरमेश मल्होत्रा साहब ने कहा कि अन्नू रफी साहब से गवाते हैं।
1: अच्छा,
0: मैं जाता हूं उनको मिलने के लिए। तो उनके ब्रदर इन लॉ थे जहीर भाई, उनको फोन किया, मैं रफी साहब से मिलना चाहता हूं। तो रफी साहब से उन्होंने बात की और कहा कि कौन है आप। मैं बोला बस, मैंने इतना कहा मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं। तो वो बहुत खुश हो गए कि मलिक का बेटा मुझसे मिलना चाहता है। किस सिलसिले में? मैंने एक फिल्म साइन की है, आपसे गाना गवाना चाहता हूं।
1: हाँ,
0: उन्होंने कहा कल सुबह 9 बजे मेरे घर पर आ जाना।
1: क्या बात है।
0: मैं पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात, और सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली कि मुझे रफी साहब को मिलने जाना था। मैं भूल गया वक्त, इतने बजे बुलाया था, मैं 6 बजे पहुंच गया।
1: अरे बाप रे, इतनी सुबह
0: 6:15 बजे मैं पहुंच गया और बाहर खड़ा हो गया उनके दरवाजे के। बंगला था उनका ये बैंड्रा में।
1: हाँ,
0: अभी वहां बिल्डिंग बन गई है
1: जी।
0: और रफी साहब, मुझे पता नहीं था कि रफी साहब भी जल्दी उठते थे, वो सुबह अपने गार्डन में बैठते थे
1: जी।
0: और झरोके से जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो दरबार रोक रहा था, तो उन्होंने देख लिया। तो देखकर हैरान हो गए, अरे भाई मैंने आप बहुत सॉफ्टली बात करते थे।
1: हाँ।
0: कौन हो? मैं बोला अन्नू मलिक हूं, सरदार मलिक साहब का बेटा। अरे मैंने तुम्हें 9 बजे बुलाया था। नाराज होने के बजाय उन्होंने मुझे इशारा किया अंदर आओ, मैं अंदर चला गया।
1: हाँ।
0: 6:30-7 बजे ही मैं जाके लॉन्च में खड़ा हो गया। वो उठे, कुर्ता पहना हुआ था, लुंगी पहनी हुई थी, और अचानक मुझे रूम में बुला लिया। जैसा मैं रूम में गया, मैं क्या देखता हूं कि चारों तरफ अवार्ड्स ही अवार्ड्स हैं, एसी ऑन है, खूबसूरत समा और खुशबूदार रूम था। रवि साहब सामने बैठ गए, बोला गाना लेके आया? मैंने हाँ, सुनाइए। और मैंने बाजा खोला और अपना गाना सुना। तो सबसे पहले बोलते हैं, अरे तुम बायां से बजाते हो?
1: हाँ।
0: हाँ मैं लेफ्टी हूं। अच्छा अच्छा सुनाओ सुनाओ। अब मैं गाना गा रहा हूं, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रंग लाती है शराब। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो गाना लिखते जा रहे थे।
1: जी।
0: मैंने चीज नोटिस की कि रवि साहब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे।
1: ओ।
0: चुप थे।
1: हाँ हाँ।
0: मैं गा रहा हूं दु दु दु दु दु दु। अचानक एक चीज मेरे दिमाग में, मैं बोला चलो अंतरा गाते हैं। अब जैसे मैंने अंतरा गाया, अभी कम सिन हो क्या जानो, तो मुझे कहते हैं वापस गाओ। मैंने कहा अभी कम सिन हो क्या जानो, तो वहीं रफी साहब से एक चीज सीखा मैं। बोला ये जो तुम गा रहे हो
1: जी,

0: थोड़ा गलत है। ओ तुम्हें अपने साथ क्या गलत है? तुम गा रहे हो अभी कम सिन हो क्या जानो, इसको मिला दो, तुम एक शब्द को दो टुकड़े कर
1: दो टुकड़े करे
0: कर दो अभी कम सिन हो क्या, और मैं उनके पांव पर गिर गया।
1: वाह वाह।
0: मैं अपने आप को भाग्यशाली क्यों मानता हूं, ऐसे महान लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला। फिर जब गाना रिकॉर्ड हुआ वो दिन अच्छी तरह याद है, मैं जब कंडक्ट कर रहा था, मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर मतलब जो अरेंजर थे वो वहां थे, तो एक पीस आया और मुझे नोटिस कर रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बोला फर्स्ट म्यूजिक ऐसा करते हैं, डंग डंग डंग डंग डंग डंग, मैं खुद ही गा रहा था तो मैं साजिद को समझा रहा था, डंग डंग डंग डंग डंग तुरु, मुझे इंटरलूड बनाने का बड़ा शौक है। तारा तीरा तीरा भी कम से, तो बोला अरे क्या अंतरा उठा है, आके मुझसे गले मिले। और मुझे अच्छी तरह याद है जब गाना जब खत्म हुआ तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा,
1: क्या बात है,
0: और जो इस यहां उनका हाथ था लेफ्ट मेरे हाथ पर कंधे पर, और मुझे ऐसे पकड़ा।
1: वाह।
0: और उसी शाम को उन्होंने डैडी को फोन किया था, मलिक तेरे पास एक संगीत का नग है।
1: वाह।
0: एंड डैडी की आंखों में आंसू थे कि रफी साहब ने मेरी तारीफ की, ये मैं लम्हा कभी नहीं भूल सकता हूं। और वही रिकॉर्डिंग जब खत्म हुई, इतने महान इंसान थे, अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था।
1: हाँ।
0: तो मुझे आगे कर दिया कि भाई इनसे कुछ रिक्वेस्ट करो, तो बोला मैंने गाना गा दिया, पैसा तो चाहिए मुझे। बोला रफी साहब वो कह रहे हैं कि ही इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, पैसा है ही नहीं। तो मुझे मुड़के देखते हैं और बोलते हैं, अनु एक काम कर, पैसा तो मैं लेके जाऊंगा। अब मैं डर गया,
1: बिल्कुल,
0: मैं बांद्रा से आया हूं,
1: हाँ हाँ,
0: घर वापस जाना है, प्रोड्यूसर को बोलो मुझे 50 रुपए दे दे, पेट्रोल का पैसा तो दे दे। सिर्फ 50 रुपए लेकर उन्होंने वो गाना गाया था, मोहब्बत रंग लगी जनाब आहिस्ता, इसलिए लोग उनको फरिश्ता बोलते थे।
1: क्या बात है। अब एक मोमेंट आएगा, एक ऐसा गाना आएगा जो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो कौन सा गाना है, और उसके बाद मोहब्बत रंग लाएगी आएगा
0: जी।
1: लेकिन कमाल ये है कि पहले आता है पिताजी का गाना, रफी साहब की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल।

सरदार मलिक का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज और यहां से आता है अनु मलिक का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज। फिल्म का नाम पूनम, साल

0: क्या कमाल, क्या कमाल जी, कहिए।
1: यही जो आप पीस सुना रहे हैं ना
0: जी,
1: डंग डा डा डा डा डा,
0: इसी की बात हो रही थी।
1: इसी की मैं बात कर रहा था कि जब मैं बना रहा था ना ये पीस,
0: हाँ,
1: उस वक्त रफी साहब फेमस था जो
0: जी जी बिल्कुल
1: स्टूडियो में,
0: हाँ,
1: क्यूबिकल के सामने खड़े थे,
0: हाँ,
1: और मुझे सुन रहे थे बनाते हुए।
0: बताइए।
1: तो इतने खुश हो गए थे वो कि तुझे शौक है इंक्लूड बनाने का, मेरा जी बहुत शौक है।
0: जी जी जी।
1: तो उसके बाद ही उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा।
0: बताइए।
1: और फिर डैडी को फोन किया था। मैं ये ऐसे इंसान को भूल नहीं सकता है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे इंसान थे, इतने इनकरेजिंग थे मोहम्मद रफी साहब, इतना प्यार करते थे कि चंद शब्दों में उनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा।
0: अब मैं

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के सामने।
1: अनु जी, बातें रफी साहब से चल के और आशा भोसले तक आ गई। शुरुआती दौर था उमेश मेहरा की फिल्म, और ये जो म्यूजिक है ये पूनम से बिल्कुल अलग है। इसमें पूरा एक पंजाबी फ्लेवर है। सोनी महिवाल और क्या तो गाना, यहां सब लोग उस गाने की मस्ती में डूब गए।
2: तो आपने जो अभी बात कही कि ये बिल्कुल अलग है उस गाने से,
1: हाँ जी,
2: तो इसकी इंस्पिरेशन कि मैंने कसम खाई थी कि मैं वो संगीतकार बनना चाहता हूं जो हर किसी के गाने बनाए।
1: हाँ।
2: उसके पीछे थे आरडी बर्मन साहब
1: जी।
2: मैं जब छोटा था मैंने एक गाना सुना था, डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग, ये दम मारो दम, ये सुना था।
1: हाँ, हाँ।
2: उम्र थी 10 साल।
1: हाँ।
2: वही इंसान बनाता है चिंगारी कोई भड़के, अभी वही इंसान। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट, मैंने बोला कि मैं आगे चलकर ऐसा संगीतकार बनना चाहता हूं कि मैं सिचुएशन में अपने आप को ढाल लूंगा। अगर रोमांटिक गाना है तो मैं वो बनाऊंगा, अगर पंजाब पर बेस्ड है सोनी मेवाल लव स्टोरी पर मैं वैसे गाने बनाऊंगा, अगर जुड़वा है जिसमें मस्ती वाले गाने चाहिए जैसे कि ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है मैं वो करता हूं, तो आरडी बर्मन साहब ओ हसीना जुल्फो वाली भी कर देते, आरडी बर्मन साहब चिंगारी कोई बड़के भी बनाते थे, और मैंने अपने आप को कसम दी कि आई कैन कंपोज ऑन एनी सिचुएशन एनी टाइम एनी वेयर एज लॉन्ग एज माई डायरेक्टर इज विद मी।
1: और ये आपने किया है?
2: एक बार नहीं, हजारों बार, और अभी भी कर रहा हूं।
1: बिल्कुल, मैं ये सोच के बड़ा हैरान हूं कि एक पूरा 80s का दौर था जहां बहुत अलग तरह का म्यूजिक बन रहा था, और कमाल की बात यह है कि उस पूरी धारा में भी आप 80s के हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो के लिए ये गाना बनाते हैं। और देश के गली गली शहर शहर चौराहे चौराहे पर गूंजता है ये गाना।
3: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला हे, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला।
1: बच्चन साहब के लिए गाने बनाना कोई छोटा काम नहीं था?
2: बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे साथ एक महान निर्माता निर्देशक साहब थे मनमोहन देसाई, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि अनु मलिक आप सोचिए, नसीब कूली अमर अकबर एंथनी जैसे एक आउटस्टैंडिंग म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और एक नए लड़के को चांस देना
1: जी,
2: वो भी अमिताभ बच्चन साहब के साथ
1: इतनी बड़ी फिल्म,
2: तो ही हैड फुल कॉन्फिडेंस। मैं बताना चाहता हूँ संगीत बनता है कॉन्फिडेंस से।
1: हाँ हाँ।
2: संगीत अगर आपका निर्देशक आप पर भरोसा करता है कि दिस मैन कैन डिलीवर, तो हजारों चीजें होती है। और मनमोहन देसाई साहब से जब मैं मिला भी था तो उन्होंने बहुत से मुखड़े सुने मुझसे, बहुत से मुखड़े, लेकिन मुझे मुखड़े लिखने की भी आदत है। मैं मुखड़े की जो फ्रंट पहली जो चार लाइनें होती है मैं लिख देता हूं। तो मैं बोला सर कैरेक्टर का नाम क्या है? बोला एक सोच रहा हूं मैं, पिक्चर का नाम सोच रहा हूं मर्द। तो मुझे टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव लगा मर्द, बोला वेरी गुड टाइटल। तो मैं बोला सर एक मुखड़ा दिमाग में आ रहा है,

0: कैसा लगा? अब बाहर आके मुझे बोलते हैं तू अपनी शर्ट तो नहीं फाड़ेगा? यू आर ऑन, यू आर नाउ सेंट फॉर मर्द.
1: क्या बात.
0: तो आई वुड थैंक अमिताभ बच्चन साहब फॉर एक्सेप्टिंग मी अ न्यू बॉय. आई वुड थैंक मनमोहन देसाई साहब. अगर बच्चन साहब ने हाँ नहीं बोला होता, मनमोहन जी ने हाँ नहीं बोला होता, अन्नू मलिक आपके सामने बैठे ये बातें नहीं कर रहा होता.
1: बहुत सही बात है.
0: उमेश मेहरा साहब ने मुझे सोनी मेवाल दी
1: जी.
0: राजीव मेहरा साहब ने मुझे एक जान एम दी
1: जी.
0: एफसी मेहरा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी जिंदगी में, जैसे हरमेश बल्होत्रा, उससे पहले सलीम अख्तर साहब.
1: बिल्कुल.
0: ये सब लोग बड़े.
1: एक चीज मुझे याद आ गई, मर्द में कुछ बड़े म्यूजिक, बड़े लिरिसिस्ट थे जैसे राजेंद्र कृष्ण.
0: बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया. वो थे ज्यादातर, एक्चुअली वो तूफान में थे, अल्लाह रखा तूफान में.
1: हाँ.
0: लेकिन इसमें
1: प्रयागराज जी,
0: प्रयागराज जी थे, के शुक्ला साहब थे. मिलजुलकर मैं जब ट्यून सुना रहा था, सब लोग अपने कंट्रीब्यूट करते जा रहे थे कि अन्नू की ट्यून इतनी अच्छी है, हम कैची वर्ड लिखेंगे. मनमोहन देसाई वॉज अ फैबुलस डायरेक्टर. ऐसा डायरेक्टर दुनिया में नहीं आएगा.
1: मतलब, कभी कोई खींचतान हुई किसी ट्यून को लेकर किसी
0: बहुत,
1: बात को?
0: बहुत बहुत. मैंने तो बैकग्राउंड भी किया था इस फिल्म का. खींचतान इसलिए हुई क्योंकि मेरे अंदर तो था ना कि मैं जिस बैनर में काम कर रहा हूं वह एमकेडी फिल्म्स है. और जिसका संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, हमारे गुरु. और अगर अच्छा संगीत होता तो अलग बात होती, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने तो लाजवाब संगीत दिया था. लाजवाब. अमर अकबर एंथनी देख लो, नसीब देख लो, कूली देख लो, कोई भी फिल्म उठा लो उनकी. मतलब सुपर ड्यूपर हिट गाने. अब मनमोहन देसाई साहब अन्नू मलिक को ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तो बहुत
1: हाई
0: हो गया था.
1: यस.
0: अब मैं गाने क्या बनाऊं? तो मैंने बड़ा अतरंगी उल्टे स्टाइल के गाने बनाए.
1: हाँ.
0: अगर आप मर्द के गाने सुनोगे, मैं बोला हटके बनाना पड़ेगा.
1: और वो
0: दिमाग में ये बात थी कि व्हेन यू आर जस्ट 22-23 इयर्स ओल्ड, सामने मनमोहन देसाई बैठा है.
1: हाँ.
0: इट इज नॉट इजी, क्योंकि मनमोहन जी के कानों में कल्याण जी आनंद जी के सुर थे.
1: बिल्कुल.
0: मनमोहन जी के कानों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुर थे. मनमोहन जी के कानों में रफी साहब की आवाज थी. अनफॉर्चुनेटली रफी साहब चले गए थे उस वक्त
1: जी.
0: हमारे पास वो सिंगर नहीं था जो, और उन्हें रफी साहब की आवाज से ज्यादा किसी की आवाज पसंद नहीं थी
1: बाकायदा.
0: तो उस वक्त मैं मुखड़े सुनाता था जो मैंने अपने मुखड़े लिखे हुए थे, कैची मुखड़े. लाइक सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया, प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करे, मैं तेरी टांगे वाली. मन मुझे उछल गए. बोला तू मेरी, तू गाना नहीं बना रहा है सिर्फ.
1: हाँ.
0: तू मेरा सीन लिख रहा है. दैट वॉज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मनमोहन देसाई कि मेरा सीन है कि टांगा वाला कौन है?
1: हाँ.
0: अमिताभ बच्चन.
1: हाँ.
0: इश्क करता है इस लड़की से. तो उसका आपने ये नहीं कहता कि तू मेरी जान है या मेरी जानम है.
1: हाँ.
0: तूने कहा सुन रूबिया, लड़की का नाम रूबिया, तुमसे.
1: हाँ.
0: प्यार हो गया, डायरेक्ट है.
1: हाँ.
0: प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करें, या छोड़ दिया.
1: हाँ.
0: तो मन मुझे आगे क्या आएगा?
1: हाँ.
0: और सर ये लाइन डालता हूं, मैं तेरा टांगे तू मेरी टांगे वाली, मैं तेरा टांगे वाला. मतलब टांगे वाले की शादी टांगे वाले से हो रही है.
1: हाँ.
0: मैं टांगा चलाता हूं, तू मुझे इश्क करती है. एंड वो उछल गए. या फिर वो गाना था, कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी. उस जमाने में टू गेट अ न्यू इंग्लिश वर्ड अभी ट्रेंड हो गया है.
1: हाँ.
0: उस जमाने में बड़ी नई बात थी.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: यार वाई सिंग, वाई सिंग बिलियो. अच्छा सर क्या मुझसे शादी करो? मैंने नहीं सर ऐसा मत करेंगे. सर कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी. और लड़की कहती है नो नो सॉरी जी. सो एवरी सॉन्ग बिकेम अ चार्ट बस्टर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेशनेस, ऑफ इट्स न्यूनेस. और बच्चन साहब ने कैरीड इट टू अ डिफरेंट लेवल. अमृता जी थी उसके अंदर.
1: yes.
0: उसमें दारा सिंह साहब थे. उसमें क्या क्या गाने पिक्चराइज किए गए.
1: yes.
0: माहौल क्या था वो.
1: बिल्कुल बिल्कुल. अब जो है बातचीत को फिर से बदलते हैं और अब मैं एक ऐसे गाने के साथ बात को आगे बढ़ा रहा हूं जिस गाने में एक नशा है. इस गाने में एक तरंग है. फिल्म में अलग गायक की आवाज में आता है, रिकॉर्ड पर अलग. लेकिन इस फिल्म के तमाम गानों के बीच इस गाने ने अपना जादू बनाया है. अस्सी के दशक से नब्बे के दशक में आ गए विविध भारती लाइव.

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग। अनुजी, बाजीगर फिल्म का ये गाना, मैंने बाकी तमाम गानों को छोड़कर इस गाने की बात की है, कोई तो बात होगी।
1: मैं समझता हूँ इसलिए बात होगी, मैं देखिए ये जो फिल्म का गाना आपने बजाया है
0: जी,
1: पंकज उदास जी की आवाज में बजाया है आपने, और इसको बाद में गाया था विनोद राठौड़ ने।
0: हाँ,
1: सो क्या हुआ, महान रतन जैन, मैं उनको महान रतन जैन बोलता हूँ, वीनस के जो मालिक हैं
0: जी जी जी,
1: और महान गणेश जैन, दो भाई, इनकी वीनस टेप्स एंड रिकॉर्ड्स
0: जी,
1: सात भाई, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक चले गए, हमारे प्यारे चंपक जी,
0: जी जी,
1: भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस वक्त जब मैं 80s में से निकलकर 90s की तरफ जा रहा था, 80s का दौर बदलता जा रहा था, आप समझ गए, नए नए संगीतकार फिर अपने कदम जमा रहे थे
0: जी,
1: उस वक्त धीरे धीरे मेरा काम जाने लगा
0: जी,
1: एंड मेरी जिंदगी में इस गाने से पहले एक इंसान आए जिनके बारे में हम जरूर बात करेंगे, जिनका नाम है महेश भट्ट साहब
0: जी जी जी।
1: उसके बाद ये पिक्चर आई, मैंने एक एल्बम किया रतन जैन साहब के लिए
0: जी जी,
1: उसमें ये गाना था
0: जी।
1: तो एक दिन रतन जी कहते हैं, यार मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं।
0: हाँ,
1: फिल्म का नाम है बाजीगर।
0: वाह,
1: इसमें एक नया लड़का है शाहरुख खान।
0: हाँ,
1: नई हीरोइन है काजोल, और डायरेक्टर भी वर्चुअली न्यू है, एक फिल्म इनकी हिट हो चुकी है। तुम आओगे? मैं बस सर डूबते हो गए, तिनके का सहारा वाली बात है, मेरे पास तो काम ही नहीं है, नई नई शादी हो चुकी थी मेरी। उन्होंने कहा काम करते हैं। मैंने जब ये मुखड़ा सुनाया इतने खुश हुए। फिर हमने यही गाना विनोद राठौड़ से गवाया था
0: जी।
1: जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, तालियां बज रही थी।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि 90s की एंट्री
0: हाँ
1: का ब्यूगल बज चुका था, सिर्फ अन्नू मलिक का नहीं।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: जितने भी संगीतकार 90s में थे
0: जी,
1: वो अपना नया रंग लेके आ रहे थे
0: जी जी जी,
1: और उनमें से एक था अन्नू मलिक।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सभी ने बहुत अच्छा काम किया, जितने भी, अगर 90s का म्यूजिक सुनोगे तो लोग कहते हैं दैट्स द रेनेसांस ऑफ, जैसे 60s का म्यूजिक था।
0: हाँ,
1: 90s के म्यूजिक के बारे में बात करते हैं।
0: हाँ,
1: उसके बाद ऐसा म्यूजिक बना ही नहीं है
0: जी, जी।
1: एवरी कंपोजर, एवरी लिरिसिस्ट, एवरी प्रोड्यूसर, एवरी डायरेक्टर
0: जी,
1: एवरी म्यूजिशियन, एवरीबॉडी, सिंगर्स हो, लिरिसिस्ट हो, संगीतकार हो, म्यूजिशियंस अपने उस जमाने के क्या थे, लाइव म्यूजिक चल रहा था
0: जी जी जी,
1: एंड उसका नतीजा है 90s का म्यूजिक। जब ये बाजीगर के गाने बने थे तो लोग दीवाने हो गए थे, बोलते कैसेट्स में फ्लाइंग लाइक हॉट केक्स।
0: हाँ,
1: मुझे लोग आके बोलते हैं कैसेट्स बिकते थे, हर दुकान के कैसेट बिक रहे थे, मतलब अगर बगल में चार कैसेट्स बेचने वाले बाजीगर के हो तो चारों दुकान से बिक रहे थे, ये नहीं कि एक दुकान में।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसका नतीजा ये निकला कि आज टुडे जब ये गाने लोग सुनते हैं तो मुझे मैसेजेस लाके देते हैं, कहते हैं अनु जी ये गाने ऐसा लगता कल रिकॉर्ड किए आपने।
0: हाँ,
1: इतनी फ्रेशनेस कैसे है। सो आई वुड से उस वक्त ऐसा एक सर पे एक जुनून सवार था कि कुछ अच्छा करना है।
0: बाजीगर में तो आपने वो रैप भी किया था, रैप में
1: वो काली काली आंखें में, उसकी भी स्टोरी है, अब गाना बजाए तो बताऊंगा।
0: अच्छा, गाना बजाना पड़ेगा, ठीक है, गाना बिल्कुल बजाएंगे, और बाजीगर का वो गाना भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं ये चाहता हूं अनु जी कि हम इसके बाद वो बात करेंगे बॉर्डर की, लेकिन बाजीगर का गाना अभी आ रहा है।

हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम विविध भारती के स्टूडियो से फेसबुक पर लाइव देखा जा सकता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग।
1: ये सुनो जी, ये काली काली आंखें,
2: ये जो काली काली आंखें का गाना है, इसमें जो आज इतना ट्रेंड सेटिंग हो गया रैप
1: जी,
2: उस वक्त ये सब नहीं था
1: जी।
2: हुआ यूं कि गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मुखड़ा बन चुका था, सेट पर सब थे, अचानक 16 बार का एक फर्स्ट म्यूजिक में टेम्पो बज रहा था, टक टक टक चिटक टक टक चिक टक टक टक चिटक टक टक टक टक टक टक। बहुत कुछ ट्राई किया, उसमें कुछ हो रहा नहीं था। मैं बोले ये खाली जा रहा है, ये खाली जा रहा है पूरा जगह, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने एक दिमाग में आइडिया आया, मैं चला गया सेट के ऊपर, मैं बोला यार एक काम करते हैं, माइक पर जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये खाली जगह को मैं कवर करना है। अभी मुखड़ा खत्म हो चुका है, अंतरा आने वाला है, अंतरा आने से पहले की म्यूजिक पीस है, लेकिन ये 16 बार मैं करूं तो क्या करूं, बहुत सोच रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा मैं ये वर्ड डालता हूं
1: जी,
2: मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, दुनिया चले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे, राम पाम पाम बारा पाम पाम। अब पूरा ब्रास आता है वहां से।
1: हाँ।
2: तो पूरा मैंने टाइमिंग कवर किया उसके अंदर।
1: हाँ।
2: एंड वहां अब्बास मस्तान, रतन जैन ऑल जंप्ड अप, ये बहुत अलग चीज की तूने। और इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, उन्होंने कहा मुझे लगता है बहुत अलग चीज हो गया, मैं मिला और जो तेरा अंदाज है ना तू मिली, तो वहां देव कोहली साहब भी थे लिरिक राइटर। मैं बोला देव जी पहला हाफ तो मैंने लिख लिया है, दूसरा हाफ को लिखे देते, सेकंड अंतर में भी डालते हैं। मैं तो कर झटपट, मैं तो कर खटपट, मेरे आचा तो निकट। वो देव जी ने वही लिख दिया, वो भी कमाल के इंसान थे देव कोहली साहब,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: महान राइटर थे वो,
1: महान राइटर।
2: तो वो उन्होंने, मैंने बोला सर ये जो मैंने तैतू लिखा है फर्स्ट, मैं मिला तुम्हें, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? बोला अनु जी गो हेड एंड रिकॉर्ड इट, बहुत अच्छा लग रहा है। देव जी की परमिशन मिली मुझे और मैंने कर दिया। बट जो नेक्स्ट उन्होंने लिखा वो भी मैंने बोल दिया, ना तू कर खटपट, तू आजा तो निकट, तेरे प्यार झटपट, न तो जुल्फ झटक, न तू पैर पटक, ये सब किया था मैंने। आज वो गाना लोग बोलते हैं वो ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग, वन फॉर इट्स साउंड,
1: बिल्कुल
2: द म्यूजिक प्रोडक्शन वॉज वेरी न्यू।
1: यस यस,
2: डेढ़ महीना लगा था उस गाने को बनाने के लिए, डेढ़ महीना टू गेट द म्यूजिक राइट, पाम पाम पारा पाम पाम पाम। तो करते करते बहुत टाइम लगा, आई वांटेड टू सेट अ ट्रेंड। और आज लगता है लोग मुझे बोलते हैं कि यार इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है, AI आ चुका है, लेकिन लगता है ये गाना कल रिकॉर्ड हुआ है। मैं 3 बार ये लव्स यूज कर चुका हूं, बिकॉज आई बिलीव अ सॉन्ग शुड साउंड एज फ्रेश एज इट वॉज रिकॉर्डेड यस्टरडे इवन टूडे।
1: बाजीगर के टाइटल सॉन्ग में आपने वायलिंस बड़े प्यारे इस्तेमाल किए, वो क्या था मामला?
2: कहानियां बहुत है इसके बारे में, लोग बोलते हैं अनुजी आप ये बताइए कि ये गाना बना कैसे। बाजीगर इज अ वेरी टफ वर्ड, बाजीगर। अगर इस पर आपको बोला जाए गाना बनाओ, हाउ डू मेक अ सॉन्ग?
1: जी जी।
2: तो मेरे दिमाग में एक दिन मैंने रतन जी को फोन किया, सर एक मुखड़ा है दिमाग में, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। तो बोला सुना, तो मैंने ऐसे सुना है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, ऐसे सुना रहा हूं। बोला बहुत कैसी मुखड़ा, त्रुडन तत्तरा, अप्रूव हो गया।
1: हाँ।
2: लेट्स रिकॉर्ड द सॉन्ग।
1: जी जी जी।
2: मेरा अब ये जो लाइन आती है ये सुनने वाले में, सेट पर हम पहुंचे, सिंगर्स आर ऑन द माइक।
1: हाँ हाँ।
2: ना द सिंगर्स आर ऑन द माइक, अब्बास मस्तान खड़े हुए, पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा, 60 वॉयलेंस, वियोलास, चालोस, एवरी वन, रिदम फॉर्मेशंस, एवरीथिंग इज रेडी। अब सब बोल रहे कि अन्नू मलिक इज रिकॉर्डिंग फॉर अ न्यू हीरो, अ न्यू हीरोइन, सबके फैमिलीज आए हुए हैं
1: जी,
2: सब सुन रहे हैं, और मैं सेट पर हूं। अचानक जब गाना रिकॉर्ड किया, जो आपने पूछा कि वॉयलेंस आए कैसे,
1: हाँ हाँ,
2: ये मैं बोला यार 1 2 3 4 गाना शुरू होता है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, तरन टन टन टडन, सीधा फर्स्ट म्यूजिक आ रहा था, टडम पम पम बम बम तरम पम तम ददम ददम दरर। मैं बोला कुछ कमी है यार गाने में, दम नहीं है। लोग हैरान हो गए, बोला सेट पर हो आप, गाना हमने अप्रूव कर लिया है, अब्बास मस्तान कह रहे हैं। सर ये गाना उठ रहा नहीं है,
1: कुछ करना पड़ेगा।
2: मैं बोला एक इंट्रोडक्शन बनाते हैं।
1: हाँ।
2: वही सेट पर इंट्रोडक्शन बनाया, तो मैं चाह रहा था ब्रास शुड बी कमिंग डाउन, ये सुन रहे हैं, ये सब वॉल्यूम चल रहे हैं, अभी भी कुछ कमी है, मुखड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। तो वहां मेरे एक सोलोइस्ट थे हमारे, उनको मैंने बोला यार एक काम करते हम लोग स्ट्रिंग्स लेके आएंगे, या रोक देंगे,
1: ओ भाई,
2: और वहीं मेरा मुखड़ा बजाओ,
1: ओके,
2: मेरा ही मुखड़ा बजाओ, तारी रारी रारी राम ता, तो ऑलवेज लुकिंग एट मी, ये क्यों किया? फिर बोला इसके बाद मुखड़ा नहीं उठ रहा है। सडनली आई गॉट एन आइडिया, मैंने गाना यहां से शुरू करते हैं, वहीं लिखा गया है।
1: अच्छा,
2: मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर, डाराडाम, ब्रेक, बाजीगर ओ बाजीगर। तो गाने किस तरह बनते हैं, गाने का चेहरा बदल जाता है सेट के ऊपर,
1: क्या बात।
2: एंड आई बिलीव इन इंस्टिंक्टिव क्रिएशन। उस वक्त अब्बास मस्तान रतन जैन मेरे पास आए, बोला तुमने चेहरा बदल दिया गाने का, मुखड़ा उड़ गया, एंड बाजीगर वॉज बॉर्न विद दैट सोलो वॉयलेंट पीस एंड द सिंगिंग एंड द राइटिंग। क्या मतलब उसका अंतरा भी क्या बना था, धक धक धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या कह रहा है, मेलोडी थी। तो सिंगर सैंग विद अ लॉट ऑफ लव, सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड द रिजल्ट कि आज भी गाना बजता है। और पिक्चराइज भी शाहरुख पर और काजल पर इतना ब्यूटीफुल किया था सरोज जी ने कि लोग याद करते हैं उस पिक्चराइजेशन, और क्या शाहरुख लगा और काजल लगी उस गाने के अंदर, लाजवाब पिक्चराइजेशन।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट प्लेस टू प्ले दिस इंट्रोडक्शन म्यूजिक, जिसके बनने की कहानी अभी आपने सुनाई है। विविध भारती पर फेसबुक लाइव भी है ये कार्यक्रम। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसमें से कुछ चुनिंदा सवाल हम अनु मलिक से पूछेंगे। यह है वो म्यूजिक जिसके बनने की कहानी अभी सुनाई अनु मलिक ने।

0: अनु जी, यहाँ यादों की महफिल जम गई है।
1: क्या बात है, क्या क्या गाने आप सुना रहे हैं, मुझे घबराहट भी हो रही, कैसे गाने
0: जी।
1: उसकी मेहनत याद आती है मुझे।
0: मुझे याद है कि मैं जीपी दत्ता साहब से बात कर रहा था और उन्होंने बताया था कि इस गाने की बनने की जो कहानी है, उनको भी विविध भारती से बड़ा प्यार है और काफी काफी दिलचस्प कहानियां उन्होंने बताई थी बॉर्डर की। आप बताइए इसकी सिटिंग की बेमिसाल कहानी।
1: ये जो कहानी है इसकी, ये जो ट्यून है
0: जी,
1: ये जो जगह है, ये मैंने एक जगह, मैं जावेद साहब के साथ बैठा था एक सिटिंग में, एक डायरेक्टर के साथ।
0: हाँ,
1: नथिंग टू डू विद बॉर्डर।
0: ओके,
1: मैंने बैठा था एक सिटिंग में, जावेद अख्तर साहब थे वहां।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और मैंने ट्यून सुना, जावेद साहब को बहुत अच्छी लगी ट्यून, इतना ही। अनफॉर्चुनेटली वो जो डायरेक्टर था उसे समझ नहीं आई।
0: ओके,
1: ये जगह
0: जी।
1: बोला नहीं यार, मुझे नहीं जम रही। ठीक है, हम भूल गए, हम निकल गए। उन्होंने फिर किसी और संगीतकार को ले लिया
0: जी।
1: और हमारे, मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें प्रॉमिस किया गया ये फिल्म आपकी है, फिर ड्रॉप कर दिया है
0: जी।
1: तो ये तो कहानी सभी सभी की होती है, स्ट्रगल की
0: जी,
1: वो अलग बात है। एक दिन मेरे घर में जावेद अख्तर साहब और जेपी दत्ता साहब आए, ओपी दत्ता साहब के साथ।
0: हाँ,
1: ओपी दत्ता साहब उनके फादर
0: जी। जी,
1: मुझे साइन कर लिया था बॉर्डर के लिए। जावेद साहब ने बोला, सिटिंग रूम का दरवाजा जो है अनु मलिक का, उस पर कुंडी लगा दो।
0: अच्छा, बंद कर दो।
1: हाँ, क्या हम चेक करते हैं कि भाई ये लड़के में कितना दम है। मेरा इम्तिहान तो जिंदगी में चलता ही आया
0: जी। जी,
1: जब से मैं पैदा हुआ मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है
0: जी। जी, जी,
1: कोई बात नहीं, कुंडी लगा दी आपने, बंद कर दिया। हाँ, बोला कि आप कुछ सुनाइए। मैं फिर सोचता रह गया कि इतने शब्द हैं, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। ए गुजरने वाली हवा जो बता, जो लाइन आई,
0: हाँ,
1: वहां जाकर मैं इतना इम्प्रेस हो गया, मैंने ट्यून वहां से शुरू की।
0: हाँ,
1: ए गुजरने वाली हवा बता, यहां से जावेद साहब का रिएक्शन आया, जेपी साहब का रिएक्शन आया और दोनों उठे और उन्होंने गले लगा लिया। बोला ये जो इतना बड़ा गाना है तूने यहां से शुरू किया, फिर वो ट्यून जो याद आई थी मुझे, मैं जावेद साहब ने उसको मिला के देखते हैं।
0: हाँ,
1: मिलाया तो जावेद साहब उछल गए और जेपी दत्ता साहब ने गले लगा लिया। सी हाउ सॉन्ग्स आर बॉर्न।
0: जी जी जी,
1: दिस सॉन्ग वॉज बॉर्न आउट ऑफ इंस्टिंक्ट के इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया यूनुस जी,
0: जी,
1: कि हमारे देश की रक्षा करते हैं और अपने माँ बाप से दूर
0: जी,
1: अपने फैमिली से दूर, पत्नी से दूर, बच्चों से दूर, वो इमोशन
0: जी
1: मेरे अंदर आया। एंड द सॉन्ग संदेश से आते वॉज बॉर्न, संदेश से आते वॉज बॉर्न बिकॉज आई मैडली एंड डीपली लव इंडिया।
0: क्या बात है,
1: आई लव माई ग्रेट कंट्री भारत, मैं दीवाना हूं इस देश का
0: जी।
1: मैं समझता हूं कि भगवान ने मुझ पर एक बहुत बड़ा, मतलब एक एहसान किया कि मुझे ऐसे देश में जन्म दिया जहां इतनी मोहब्बत है। और अगर मैं अनु मलिक बना हूं तो इस मिट्टी की वजह से बना हूं
0: जी।
1: और
0: जी,
1: अगर अगला जन्म होता है, अगर कहते हैं है नहीं है पता नहीं, तो मुझे फिर से आप हिंदुस्तानी बनाना।
0: वाह,
1: मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं।
0: ये गाना तो अपनी लेंथ में, अपने अंतरों में भी
1: 11.5 मिनट का गाना है।
0: बताइए,
1: 11.5 मिनट का गाना रिकॉर्डिंग, और एक अंतरा जेपी साहब ने नहीं काटा। और जेपी साहब ने जो फिल्म बॉर्डर बनाई है जेपी दत्ता साहब ने, जितना उनकी तारीफ की जाए कम है।
0: एक और बात है कि लंबे गाने बनाने के भी आप मास्टर हैं, इसके भी इतना ही बड़ा गाना फिर से आपने एक बनाया।
1: कौन से गाने की बात कर रहे हैं?
0: ये जो एलओसी कारगिल वाला।
1: हाँ, एक सीमाएं बुलाएं भी लंबा गाना है।
0: हाँ,
1: एक मैं कहीं भी रहूं
0: जी, जी।
1: ये भी मैंने देशभक्ति गाने बहुत बनाए हैं, देशभक्ति गाने।
0: हाँ,
1: तो मेरा जो प्यार है अपने देश के प्रति, वो मेरे गानों से नजर आता है। कोई मुझे पूछे आप कितना अपने देश से प्यार करते हो, तो मैं एक जवाब देता हूँ, मेरे गाने सुन लो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये जरूर ये बात कहनी पड़ेगी कि सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही एक ऐसा गाना है जो अमूमन ज्यादा सुनाई नहीं देता, तो थोड़ा सा ये गाना सुनाते हैं। क्योंकि संदेशे आते हैं और सीमाएं बुलाएं, अगर ये दो गाने बजाएं रेडियो पर, कुछ प्रोग्राम आधे घंटे के होते हैं, कुछ एक घंटे के होते हैं, आपके दो ही गानों में आधे घंटे का प्रोग्राम निपटाया जा सकता है। सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही और संदेशे आते हैं, खत्म। दो आधे घंटे का प्रोग्राम खत्म, इतने बड़े गाने बनाना आसान काम नहीं है।
1: थैंक यू सर।
0: तो सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही, भारतीय सेना को समर्पित, बॉर्डर और उसके बाद एलओसी करगिल। अनु मलिक ने अपने आप को बार बार साबित किया है। 70 के दशक के अंत में शुरुआत होती है, 80 के दशक में करियर शबाब पर चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस्कवर होते हैं और उसके बाद मोह मोह के धागे के जरिए नए संगीतकारों को बताते हैं कि गाने कैसे बनाए जाते हैं।

की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग। अन्नू मलिक कहानी बाकी है। 12 बजे से लाइव शुरू किया है, 2 बजे तक चलने वाला है। 2:30 पर तिग्मांशु धूलिया लाइव विविध भारती 70वें साल में प्रवेश कर रहा है और जश्न हो रहा है लाइव प्रोग्राम में। ये वो गाना है जो हमारी तन्हाइयों का साथी है।

और ये गाना जिसमें एक फलसफा है, जिसमें एक नाजुकी है, ये गाने हमें गुजरे वक्त में ले जाते हैं, स्वीट 90s में।

0: यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। बहुत कम लोगों को पता है ये कैफी आजमी का लिखा हुआ गाना है।
1: बहुत याद करता हूँ कैफी अंकल को
0: जी।
1: एक्चुअली जब मैं मिला था उनको, उनकी तारीफ करने पहुंचा था जानकी कुटीर में।
0: अच्छा।
1: कि अंकल आपने जो मदन मोहन जी के साथ काम किया है,
0: वाह वाह वाह,
1: क्या क्या गाने लिखे, तो बड़े मुस्कुराए थे। और एक सिचुएशन है जो भट्ट साहब पिक्चर बना रहे हैं, फिर तेरी कहानी याद आई, तो कहते हैं कि मैं बोला टीवी की फिल्म है, उस जमाने में इतना अटेंशन नहीं दिया जाता टीवी को, तो भट्ट साहब का नाम सुनकर बड़े खुश हो गए। महेश भट्ट साहब का नाम, महेश भट्ट साहब की बड़ी अपनी एक, उनका एक मुकाम है, उनकी बड़ी इज्जत है
0: जी बिल्कुल।
1: तो बोला तुम संगीत दे रहे हो, बोला तो ये मुखड़ा सुनो।
0: अच्छा।
1: मेरे दाएं में बैठे हुए थे वो।
0: हाँ हाँ।
1: मैं बैठा हुआ था आराम से, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं थी
0: जी,
1: फिर भी बोलते हैं सुनो ये लिखो। आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ पल अपना है, हम गुजरे हुए पल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। तो मैंने उसी वक्त उनके बोल सुनते सुनते ये ट्यून बनाई थी। जब वो ट्यून बनी तो उन्होंने ऐसे ऐसे थे, ऐसे बैठे थे, सामने देख रहे थे, अपनी तरफ मुझे देखा, शौकत जी भी थी।
0: हाँ।
1: और कहता है यार मेरे सामने तुमने बनाई है।
0: बिल्कुल।
1: ट्यून मैं ना बाजा भी नहीं था उस वक्त, ऐसे गुनगुना रहा था
0: जी।
1: इसको फौरन रिकॉर्ड करो। मैंने रिकॉर्ड कर ली कैसेट प्लेयर के ऊपर।
0: हाँ।
1: छोटा सा उस जमाने में कैसेट प्लेयर होता था, उसमें रिकॉर्ड कर ली। और महेश जी को बोला उन्होंने कि इसने कोई ट्यून सुनाई है, आप सुनो।
0: हाँ।
1: और वो ट्यून इतनी पसंद आई क्योंकि बोल कमाल के थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: द ट्यून तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो शब्द थे उनके कैफी साहब के, वो ऐसे लाजवाब वर्ड थे, वो दोनों का तालमेल हो गया। और महेश जी ने बोले यही गाना रिकॉर्ड करेंगे, और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और आज भी ऐसा लगता है कि ये गाना, यही बैठे हैं कैफी अंकल और यही बैठे हैं महेश भट्ट साहब, और ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है।
0: कितनी प्यारी बात है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे
1: और यादों के हर जंगल में रहते हैं। ये जो लाइन है, यादों के जुगनू के जंगल में रहते हैं, ये पेंट करना शब्दों के जरिए,
0: बिल्कुल
1: वो कैफी साहब ही कर सकते थे।
0: अच्छा, मैं एक और शायर का जिक्र करना चाहता हूँ, और वो इसलिए भी कि उनसे आपका एक ताल्लुक भी है, वो आपके मामा रहे, मामा है।
1: बिल्कुल। वो ऐसे ऐसे गाने लिखे उन्होंने, उनका जो एक कॉम्बिनेशन था, मैं देखिए मेरा बचपन बीता है
0: जी
1: लिस्निंग टू शंकर जयकिशन, क्योंकि मेरे मामा ने गाने लिखे थे, जिया बेकरार है, छाई बहार है।
0: हाँ।
1: आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है।
0: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं अनु मलिक जी के मामा जी, यानी जाने माने गीतकार
1: हसरत जयपुरी साहब,
0: हसरत जयपुरी की।
1: और हसरत साहब हमारे मामा ही नहीं थे, वो कमाल के एक इंसान थे।
0: हाँ।
1: मैं उनके पीछे पड़ा रहता था, मुझे इस रिकॉर्डिंग पर लिखे चलो, बल्कि एक मेमोरी बड़ी ये है कि उनके जो रिकॉर्ड आते थे ना
0: जी जी,
1: तो उनके बेटे घर में बैठ के, मैं बोलता था यार ये शंकर जयकिशन गाना सुनो आप, 11 साल का बच्चा गाने सुन रहा है, जिंदगी के सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, या फिर वहां से पुराने पुराने बरसात के गाने सुनते थे।
0: हाँ जी।
1: राज साहब के जितने भी गाने हैं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, फिर आजा सनम मधुर चांदनी में हम, मुझे लगता है ये सब जितने भी गाने थे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में सवाल, ये सुनते सुनते मेरे अंदर चले गए थे गाने।
0: हाँ।
1: और उसका नतीजा ये था कि जब उन्होंने भी मेरे गाने लिखे
0: जी,
1: आपको याद होगा राधा का संगम।
0: हाँ।
1: ओ राधा तेरे बिना। अब यहां जो बातें हम करते हैं, हम लोग बात नहीं करते ऑफ ऑल दीज महान सिंगर्स, उनमें से आप, जैसे हमने आशा जी के बारे में, आपने मेरा गाना बजाया सोनी बहवाल का
0: जी,
1: तो आपने वो पूछा ही नहीं कि आशा जी का क्या योगदान रहा है मेरी लाइफ में।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, वो बात
1: पहला
0: है।
1: पहला मेरी लाइफ का पहला गाना
0: जी जी,
1: वो संग बाय आशा भोसले।
0: क्या बात है।
1: 1977 मतलब 1975 आई वॉज ओनली 14।
0: हाँ।
1: 1977 उस वक्त गाना जुल्म और सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, और ये नाम है हंटर वाली, ये सब ये मुझे याद है, जुल्म और सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, तेरा जमाना है मैंने माना, मेरा भी एक दिन आएगा। आशा भोसले जी ने भी डैडी को फोन करके बोला था ये आदमी सिखाए क्या।
0: हाँ, हाँ।
1: आशा जी ने पूछा।
0: वाह।
1: तो डैडी ने बोला नहीं, ये क्या करता है कि मैं कोई शब्द देता हूं और ये अचानक गाने बना लेता है।
0: हाँ हाँ।
1: तो आशा जी बोलती है खड़े खड़े बैठ ये लड़का ये कैसे कर लेता है। तो यहां

0: सरस्वती माँ ही बोल रही हैं, और वो ही नतीजा है कि आशा जी लता जी रफी साहब, किशोर कुमार
1: जी,
0: ये सब मेरे गाने गाते थे और मुझे आशीर्वाद देके जाते थे।
1: क्या बात है।
0: यानी कि किशोर दा ने तो मुझे कंपेयर किया था, बोला तुझमें पंचमदा की खुशबू आती है। जब मैंने गाना बनाया था बनके नजर दिल की जुबां, कहने लगी एक दास्ता जो किशोर दा ने गाना गाया था।
1: यस, यस,
0: मैं बोला क्यों क्यों, बोला जितना तेरा मुखड़ा मीठा है उतना ही तेरा अंतरा मीठा है। अब ये भी मैंने सीखा कि मुखड़े पर दम मत तोड़ना। मुखड़े पर अगर तूने दम तोड़ दिया तो अंतरा मजा नहीं आएगा। A good composer is one who makes a very good antara. ये हमने सीखा था आर डी बर्मन से, ये हमने सीखा था कल्याण जयानी जी से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, ये हमने सीखा था शंकर जयकिशन से। आप जितने भी गाने सुनते हो, सचिन देव बर्मन के गाने सुन लो, उनके मुखड़े अंतरे सुन लो, मदन मोहन जी के सुन लो, सलील दा के सुन लो, नौशाद साहब के सुन लो, डैडी के सुन लो, रोशन साहब जिनके बारे में हम नहीं बोलते, सी रामचंद्र जी,
1: बिल्कुल,
0: ये ऐसे महान लोग हो चुके हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, यूनुस भाई आप मेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है मुझे और बहुत दूर जाना है, बहुत मेहनत करनी है, अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूं जहां ये बड़े बड़े मास्टर्स पहुंचे हैं।
1: देखिए
0: मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कोई कमाल का काम किया। आप लोग मेरी तारीफ करते हो तो मैं हैरान हो जाता हूं। मैं तो ये बड़े बड़े गाने सुनता हूं तो मैं बोलता हूं कि क्या लाजवाब लोगों ने लिखा है, काम किया है, गाया है, मैं कैसे गाने बनाऊं ऐसे। आज भी मेरे अंदर ये एक आग लगी हुई है कि मैं ऐसा काम कैसे करूं और कब करूं।
1: जी, एक और शख्स के साथ आपने काम किया है जो बहुत ही जादू भरा काम है। ये वो शख्स हैं जिनके हम सभी दीवाने हैं और जो ये गाना लिखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस गीतकार की बात कर रहा हूं, पर इस गाने के जरिए आपको लगेगा अंदाजा। जहां तक मुझे अंदाजा है, इनके साथ चार फिल्में की हैं आपने।
2: मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं लेकिन
0: करें। उनके साथ मैंने गाना, सबसे पहली फिल्म थी वो थी अक्स, ये रात जल्दी की छिपकली रात, ना निगली जाए ना उगली जाए। गुलजार अंकल
1: जी
0: के बोल ही तरस छीन कर लेके आते थे। तू हवा है, फिजा है, जमी की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ। या फिर जो गाना मेरा फेवरेट है, सौ दर्द है,
1: सौ राहतें,
0: सब मिला है मुझे, एक तू ही नहीं।
1: क्या गाना बनाया?
0: इसमें मैंने जान लगा दी थी, ये वर्ड्स मुझे इतने अच्छे लगे थे, जाने मन का म्यूजिक था
1: जी।
0: अशोका में अगर आप सुनो गाने, रोशनी से भरे भरे,
1: बिल्कुल
0: भरे भरे नैना तेरे, छू कर बोले ना छूना मुझे, क्या लाइन है। तो अक्स हो या फिर फिलहाल उनकी मेघना गुलजार की पहली फिल्म
1: जी,
0: उसका म्यूजिक मैंने दिया। बल्कि मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि जितने भी मेजर डायरेक्टर्स लॉन्च हुए हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, ज्यादातर उनकी पहली फिल्म मेरे साथ रही है। ये लोग जानते नहीं है कि मेघना गुलजार की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: जी,
0: फिलहाल तनुजा चंद्रा की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: जी,
0: फराह खान की पहली फिल्म मैं हूं ना
1: जी,
0: जिसे गाने बड़े लोकप्रिय हैं, मेरे साथ थी। राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म मेरे साथ थी,
1: मुन्ना भाई
0: MBBS
1: जी।
0: तो बहुत से डायरेक्टर्स हैव लॉन्च द कैरियर्स विद मी एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत से सिंगर्स को हमने डिस्कवर किया है
1: जी,
0: और मैं अपने आप को इतना मतलब भाग्यशाली मानता हूं कि लोग कभी कभी कहते हैं यार तुमने इसको डिस्कवर किया, इसके साथ काम किया। मैं समझता हूं कि ऊपर वाले ने मुझ पर एहसान किया है कि मुझे अच्छे अच्छे लोग से मिला है। ये बहुत नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा काम करूं अगर अच्छे लोग मेरे साथ नहीं आते। मैं बार बार कहता हूं संगीत संगत का काम है
1: जी जी जी।
0: हर आदमी को समझना चाहिए कि संगीत एक आदमी नहीं बनाता
1: जी,
0: उसके साथ बहुत से लोग होते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो मिलकर जान लगाते हैं
1: बिल्कुल।
0: और एक ही प्रॉब्लम होता है संगीतकार की, जो मैं फिर आपके विविध भारती पर कहना चाहता हूं कि सबसे अकेला भी एक ही आदमी होता है जब गाना बनता है, वो है संगीतकार। अब आप पूछोगे अनु जी संगीतकार अकेला कैसे होता है, सुनने वालों को बताना चाहता हूं।
1: यस,
0: ये मैंने हर प्रोग्राम में बोला, अभी भी बोलूंगा कि जब निर्माता निर्देशक घर पर आते हैं और कहते हैं हमें आपको साइन करना है, फिर निर्देशक सिचुएशन बताता है, उस वक्त सबसे अकेला महसूस जो अकेला होता है वो आदमी, वो होता है संगीतकार। उसके उस वक्त पर ना लिरिक राइटर होता है, ना उस वक्त सिंगर होता है, ना उस वक्त

0: साजिंदे होते हैं, कोई नहीं होता, सामने डायरेक्टर बैठा होता है और बोलता है मेरी सिचुएशन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं
1: जी,
0: फिल्म है मुन्ना भाई MBBS,
1: यस,
0: गाना कहते हैं हमें एक गाना चाहिए। मैं बोला गाना पिक्चराइज कहां किया जाएगा, और उनका डायलॉग आता है गाना अस्पताल में पिक्चराइज किया जाएगा। आप मुझे सोचिए, अगर आपको बोला जाए कि अस्पताल में गाना पिक्चराइज हुआ, हाउ वुड योर रिएक्शन, आप क्या गाना सोचेंगे? हॉस्पिटल रात को गाना है, अब क्योंकि गाना लोकप्रिय हो चुका है तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब वो संगीतकार के सामने वो सिचुएशन दी जाती है, और मैं ही नहीं, ऑल द कंपोजर्स इन द वर्ल्ड, द लोनलीएस्ट मैन ऑन द प्लैनेट व्हाइल मेकिंग अ सॉन्ग इज द कंपोजर।
1: यस यस।
0: और वहां डायरेक्टर बैठे हुए राजकुमार हिरानी, और मैंने गाना, मैंने तर्ज छेड़ी, तो राजकुमार हिरानी जी ने डॉक्यूमेंट किया है ये, बोला भी है कि अन्नू मलिक उठे और अपने हॉल में 15 मिनट चले आए। मैं हॉल में दरवाजे से देख रहा था, अन्नू मलिक यहां चल रहे हैं, और चलते चलते अचानक 15 मिनट बाद आए और बोलते हैं एक मैंने चीज सोची है।
1: अच्छा।
0: तो 15 मिनट में, और मैंने ऐसे गाया, मैंने एक वर्ड देख ले आंखों में आंखें। अब ये गाना बना कैसे? उन्होंने एक लाइन बोली थी राजकुमार हिरानी साहब ने कि एक आदमी 12 बजे और 4 बजे के बीच में अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहिए उसको।
1: जी जी जी जी।
0: क्योंकि 4 बजे वो गुजर जाएगा, ही विल डाई, ही इज गॉट अ टर्मिनल डिजीज,
1: राइट राइट,
0: मगर उसको वो हर खुशी मिलनी चाहिए बिटवीन 12 एंड 4। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं सॉफ्टली शुरू करूं और भी पेशेंट्स हैं, तो मैं लाउडली नहीं शुरू करूंगा, लाउडली बाद में होगा, तो मैंने ऐसे शुरू कर, देख ले आंखों में आंखें गले, जीवन के बल है चार, याद रख मरने से पहले जीना
1: सीख ले,
0: सीख ले। तो आज ये गाना लोग सुनते हैं तो पूछते हैं बना कैसे, तो उस वक्त जो संगीतकार अकेला होता है, वो संगीतकार ही जाता है, और वो मेरी बात नहीं है, पंचमदा भी अकेले होंगे, शंकर जयकिशन भी अकेले होंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी अकेले होंगे, मेरे फादर भी अकेले होंगे, और इनको मैं इसलिए सलूट करता हूं और बार बार घूम के इसी बात पर आता हूं कि आप दुआ करो कि मैं इनके करीब थोड़ा भी आ सकूंगी। ये महान लोग हैं, आप आज भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैंने ऐसा कमाल का कुछ काम किया है जो इनके करीब आ सके।
1: मुन्ना भाई MBBS, ये वो गाना है जो विविध भारती पर अक्सर सुबह बजता है और लोगों से ये कहता है कि सुबह हो गई, जाग जाओ, अनु मलिक का गाना सुन लो, जॉगिंग करो, चाय पियो।

0: 吃了好的一麻木吃了好的一麻木麻木
1: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग

0: की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। गुलजार साहब के साथ के चार गाने बजाए मैंने,
1: बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि गुलजार साहब जितने अच्छे राइटर हैं उतने ही आउटस्टैंडिंग लाजवाब इंसान हैं, और इतना इनकरेजिंग लिरिक राइटर, इतने इनकरेजिंग इंसान मैंने आज तक नहीं देखा
0: जी।
1: बहुत ही प्यार करने वाले हैं
0: बिल्कुल,
1: और इतना कुछ कर चुके हैं, इतना उनसे मैंने चीज सीखी रहा हूं, नम्रता, मोहब्बत, अपने काम को कितना प्यार करना चाहिए, कितनी शिद्दत से, लगन से काम करना चाहिए, जितने भी गाने, और मुझे बहुत प्यार करते वो, आज भी मेरा फोन उठा लेते हैं।
0: हाँ।
1: और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुलजार साहब डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं।
0: कितना बड़ा चैलेंज था कि उनके अल्फाज आपके पास आ रहे हैं और ट्यून बनाना है,
1: क्योंकि मेरे दिमाग में तो अचानक मदन मोहन जी याद आ गए,
0: बाबा
1: पंचमदा याद आ गए, और मैंने बोला कि ऐसे लोगों के साथ काम करने वाला इंसान सामने बैठा हुआ है, खुद एक कमाल के डायरेक्टर हैं, स्टोरी स्क्रीन पे उनके आंधी फिल्म की आप फिल्म देखो, म्यूजिक सुनो, तब मुझे पता लगा कि मैं जिसके सामने बैठा हूं मुझे जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मैं बार बार कहता हूं उनके बोलों में इतनी ताकत और शिद्दत है।
0: हाँ।
1: कि बोलों में तरस छुपी हुई होती है।
0: क्या
1: उन्होंने लिखा कि तू हवा है फिजा है जमीन की नहीं तो घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, अचानक मेरी ट्यून को सुनते सुनते तू हवा है फिजा है जमीन की नहीं तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ टूररूरा। और गाने बनते गए, रिकॉर्ड होते गए, और आज भी अक्स फिलहाल फिजा जाने मन अशोका जब बजते हैं गाने तो लोग उनको अपने सीने से लगाते हैं। ये जो गाना भी आपने बजाया चित्रा जी याद आ गई, क्या गाया।

0: बिल्कुल
1: रात का नशा अभी आंख से गया नहीं दूर। हमने फ्लूट्स यूज किए इसके अंदर,
0: हाँ।
1: तो माय गॉड आज भी, और क्या गाया, क्या क्या जान लगाई
0: अनुजी ने। अब जो मैं बजाने वाला हूं ना, जितने लोग यहां मौजूद हैं और जितने लोग कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, ये सारे लोग झूम उठेंगे।
1: डडांग
0: डडांग, इसके बाद आएगा
1: माय गॉड
0: डडांग, इसके बाद आएगा।

0: की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग।
1: अनु जी, एकदम अलग दौर के गानों की बात मैं करने
2: जी सर,
1: ये जो कमाल है ये क्या था? एक तरफ अगर तुम मिल जाओ, दूसरी तरफ भीगे होंठ तेरे।
2: वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है
1: जी,
2: वक्त के साथ इंसान को तर्जे बनानी पड़ती है। नए निर्माता आते हैं, नए निर्देशक आते हैं, अपनी अपनी अपने अपने इमोशंस लेके आते हैं।
1: हाँ।
2: नए हीरोज आते हैं, एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं।
1: हाँ।
2: वो अपने एक अंदाज लेके आती हैं। जनरल पब्लिक जो है एक चेंज मांगती है। हमारे अंदर एक कहावत है ना, आपको परिवर्तन ही संसार का नियम है
1: जी।
2: और अगर आप अपने आप को उन्हीं यादों में रखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: आपको हर वक्त बदलना पड़ता है, हर वक्त नई चीज करनी पड़ती है, हर वक्त ऐसे गाने पब्लिक के लिए बनाने पड़ते हैं जो उनको, देखो हर हिंदुस्तानी के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की है, बड़ा मेलोडिक होता है। वो गाना गा सके या ना गा सके लेकिन वो गाना समझता बहुत है।
1: बिल्कुल,
2: वो गुनगुना लेता है उसके अंदर। अगर आप ऐसा गाना बना दो जो उनके दिल की बात है तो वो गाने को सीने से लगा लेंगे।
1: एक चीज जो मैंने देखी है कि आपकी पूरी संगीत की यात्रा में जहां मौका मिलता है वहां मेलेडी का दामन पकड़
2: वही वही बिल्कुल गुनगुनाने लायक वाले गाने नहीं होंगे तो गाना में दम ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, फिर बार बार कहूंगा, हर हिंदुस्तानी के अंदर संगीत कूट कूट के भरा हुआ है।
1: yes.
2: किसी भी प्रांत में चले जाओ, महाराष्ट्र में देखो, गुजरात में देखो, लोकगीत जो है
1: बिल्कुल,
2: गुजरात में भी क्या टैलेंट है।
1: यस,
2: आप चले जाइए साउथ में, आप चले जाइए पंजाब में, आप चले जाइए राजस्थान में, आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आप कहीं भी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं इस देश में कि जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं समझता हूं कि लाजवाब सिंगर्स, लाजवाब कंपोजर्स, लाजवाब म्यूजिशियंस, लाजवाब टैलेंट है हमारे देश में। हिंदुस्तान एक ऐसा महान देश है जहां इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है, गली गली में है। उनमें से मुझे चुनकर सरस्वती माँ ने अगर अनु मलिक बनाया है तो मैं उनका जितना शुक्र करूंगा कम है।
1: बिल्कुल,
2: मैं अपने आप को

0: यस अनु जी, चाइना गेट बहुत ही अलग तरह की
1: फिल्म। ये गाना एक ही गाना था चाइना गेट में, एक ही गाना चाहिए था। इट वॉज अ मेल ओरिएंटेड फिल्म।
0: हाँ,
1: और बड़ा चैलेंज था। राजकुमार संतोषी साहब ने कहा कि यार कोई ऐसा गाना बना दो।
0: हाँ,
1: उनके फाइनेंशियल भरत भाई भी आए थे।
0: जी जी।
1: कि बड़ा एक लोकप्रिय गाना बन जाए।
0: जी।
1: तो मैंने ये सोचा कि छम छम ये बना भी कैसे, मतलब छम छम छम छम सब बोलते हैं।
0: हाँ,
1: चूड़िया खनकी, खनखाने वाले आ गए, छम छम बाजे रे पाए लिए। लेकिन बोला राजी, मेरे दिमाग में मुखड़ा आ रहा है। छम को छम्मा कर, छम्मा छम्मा। लेकिन जब ट्यून बनी ना, जब ट्यून सुन के वो गदगद हो गए।
0: हाँ।
1: और समीर जी ने फिर उस गाने को जो लिखा है,
0: जी जी,
1: समीर अंजान साहब
0: बिल्कुल,
1: और बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। तो गाना फिर जब बन गया और रिकॉर्ड हुआ, फिर जो पिक्चराइज हुआ, तो मेरा गाना ये, मैंने आपको पता, बड़ा शौक है, आपने समिंदर पाल बोला, मैडम एक्चुअली बड़ा इसमें मेरा ये अजीब बिटर स्वीट मेमोरी है।
0: बिटर स्वीट,
1: हाँ, स्वीट मेमोरी है कि गाना इतना लोकप्रिय हुआ
0: बाद में हॉलीवुड की फिल्म।
1: हॉलीवुड में जब गया, वहां जब मैं एलए में था, सैन फ्रांसिस्को में, तो मैं एक थिएटर में जाके पिक्चर देखता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरा गाना बज रहा है छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी बाजे रे निकोल किडमैन पर। वहां सबका सिंगर का नाम दिया, लिरिक राइटर का नाम दिया, मेरा ही नाम नहीं है।
0: अरे अरे अरे।
1: और मुझे बड़ा रंज हुआ है, क्योंकि जब हमने इतना मेहनत की मुखड़े पर, अंतरे पर, ट्यून पर।
0: हाँ।
1: कोई बात नहीं, लेकिन हमें हिंदुस्तानियों का प्यार मिल गया, वही काफी हमारे लिए।
0: बिल्कुल।
1: मैं बाहर नहीं देखता हूँ, हमारा हिंदुस्तान इतना महान देश है कि या एक हर एक हिंदुस्तानी आपको सीने से लगा लेता है, उससे बड़ा, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
0: यस। और अनुजी, अब एक ऐसी फिल्म जिसमें इतनी स्वीटनेस थी इन गानों में, और एक नई गायिका को लेकर आया।

0: और वीर चोपड़ा जी जो अभी नहीं रहे याद आते हैं,
1: हाँ हाँ,
0: तो उन्होंने कहा कि हमारी नई हीरोइन है और एक नई आवाज चाहिए फीमेल के लिए, और बहुत ऑडिशनिंग हुई और संजीवनी जी से मिलाया इन्होंने मुझे, इनकी आवाज बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इमोटिव आवाज है, बहुत शिद्दत से गाने वाली इंसान है, और नतीजा ये हुआ कि आज जितने भी गाने ये आज इतने चलते हैं गाने अभी भी कि अगर मैं शो पर परफॉर्म करूं तो लोग चाहते हैं कि ये गाने सुनाए जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा। असल में ये हुआ कि ये दोनों करीब और जोश इसलिए मिक्स हो गई कि मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं जोश और अकेले हम अकेले तुम की भी बातें करूं और अकेले हम अकेले तुम में
0: बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं फिर तेरी कहानी याद आई, जोश और अकेले तुम की बात कीजिए, मंसूर खान साहब याद आते हैं मुझे फिल्म जोश के, उनकी पहली फिल्म मैंने की थी अकेले हम अकेले तुम, और उसके गाने बट यू लव मी डैडी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, या फिर राजा को रानी से प्यार हो गया, या फिर दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल को कभी, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, ये गाने सब आज इतने लोकप्रिय हैं। और मंसूर खान ने जो काम निकाला, नास्तर साहब के बेटे हैं, सुरीले इंसान हैं, बहुत मेहनत करवाई, लेकिन मजरू अंकल ने भी जो काम किया है उसमें, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने जिनका आपने नाम अभी तक जिक्र नहीं किया, लेकिन अकेले हम अकेले तुम में जो मजरू साहब ने काम किया मेरे साथ, ओए हो क्या बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना सुनते हैं।

0: अनु जी, जोश फिल्म की बातें हो रही हैं, मंसूर खान की फिल्म, और संजीवनी को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, और
1: ये फिल्म थी करीब
0: जी, हाँ सॉरी करीब,
1: हाँ ये जोश की नहीं, ये फिल्म थी करीब, विधु विनोद चोपड़ा साहब की फिल्म थी,
0: हाँ

एक तरफ मजरू साहब का ये गाना और दूसरी तरफ एक ऐसा गाना जो बहुत बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। फिल्म का नाम है डुप्लीकेट।

0: भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग। विविध भारती की सालगिरह का जश्न अनु जी के संग हो रहा है और दो गानों की बातें करेंगे और उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे। ये गाना जिसके गाने के बनने की कहानी चाहिए हमको, जिस तरह के तबले आते हैं हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक के लिए, ये नया था। बताइए अनु जी,
1: ये आपने कमाल कमाल के सवाल किए हैं और मेरे जितने भी गाने आपने बजाए हैं उसकी कहानियां सुनी है आपने
0: जी,
1: इसका बड़ा कमाल काम है। ये पिक्चर बन रही थी फराह खान की पहली फिल्म
0: जी,
1: और फराह खान कम्स आउट विद एन आइडिया कि यार अन्नू इस फिल्म में
0: हाँ
1: कवाली करते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कवाली बनाना इतना आसान नहीं है। कवाल को मैं, जितने भी कवाल्स हैं हिंदुस्तान में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि कवाली बनाना बहुत मुश्किल काम होता है
0: जी।
1: तो उस समय नहीं, मुझे कवाली चाहिए
0: जी।
1: तो मैं बोला अगर कवाली करेंगे तो मेरे स्टाइल में करेंगे
0: हाँ।
1: तो जावेद साहब सामने बैठे हुए थे
0: जी।

0: But what is your style? What do you mean, Kavali, your style?
1: Huh.
0: I said, sir, let's start with, what's up?
1: अरे बाप रे
0: विकेट. मैंने ऐसे बोलो जावेद साहब भड़क गए, उड़ गए वो. मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये कवाली नहीं हुई.
1: हाँ.
0: तो फराह खान पकड़ के ले गए.
1: हाँ,
0: तो मैंने एक पीस सुनाया उनको.
1: हाँ.
0: डारी डांडी डारी डांडी डारी डांडी डारी डांडी डांडा डांडा डांडा, ये इतना सुनाया. तो जावेद साहब बोलते हैं ये तो म्यूजिक पीस है ना. मैंने सर नहीं सर, फराह बोलती इस पर भी आपको लिखना पड़ेगा. अच्छा बता, बड़ी छोटी जगह स्टकाटो है ये.
1: हाँ.
0: लगाड़ो भी नहीं, लगाड़ो दारी रा रा रारी रा, ऐसा नहीं है. तारी नांदी दानी नांदी दानी नांदी दान. तो इतनी छोटी जगहों पर उन्होंने जावेद साहब ने जो वर्ड लिखे, देखो बेहारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम.
1: वाह वाह वाह वाह.
0: एंड वहां पर वो लिखा है तुमसे मिलकर मैंने ट्यूशन दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा. तो उन्होंने लिखा तुमसे मिलके दिल का है जो. हाँ, सामने लिखा उन्होंने. अब गाने की जब रिकॉर्डिंग आई तो मैं चाहता था, उस जमाने में बड़े बड़े कव्वाल थे उनके साथ मैं काम करना चाह रहा था.
1: जी.
0: नई डायरेक्टर, बजट का प्रॉब्लम. तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये मुश्किल होगा कव्वाल को लेके आना. तो कुछ मैंने अपने साजिंदे को बोला कि, उन्होंने बोला कि यार माही में कोई है साबरी ब्रदर्स बोलते हैं, बहुत गुनी है. तो मैं ये जगह है देखो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने. वो आए, उन्होंने बहुत मेहनत की और आकर उन्होंने ये गाना गाया. लेकिन इसके पीछे जो कहानी है कि रिदम क्या होगी.
1: हाँ, ये रिदम बिल्कुल
0: तो रिदम कैसे होगी. तो मैं बोला कव्वाली के अंदर एक ढोलक तबला जाते ना टिपिकल ता ता ता ता ता, ये होगा.
1: हाँ,
0: ये ठेका होगा. आई वांट टू चेंज दिस ठेका, आई वांट टू चेंज इट.
1: हाँ.
0: तो मैंने बोला भाई साहब, मैंने बोला भाई साहब तबले बुलाते हैं.
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ. तबले मतलब 20 तबले.
1: 20 तबले.
0: हाँ,
1: हाँ.
0: मगर सिर्फ उनकी चाटिया बजाएंगे, बाया नहीं बजाएंगे.
1: ओके.
0: मैं तो बेस गिटार तनांग चिक दुम तम कचिक दिंग तनांग चिक दिंग तम कचिक दिंग तनांग चिक दिंग. अब ये साउंड जब बजा है, रिकॉर्ड हुआ है, तो तारा नंद धारा नंद धारा नंद धारा नंद धाम बाम बाम बाम बाम बाम बाम तनांग कचिक दिंग तम कचिक दिंग तना. और ये भाई साहब हमारे इतना गुनी इंसान रंजीत जी, उन्होंने बोला अन्नू जी आपने ये बात जो मुझे बोली है.
1: हाँ.
0: इस पर मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं लगता हूँ इसके ऊपर.
1: जी.
0: और भाई साहब लगे उस पर.
1: जी.
0: और हम बैठे हुए रात से सुबह हो गई.
1: जी.
0: ये आइडिया उनको बजाते बजाते उसके जो साउंड है ना, उसके जो चाटी का साउंड, उसको ट्यून के सुर में लाना था. कौन से.
1: हाँ.
0: कौन सा जो मुखड़ा है.
1: बिल्कुल.
0: तुमसे मिलके दिल का है जो. हाल गया. अब ये इसी सुर में द तुरी डोरी डोरी डोरी डोरी डोरी दारी रारी रा रा राम ये तनांग चिक दिंग कचिक दिंग तनांग. तो बेस गिटार लेके साउंड लाके स्ट्रिंग्स डाल के अचानक फिर जो गाना बना, फिर वहां साबरी ब्रदर्स बा सोनू जी वो सब मिलकर जो फिर वो जो हरा नाची है.
1: क्या बात है.
0: हाँ, उससे बोले ये क्या गाना मिल गया. और गाना उसके बाद तो कव्वाली का ट्रेंड शुरू हो गया था.
1: वाह.
0: तो बहुत मेहनत की मैंने इस गाने पर. आई टेल यू समथिंग, उसके अंतरे बनाते बनाते जावेद साहब ने कमाल लिखा. पिक्चराइज मेरे शब्द पर हुआ था और सब पर जो पिक्चराइज किया फरहान ने.
1: हाँ.
0: इट बिकेम अ मैजिकल सॉन्ग.
1: बिल्कुल बिल्कुल. इसका ये ओपनिंग पीस सुनते हैं और उसके बाद एक बहुत ही नशीले गाने की बात.

विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। और अब इस गाने की बात, जिसके बिना ये गाना अधूरा, ये कार्यक्रम अधूरा। ये गाना ये दिखाता है कि अनु मलिक खुद को रीडिस्कवर करते रहते हैं, बदलते वक्त के साथ खुद को साबित करते रहते हैं। 70 के दशक के आखिर से शुरू हुआ ये सफर, 80 के दशक पर परवान चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस्कवर होता है, 2000 के दशक में वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, और उसके बाद मोह मोह के धागे, यानी नई सदी में भी अनु मलिक का जादू कायम।

0: अनु जी, ये गाना तो मैजिक है। नए गीतकार वरुण ग्रोवर, शरद कटारिया की फिल्म, बताइए।
1: सबसे ज्यादा श्रेय जाता है YRF को
0: जी,
1: जिसके हेड हॉन्चो हैं हमारे फेवरेट, हम सबके फेवरेट आदित्य चोपड़ा साहब।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जिनका मुझे बुलावा आया, वो ज्यादा क्रेडिट लेना नहीं चाहते इस बारे में, बोलते मेरे बारे में ज्यादा मत बुला करो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उन्होंने मुझे फोन करके मैसेज देके बुलाया। और शरद कटारिया साहब की स्क्रिप्ट सुनकर मैं गदगद हो गया, कमाल की स्क्रिप्ट
0: जी।
1: आयुष्मान खुराना, भूमि पंडनेकर ने जो काम किया इसमें
0: जी,
1: मनीष शर्मा प्रोड्यूसर थे इसके, ये दोनों आए मेरे पास और आदित्य साहब ने बोला कि अगर आप इनको कन्विंस कर जाएं तो ये पिक्चर आपकी है ना, ये गाना करते हैं। मुझे जब सिचुएशन बताई मैं समझा, इन्होंने बताया कि हरिद्वार का सेटिंग है ये, मैं समझा, पता नहीं मेरे दिमाग में बनारस क्यों चल रहा था, और मैं अकेला रूम में बैठा हुआ
0: हाँ
1: तर सोच रहा था। 4 घंटे चले गए, 5 घंटे चले गए, 6 घंटे चले गए, कोई रिएक्शन नहीं।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तब दरवाजा खुलता है और शरद कटारिया साहब आते हैं, मनीष शर्मा आते हैं। मैंने ट्यून सुनाई, पहले तो कुछ बोले नहीं, फिर शरद जी बोले अगर हम कोई नया राइटर लाएं इसके अंदर तो आपको ठीक चलेगा। हमने पहले सोचा था, मैंने बोला भाई गुलजार साहब होंगे
0: जी,
1: बोले नया राइटर जरूर ले आइए, प्लीज आई एम गेम टू वर्क विद एनीबॉडी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए कि ये जो शब्द वरुण ग्रोवर ने मुझे दिए हैं
0: जी,
1: ये मोह मोह के धागे,
0: बाद में तेरा चाव लगा के जैसे घाव लगा, वो भी
1: उन्होंने लिखा था
0: जी।
1: मैंने बोला ये लाजवाब राइटर है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे।
0: वाह वाह वाह।
1: और जब तर्ज बनी तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मुझे वो सिंगर्स चाहिए जो मेरे साथ बैठे रिहर्सल करें। और इसका तो एक वीडियो भी बनाता है रिहर्सल का, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है
0: जी जी।
1: कितनी मेहनत की हमने इस गाने के ऊपर। गाना जब रिकॉर्ड हुआ और जो पिक्चराइज हुआ, और आज मैं आपको बहुत खुशी से कहना चाहता हूं कि 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले
0: बिल्कुल
1: इस फिल्म को, इस गाने को, द बेस्ट लिरिक्स एंड द बेस्ट सिंगर मिला। ये अलग बात है कि अनु मलिक को भूल गए मुझे नहीं मिला उसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट फिल्म भी मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार।
0: यस यस यस।
1: एंड 2016-17 की बात है ये।
0: और उस फिल्म के एक गाने में आपने 90s को रिलीव किया था, एक झलक सुनवाता हूँ।
1: तुमसे मिले दिल में हुआ दर्द करारा।

0: अनुजी, अब बहुत कम वक्त बचा है। विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है, इतने सारे लोग और सभी आपके दीवाने, बताइए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि मैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा आभारी हूं, जिन्होंने मुझे अन्नू मलिक बनने का मौका दिया। मैं अपने देश का बड़ा आभारी हूं, जिस देश में मैंने जन्म लिया है, जहां मुझे ये कला मिली है। हर सुबह उठ के इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं और ऊपर वाले से कहता हूं कि भगवान, अगर दूसरा जन्म है तो इसी देश में हो, हिंदुस्तान में हो, क्योंकि सारी दुनिया में अगर नाम हुआ है तो इसी देश से हुआ है। मैं अपनी जनता का बहुत बड़ा आभारी, जिन्होंने मुझे हर तूफान में हर वक्त संभाला है।
0: अनुजी,
1: मुझे मेरे गानों को प्यार दिया है, मुझे इज्जत दी है। आज जितने भी मैं विविध भारती में आया हूँ, जितने भी मुझे यहाँ लोग मिले हैं
0: जी,
1: ये सब मेरी बहनें जिनको मैं देख रहा हूँ, इतना प्यार से गाने नाच रहे थे और इतने दिल से रिएक्शन दिया है कि विविध भारती का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया
0: जी।
1: आपका यूनुस भाई, जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और मेरा दिल कहता है कि हमारी जनता को ये प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा और जरूर सीने से लगाकर इसको एक यादगार प्रोग्राम समझेंगे। 70 years इज नो मीन अचीवमेंट।
0: यस,
1: तो मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी 11 को अन्नू मलिक 50 साल कंप्लीट कर रहा है इंडस्ट्री में,
0: तभी बैठेंगे और तब लंबी बातें करेंगे।
1: और 14 साल की उम्र से शुरू हुआ वह आदमी अपने बाजे को लेकर चला था मैं, और एक ही शब्द बोलता हूँ जो आज भी बोलता हूँ, मैं गलियों का राजा, मेरी दौलत ये मेरा दिल है और ये मेरा बाजा।
0: क्या बात है, क्या बात है। एक आवाज पर मेरी आप विविध भारती के स्टूडियो में आ जाते हैं और आप इस सम्मान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बात, कभी भी आपको विविध भारती बुलाओ, बस एक बार कहना होता है अनु जी,
1: नाम क्या है इसका? विविध भारती
0: जी।
1: भारत जहां होगा, जहां भारत शब्द कहलाया जाएगा, वहां अन्नू मलिक जाके अपना माथा टेकेगा।
0: वाह, शुक्रिया। बिल्कुल समय खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत लेते हैं, आप आए, बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में शुरू होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और आज लेकर आई हूं एक खास मेहमान। वो है जाने माने लेखक, निर्देशक और एक्टर तिग्मांशु धूलिया जी। तिग्मांशु जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं।
1: नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
0: तिग्मांशु धूलिया एक लेखक, निर्देशक और अभिनेता जिनकी कलम में यथार्थ की कहानियां हैं।
2: 28 बरियर, 7 पानिया गड्ढा पार करके सारा नेशनल चैंपियन माने। कौन ने पूछा।

0: ये तीन स्टेट की पुलिस को चकमा देंगे, ये किडनैपिंग कर लाई तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा।
1: जिनके कैमरे में जिंदगी की सच्चाई है, अभिनय में किरदार की धड़कन, गैंग्स ऑफ वासीपुर, शाहिद, माझी द माउंटेन मैन और भी बहुत सारी फिल्में।
2: हमें तुम्हारी लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाए।
1: हासिल से हासिल हुआ कामयाबी का सफर।

0: पान सिंह तोमर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार का स्वर्ण कमल दिलाया। फिर तो साहब बीबी और गैंगस्टर, शागिर्द, बुलेट राजा, राग देश, मिलन टॉकीज जैसी बहुत सारी फिल्में उनके निर्देशन और लेखन से आईं। तो आइए एक बार फिर स्वागत करें तिग्मांशु धूलिया का। तिग्मांशु जी, विविध भारती का ये 70वां स्थापना दिवस है और रेडियो से आपको बड़ा प्यार है, तो बताइए आज इस जश्न के मौके पर हमारे देश भर के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एक तो मुझको इस अपनी इस वर्षगांठ में बुलाने के लिए विविध भारती में बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप सबका। ये मेरी पहली बार नहीं है, मैं कई बार, दो तीन बार पहले भी आ चुका हूँ।
0: जी जी।
1: तो पता नहीं क्यों आप लोग मुझे बार बार बुला लेती हैं, इसका पता नहीं क्या कारण।
0: क्योंकि आपको रेडियो से बहुत प्यार है और हम सबको आपसे।
1: हाँ, तो रेडियो का ये कि बचपन में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेडियो ही था, ट्रांजिस्टर जिसको हम अपने सोते वक्त तकिए बगल में लगा के सो जाते थे, और हवा महल, और फिर बहुत सारे वो बिना का गीत माला, और फिर उसके बाद प्रायोजित कार्यक्रम भी होने लगे, मोदी कॉन्टिनेंटल और ये वो टायर
0: छाया गीत
1: और तमाम। और तो उस एक तो भाषा अच्छी होती थी बहुत रेडियो की उस वक्त, उसने बहुत दिया
0: जी।
1: और हमें सिर्फ अपने वक्त के गानों से, अपने वक्त में जो हो रहा है सिर्फ उससे ही नहीं, जो पहले भी हो चुका है, जो जो जो, जो गाने या जो उस तरह के कल्चरल मोमेंट्स जो है, जो इतिहास से पहले भी दर्ज हो चुके हैं, उसके बारे में भी पता चलता था। संडे को कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे जो प्रायोजित होते थे
0: जी।
1: और बहुत इट इज स्टिल ग्रेट इंस्टीट्यूशन, बहुत कुछ सिखाया है रेडियो ने।
0: जी बिल्कुल। तो रेडियो सुनते सुनते आपने अपने भीतर सपना कैसे बुन लिया एक निर्देशक बनने का, एक्टर बनने का और लेखक बनने का, कैसे आपके भीतर बीज बनपा?
1: वो रेडियो की वजह से नहीं हुआ। रेडियो उस वक्त हम लोग जब छोटे थे तो हम इलाहाबाद में पढ़ा, बड़ा हूँ मैं, तो हमारा एक बैंड भी होता था, तो फिर वो युवाणी में पहले तो जो बच्चों का कार्यक्रम होता था संडे को,
0: बाल संग, नन्ही दुनिया वगैरह,
1: उसमें उस पे छोटे छोटे हम लोग जाते थे वहीं पे आकाशवाणी, तो वहाँ पे भैया, कौन भैया होते,
0: बड़े भैया जी,
1: बड़े भैया जी और दीदी होती थी
0: जी जी,
1: और सारे बच्चे होते थे, कोई कविता सुनाता था, कोई कहानी सुनाता था, कुछ क्विज होता था, वहां से शुरुआत की मैंने। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो युवाणी में कई बार पार्टिसिपेट किया
0: जी,
1: और उसकी वजह से फिर थिएटर में घुस गया। मैंने एक जरिया बना, पहला जरिया तो रेडियो ही बना कि अपनी अपने अंदर थोड़ी बहुत जो भी कला थी बचपन में जो होती थी उसको एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म जो पहली बार मुझको मिला वो ये
0: जी रेडियो ही मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल रेडियो ही मिला।
0: और विविध भारती से हम सबको खासा लगाव रहा है, हम सबका बचपन ऐसे ही बीता है कि हम विविध भारती सुन सुन के अपने भीतर सपनों के बीज रोपते रहे हैं। आपने इलाहाबाद का जिक्र किया तो इलाहाबाद की बहुत सारी यादें हैं, हम तो सुनते हैं कि आप इलाहाबाद में ही रहते हैं, मुंबई में शूटिंग करते हैं, मुंबई आते हैं शूट करते हैं और इलाहाबाद चले जाते हैं, तो कोई खास याद इस वक्त हो आपके जहन में तो आप साझा करना चाहें विविध भारती के श्रोताओं से?
1: मैं जो भी हूँ शहर की वजह से हूँ,
0: और क्या बात है?
1: वो शहर जो है, मैं एक सैकड़ों बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस शहर में पैदा हुआ, और जिस तरह का माहौल मिला दिया उस शहर ने मुझे, तो वो उसी की वजह से मैं जो भी हूँ, और भी सभी लोग को अपना शहर पसंद आता है, मैं यहाँ, लेकिन इलाहाबाद बहुत खास है, तो जो लोग इलाहाबाद में नहीं भी पैदा हुए वो भी चुप हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं इलाहाबाद से, तो समझ जाते हैं वो लोग बैकफुट में होना चाहिए उनको।
0: जी बिल्कुल। इलाहाबाद संगम, नौका विहार, वहाँ का मन कामेश्वर मंदिर के किनारे से,
1: मैं तो अभी परसों ही लौटा इलाहाबाद से डुबकी लगा के।
0: अच्छा, तो अभी भी जाते हैं तो संगम तीरे जाते हैं और
1: पितृपक्ष

0: मुश्किल शहर है, अगर आप वहां पे किसी तरह का वृक्ष बोना चाहें या पौधा बोना चाहिए, उस शहर की मट्टी पूछती है कि तुम्हारे औकात है करने की
1: जी,
0: तो
1: क्या बात है।
0: उसने उस शहर ने मुझे टेस्ट किया, तो मैं तो पहली फिल्म थी, तो मैं बहुत एक जवान बहुत एक्साइटेड बच्चे की तरह अपना शहर जा रहा हूँ, शूटिंग करूंगा अपनी पहली फिल्म की। क्लाइमैक्स मैंने कुंभ मेले में ऑलरेडी सेट कर दिया था, जिसको मैं पहले शूट कर चुका था, 2000 वाला जो कुंभ मेला था। तो बट वहाँ के लोग जो थे उनको लगा कि मैं शहर को, वहाँ की यूनिवर्सिटी को एक बहुत गलत अंदाज से पेश कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगा
1: जी।
0: तो मैं उनसे कहता रहा भाई रामायण में रावण भी है, राम भी है, मैंने रावण के सीन पहले शूट कर लिए, तो उन्होंने वो देखा तो उनको लगा कि ये तो ऐसी फिल्म है
1: जी।
0: अब तो मेरा बड़ा विरोध हुआ वहाँ, बहुत बुरी तरह, मतलब मुझे बहुत बेइज्जत किया गया और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, और मैं पहली फिल्म थी तो उस तरह से लोग मुझे उस तरह से तब जानते भी नहीं थे, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। बट फिर उन्होंने, मैंने कहा कि ये शहर मेरा टेस्ट ले रहा है, तो जिस दिन उन्होंने रोकी मेरी शूटिंग, मैं कहीं और जाके गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह मैंने वहां शूटिंग की, मैंने एक भी दिन काम नहीं रोका, क्यों मुझे था कि काम रुकेगा, प्रोड्यूसर रुकेगा, अपने शहर लेके गए उसका नुकसान होगा, तो मैंने कहा शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं भी, अगर वो इलाहाबादी मेरे खिलाफ थे तो उनको नहीं पता मैं भी
1: एक
0: इलाहाबादी से ही लड़ रहा हूं
1: जी,
0: और वो हार गए सब। मेरी फिल्म रिलीज भी बनी, उससे सब कुछ दिया, सक्सेसफुल रही
1: और लोगों ने बहुत सराहा, तो वो इसी वजह से रोए थे आप, मतलब ये
0: हाँ रोया तो
1: रोने वाले
0: हाँ, मुझे वहां पे डीएम के दफ्तर में बुला लिया
1: जी,
0: और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने पुराने पुराने दिग्गज सब एक्स प्रेसिडेंट या नेता जो भी थे वो आ गए डीएम के ऑफिस में, और उन्होंने कहा देखिए ये तो शूटिंग वाले हैं, ये तो चले जाएंगे, आपको यही रहना है
1: जी जी,
0: और ये लोग यात्री होटल में हैं, तोड़ देंगे उसका शीशा, उनकी गाड़ियां, उस लड़के को उसका सर मुंडवा के गधे पे बैठा के शहर में घुमाएंगे।
1: ओ बाप रे।
0: तो मुझे तो आंसू आ गए मेरे, मैं अकेला हूँ, ये कम से कम 25-30 लोग डीएम ऑफिस में, मैं इसको डिफेंड करने वाला कोई भी नहीं। तो फिर मैं रो दिया, फिर लेकिन मैं निकला बाहर, मैंने शूटिंग नहीं रोकी। इवेंचुअली एक फिर बात हुई, मुझे फोन करने पड़ा, तो
1: मतलब आंसुओं की उस उन लड़ियों ने मुस्कान की और खुशी के मोती आपके जीवन में दिए,
0: और तो ही है।
1: बहुत सारे मोतियां। तो यहाँ पर बात हासिल की चली है, तो क्या हासिल फिल्म का गाना सुन लिया जाए?
0: जी बिल्कुल,
1: और आपका पसंदीदा गीत है शायद ये?
0: जी जी,
1: सुनते हैं।

0: तो ये हासिल फिल्म का गाना था, उदित नारायण और साथियों की आवाजें थी, सोनाली वाजपेयी की आवाज थी साथ में, और जतिन ललित का संगीत था। और कुछ श्रोता भी तिग्मांशु जी लिख रहे हैं और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, ये चार शब्द सुबह सुबह घरों की खामोशी में पिछले 70 सालों से जीवन रस घोल रहे हैं। रेडियो की धीमी आवाज, शहनाई की मंगल धुन आज भी करोड़ों भारतवासी के हृदय में अपनी पहचान बनाए हुए। विविध भारती की खासियत यह है कि उसके दर्पण में हर किसी के सपनों की आहट, ख्वाहिश की झिलमिलाहट और दूर तक अपने साथ ले जाने की फितरत शुमार है। एक श्रोता की ओर से सवाल है आपसे, तो पहले मैं जतिन ललित के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं श्रोता का सवाल शामिल करूं?
1: सवाल ले लेते हैं पहले
0: जी। हमारी एक श्रोता है, इन्होंने लिखा है कि तिग्मांशु जी, आपने इरफान खान के साथ काफी फिल्में की हैं, उनके साथ फिल्म मेकिंग से संबंधित ऐसा कौन सा लम्हा है, कौन सा पल है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है?
1: अब ऐसे मोमेंट्स और लम्हे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो खास बात हमारे कॉम्बिनेशन में ये थी कि आप जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं और ठीक है, आप उससे मिलते हैं पहली बार, उसको स्क्रिप्ट सुनाते हैं, तभी शायद आप जान पहचान होती है, और फिर शूटिंग के दौरान, लेकिन एक आप वो आपका दोस्त नहीं होता है।
0: जी जी,
1: वो एक साथ में एक फिल्म बनाने में जो एज ए टेक्नीशियन है वो एक्टर है, वैसा ही रिश्ता रहता है। और एक्टर्स क्योंकि थोड़े नाजुक मिजाज होता है इनका
0: जी,
1: तो आप उनको बहुत सहम के उनके साथ बिहेव करते हैं
0: जी,
1: कि कहीं कुछ ना हो जाए। इरफान के साथ ये था कि मेरा दोस्त था वो, तो मैं दोस्त के साथ फिल्म बनाता था
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं अकेला नहीं बना रहा होता था, मेरे साथ वो भी रहता था, उसके साथ मैं कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकता था, बाकी एक्टर के साथ मैं ये नहीं, ये फैसिलिटी नहीं है मेरी, तो उससे थोड़ी मेरी उसकी जो फिल्में रही हैं
0: जी
1: वो थोड़ी ज्यादा लोगों के
0: संवेदनशील भी रही।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो बात लोगों तक पहुंची है
0: जी। और इरफान से आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो कुछ पारिवारिक इरफान की जो निजी बातें हैं, उनकी फिल्मों के अलावा कौन सी बात आपको याद आती है? आज इरफान नहीं है लेकिन हम सब के दिल के करीब हैं वो ऐसा लगता है कि एक्टिंग नहीं, सामने बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मेरे भाई जैसा था वो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो, जो कि दूसरा है नहीं उसके जैसा कोई
0: जी।
1: तो उसके जाने से मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ
0: जी,
1: और ये सच बात है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और फिर पारिवारिक जो आपने कहा कि मतलब घर बिल्कुल पारिवारिक माहौल बन, मतलब कि मेरी हम मैं इरफान हमारे और भी 2-3-4 दोस्त जो करीबी थे, ब्रिजेंद्र काला, ये सब जो थे तब बहुत मिला करते थे हम लोग सब बाप बने हैं, मतलब सब 5-6 महीने के गैप में सबके सब
0: जी जी,
1: मतलब सबकी बीवियां मोटी मोटी
0: अच्छा
1: स्वीट और इरफानी, उनको गाड़ियों में बैठा के घुमाना या उनको जैसे चाट वाट के खाने का बहुत मन करता है ना, तो वो सब इरफानी करता था
0: जी जी,
1: 3-4 महिलाओं को बैठा के और घुमाना, और फिर सबके 5 बच्चे हुए, सब 4-5 महीने 3 महीने के गैप में, तो इससे इतना बड़ा परिवार हो गया हमारा
0: जी। बिल्कुल, ब्रिजेंद्र काला का आपने नाम लिया, तो वो तो आपकी फिल्म में भी पत्रकार की भूमिका निभाई थी।
1: हाँ, मेरा कजन ब्रदर है।
0: तो जो पत्रकार की भूमिका थी वो बड़ी अलग किस्म की थी।
1: हाँ।
0: तो क्या सचमुच वो ऐसे हैं या उस फिल्म में आपने शामिल किया था, उनका कैरेक्टर गढ़ा था?
1: तो बहुत अच्छा एक्टर है वो, थिएटर का एक्टर है, बहुत पुराना एक्टर है, और उसको कुछ बताने की जरूरत मुझे खास पड़ी नहीं, थोड़ी बहुत ये कि दीवार पे लग के लिखो वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और डायरेक्टर किस काम का है, नहीं तो अपने आप में बहुत ही माहिर एक्टर है वो
0: जी जी। एक्टिंग की बात चली कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप खुद भी तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में की हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो किरदार है रामा धीर सिंह
1: जी जी,
0: तो वो तो नाम से ही मशहूर हो गया था, तो कैसे आप वहां पहुंचे, मतलब एक्टिंग आगे एक्टिंग ही तो नहीं करना चाहते?

0: मतलब हम लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्ट बताओ डायरेक्टर फिल्में देते रहे।
1: एक्टिंग में मुझको मतलब वो मैं ऐसी पता नहीं क्यों वो अपना अनुराग और कश्यप और जो कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे मुकेश छावड़ा साहब, उन्होंने पता नहीं क्या उनके जहन में आया कि ये रोल मुझसे कराना। मैं एक्टर तो था नहीं, मतलब एक्टर में था, ड्रामा स्कूल में मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग के परसू नहीं किया। मैं फिल्म डायरेक्शन में आ गया, कम्प्लीटली अलग
0: जी, जी।
1: स्ट्रीम। उन्होंने बोला, मैंने हाँ कर दी, मुझको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा रोल है ये वो, तो ऐसे मिल गया और मैंने कर दी। अब हमेशा एक्टिंग में, कल भी बच्चों के साथ एक वर्कशॉप किया था, मैंने कहा एक्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कॉन्फिडेंस। वो बहुत तरह एक चीज नहीं होती, बहुत चीजों से आती है, थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है, थोड़ा रिस्पेक्ट से आती है, थोड़ा आपने अच्छा काम कर लिया हो तो उससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हो चुका था। उस यूनिट पे जब गया तो सब दोस्त थे, मनोज वाजपेयी हो, ये वो नवाज हो, तब सब दोस्त हैं
0: जी।
1: अनुराग कश्यप दोस्त है आपका, कैमरामैन को आप जानते हैं, तो मुझको कोई ऐसी जगह नहीं गिरी कि अरे मैं अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ कर रहा तो शायद मैं घबराता थोड़ा।
0: तो
1: इसलिए वो हो गया कॉन्फिडेंस में और
0: जी
1: अच्छा तो हो गया।
0: वो जो थप्पड़ मारे थे आपने फटाफट, वो असली वाले थे कि नकली थे? क्या हुआ था फिर उसके बाद?
1: वो विपिन को जब मारता हूँ, कहाँ गाड़े थे उस वक्त तो मैंने विपिन को बोला, विपिन मेरा सीनियर है नेशनल स्कूल ड्रामा से, मुझसे तो 3-4 साल सीनियर है, तो मैंने विपिन को बोला, अभी मैंने विपिन यार सिर्फ जैसे हम लोग फिल्म नहीं मारते हैं वैसे मार दो क्या? नहीं नहीं मारना मारना। मैंने कहा यार लग जाएगी, मेरा थोड़ा भारी हाथ है। कह नहीं नहीं कोई नहीं,
0: अच्छा
1: कह दिया तो मैंने मार दिया।
0: फिर बाद में झगड़ा नहीं हुआ?
1: नहीं नहीं झगड़ा बिल्कुल।
0: अच्छा ओके। और बात एक्टिंग की चली है तो शाहरुख खान के साथ भी तो आपने एक फिल्म की है, दिल से?
1: हाँ डायलॉग्स लिखे थे उसके
0: जी,
1: तो मैं पूरी शूटिंग में था
0: जी
1: उस दिल से की जी।
0: तो शाहरुख खान के साथ लिखना आपके लिए एक अलग अनुभव रहा होगा, कुछ अनुभव?
1: शाहरुख के लिए नहीं लिख रहा था मैं, मणि सर के लिए लिख रहा था, मणि रत्नम जी के लिए लिख रहा था। मैं लिख क्या रहा था, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था एक्चुअली में
0: जी।
1: वो अंग्रेजी में बता देते थे कि ये चाहिए मुझको, और उस इतना समझ के कि शाहरुख का किरदार ऐसा है, मनीषा का जो कैरेक्टर्स को इतना तो समझ थी मुझे
0: जी,
1: तो उस किरदार को समझते हुए मैंने उस तरह की हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, और उस जो अंग्रेजी में मणि सर ने लिखा था उसको मैंने एक अच्छे ढंग से अडेप्ट कर लिया, बस ये काम था मेरा
0: जी। तो इस समय उनकी फिल्म का जिक्र चला है तो यहाँ पर आपको कौन सा गाना हम सुनवाएं? हालांकि आपकी पसंदीदा गानों की हमने लिस्ट बनाई है, तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? कुछ पुराने दौर में जाना चाहते हैं या नए दौर के गाने सुनना चाहते हैं?
1: ये तेरे मेरे सपने का गाना
0: जी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, ये गाना हम सुन लें
1: जी। बिल्कुल,
0: नीरज के बोले और सचिन देव बर्मन का संगीत है और आपकी जिंदगी में गानों की बहुत दखल रही है, तो इस गाने के बाद हम कुछ गीत की बात करेंगे, कुछ पुराने गानों की।

0: तो तिग्मांशु जी, ये गाना हमने आपकी ओर से नजर किया अपने श्रोताओं को, और आपकी एक लंबी यात्रा है, आपका परिवार इलाहाबादी है मन से, आप अक्सर कहा करते हैं, तो एक बार फिर इलाहाबाद की गलियों में चलते हैं और याद करते हैं आपकी माँ को। आपकी माँ से जुड़ी हुई कौन सी याद है जो आप साझा करेंगे? संस्कृत की प्रोफेसर थी वो?
1: जी जी, मेरे पिताजी वकील थे, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी बने। वो बहुत ज्यादा दिन जी नहीं पाए वो, बट मदर मेरी पढ़ाती थी और दोनों चले जाते थे अपने वो हाईकोर्ट या अपने स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए। हम तीन भाई थे तो हमारे घर में एक था आनंद कुकर, और वो चीज मैंने किसी और घर में देखी नहीं।
0: अच्छा।
1: वो इतनी खूबसूरत चीज थी कि जैसे उसके टिफिन बॉक्स होता ना, जैसे
0: जी, जिसमें
1: हम लंच लेके ऑफिस में लोग जाते हैं, दो तीन उसमें वो होते हैं दाल चावल
0: डब्बे
1: होते हैं, उसमें वो बड़ा सा एल्युमिनियम का था और नीचे उसमें आप कोयला जला दीजिए।
0: अच्छा।
1: हाँ, और इसलिए बड़ा स्मोकी फ्लेवर भी होता ना, और जो नीचे एक उसमें दाल रख लीजिए, फिर थोड़ा चावल रख दीजिए, फिर जो सब्जी उबल जाए घर आए, सीधे काटे छोंक दे बन गई, उस तरह की आलू या परवल या इस तरह की चीजें आप ऊपर रख दीजिए। और हम लोग आते थे 1:30-2 बजे स्कूल से, तो और फट से बना बना खाना मिलता है गरम गरम। तो ये आनंद कुकर बहुत ही ब्यूटीफुल चीज थी, वो पता नहीं गायब होगी, लोगों को रखना चाहिए अपने घर में। उसका तो फ्लेवर भी खाने का बहुत अच्छा आता है।
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: तो कोयले में पका हुआ एक तो ईंधन ही बचता है और बहुत इतना डिलीशियस खाना बनता है। तो मदर फिर आती थी इलाहाबाद की गर्मी, तो आपको पता ही, आप भी वहीं की हैं।
0: बिल्कुल, भीषण गर्मी,
1: भयंकर गर्मी। तो तब वो रिक्शे में आती थी, एक रिक्शा वाला बेचारा उनको ढो के सबको, तब तभी रिक्शा ही चलता था
0: जी।
1: तो वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, नए नए फ्लैट सेलअप सिस्टम इलाहाबाद में आया था, तो हमारे घर वालों ने खरीद लिया था एक फ्लैट, आज भी है वो फ्लैट। तो दिन में आती थी 3:30-3 बजे में, भीषण गर्मी, और रिक्शे वाले को ऊपर ले गया था, रिक्शे वाला पसीने से लथपथ होता था।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उनसे मैंने एक चीज की, जब वो आती थी मतलब कहते रिक्शे वाले को पानी पिलाओ, पानी पिलाने के पहले उसको गुड़ दो।
0: क्या बात है, ये वहाँ का चलन है।
1: मैं बड़ा सा एक ढेला गुड़ का उसको रिक्शे वाले को देता था, वो पहले बेचारा गुड़ खाता था और फिर वो ठंडा पानी पीता था और बहुत दुआएं देके जाता था। ये हम हर रोज होता था।
0: क्या बात है।
1: तो ये चीज मुझे बहुत याद रही अपनी मदर की,
0: ये सिखाया। और
1: जी,
0: और आपकी फिल्मों को जब उन्होंने देखा, निर्देशन किया, तो उन फिल्मों में कुछ बारीकियां वो समझाती थी?
1: उनको प्रॉब्लम होती है मेरी फिल्मों से कि उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा, खून गोलियां बहुत चलती है, तो उनको इस बात का वो उनको वो है, वो एतराज करती है उस पर, कैसी फिल्म बनाते हो।
0: तो आपने

0: बात मानी नहीं उनकी एक कोई प्रेम कहानी लेकर आइए और बड़ी संवेदनशील जहाँ प्रेमालाप हो जो इलाहाबाद की गलियों में होता है।
1: हाँ नहीं, पान सिंह तोमर जैसी फिल्म तो उनको भी अच्छी लगी थी, उसमें फिर अवार्ड कभी मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाती है वो।
0: किसे नहीं अच्छा लगता है। पान सिंह तोमर एक बेहतरीन फिल्म थी, हम सब ने देखी है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सचमुच इरफान की एक्टिंग, जब भी पान सिंह तोमर की बात चलती है तो इरफान का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने तो ये इलाहाबाद का जिक्र किया, माँ का जिक्र किया, और आपके भाई भी अभी जज हैं इलाहाबाद में।
1: वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे और लास्ट ईयर अगस्त में रिटायर कर गया।
0: जी, तो वो जो परिवार इतना आपका क्या कहते हैं इलाहाबाद में जो भाषा कहते हैं दबंगई, तो वो दबंगई आपकी फिल्मों में भी कहीं दिखता है, आप लाते हैं। और छोटे शहरों के जो कस्बे के संवाद होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, किरदार होते हैं, वो आपकी फिल्मों में खूब दिखाई देते हैं, तो वो क्या इलाहाबाद की देन है कि आपके निर्देशक की कलाबाजी है?
1: नहीं, बचपन से मुझे फिल्में ही पसंद थी जिसमें थोड़ा से इस तरह के एलिमेंट्स हों, जो किसी के आदेश का पालन नहीं करते वाले किरदार जो होते हैं, जो किसी से दब के नहीं रहते हैं, क्योंकि इलाहाबादियों में एक बात होती है, दब के नहीं रह सकता किसी से। तो पता नहीं क्या बात थी, मुझे फिल्में भी ऐसी अच्छी लगती थी, मुझे लव स्टोरीज पसंद ही नहीं आती थी। तो ये टेस्ट वाली बात है कि आपको कौन सा खाना पसंद है, उसी तरह की चीज थी। मुझको थोड़ा जिसमें पोस्टर में अगर पिस्टल है तो वो पिक्चर देखनी है, इस तरह का था। वही चीज चली आ रही है, तो मैं बनाता भी वैसी फिल्में हूँ। लव स्टोरीज मैंने शायद एक ही बनाई, वो चली हुई नहीं।
0: जी, और उसमें वो गाना भी खूब मशहूर हुआ था, आंखें भी दिल की जुबान,
1: ये तो हासिल का था।
0: हासिल का है। और साहब बीबी गैंगस्टर में भी खूब गोलियां चली हैं।
1: जी जी जी।
0: तो साहब बीबी गैंगस्टर से जुड़ी कुछ बात हमारे श्रोताओं को बताइए। शूटिंग के समय किस तरह का माहौल आप रचते हैं, आपका जो निर्देशक का?
1: साहब बीबी के मैंने तीन पार्ट बनाए थे, तो जो पहला पार्ट बन रहा था, जब बनाया था, तो हमारे पास कोई काम नहीं था किसी के पास। पान सिंह तोमर बन चुकी थी और फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, और मैं तो वेट करता था कि पिक्चर रिलीज होगी, अगर कुछ हुआ तो फिर अगली फिल्म मिलेगी, ऐसे ही चलता करियर। और फिल्म रिलीज ही नहीं कर रहे थे वो लोग, हम ऑफिस जाते थे, कुछ नहीं करते थे, फिल्में देखते थे और टीटी खेलते थे, चले आते थे। तो ऑफिस में कई लोग आते थे, रणदीप हुड्डा भी आता था, वो भी टीटी खेलता था हम लोगों के साथ, और जिमी तो खैर दोस्त आता ही था। तो फिर सोच, मतलब उसी वक्त ये डिजिटल नेगेटिव गया और डिजिटल आया हिंदुस्तान में, जब हम डिजिटल पे शूट करते हैं ना सब कुछ।
0: जी जी।
1: तो उससे कॉस्ट बहुत कम हो गई फिल्म बनाने की, बहुत ज्यादा। तो मुझको लगा कि मैं डिजिटल पे, मैंने कहा 1.5 करोड़ में फिल्म बना दूंगा, किसी को देंगे नहीं पैसा, जो भी खाना वाने का खर्चा है लोगों को थोड़ा बहुत करके 1.5-2 में बना दूंगा। और उल्टी बही गंगा, हमने पहले टाइटल डिसाइड किया साहेब बीवी, और मुझको साहेब बीवी गुलाम का एक इंडियन मॉडर्न वर्जन बनाना था।
0: जी जी जी।
1: वो बहुत अच्छी फिल्म है, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो पुनः गया गुलाम नहीं गैंगस्टर, अच्छा टाइटल, पहले टाइटल आया, फिर उस तरह की लोकेशन ढूंढने गए। जब लोकेशन मिली तो लोकेशन के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी गई, उल्टा पहले तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है फिर जाते हैं हम लोकेशन ढूंढने, यहाँ उल्टी भाई सब बड़ी गंगा।
0: जी।
1: ये कहकर हमने वो फिल्म बना दी और वो पिक्चर ने बहुत क्रिटिकल अक्लेम और चली भी पिक्चर वो।
0: जी।
1: और उससे उसकी वजह से फिर सेकेंड भी आई और फिर थर्ड भी आई।
0: जी, तो तीनों को बनाने में जो कि पहली फिल्म पहली से, मतलब दूसरी फिल्म पहली से और अच्छी हो और उत्तम हो, तो उसके लिए क्या खास ख्याल रखा आपने?
1: कुछ ऐसा ख्याल, मुझको तो उसी दुनिया में बनानी थी, कहानी का ही हर पहले का ही एक्सटेंशन था, सेकंड और थर्ड भी। तो उसमें सिर्फ गैंगस्टर बदलते हैं, पहली वाले में रणदीप हुड्डा गैंगस्टर थे, सेकंड वाले में इरफान था। तो पहली भी चल गई थी और तो सेकंड वाले में थोड़ा हमको मिल गया स्टूडियो फट से, बहुत झंझट नहीं हुआ।
0: जी जी।
1: थोड़ा बजट भी थोड़ा बढ़ गया, तो उसमें थोड़ा सा आपने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया पोलो मैचेस, जितने प्रिंसली वाले जो पोलो खेलते हैं उस तरह के मैचेस, और ये वो थोड़ा गानों में खर्चा ज्यादा, वो सब किया आपने सेकंड में।
0: जी, एक झलक सुनते हैं गाने की, साहबीबी और गैंगस्टर, नूरा सिस्टर्स की आवाज में।

0: ये साहब बीबी और गैंगस्टर फिल्म का गाना था नूरा सिस्टर्स की आवाज में और तिग्मांशु जी की ही ये फिल्म है। तिग्मांशु जी, हमारे बहुत सारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं और आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं। एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आपने अभिनय और निर्देशन दोनों में काम किया है, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे काम करने में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस होता है?
1: दोनों अलग अलग चीजें हैं, अंतर क्या बहुत ही दोनों। मुझे मजा कैमरे के पीछे ज्यादा आता है, मुझे डायरेक्शन करने में ज्यादा मजा आता है। एक्टिंग मैं करता हूं क्योंकि मैं बाय मिस्टेक एक्टर बन गया इसी तरह से और वो लोगों को पसंद आ गया, तो अब मुझे कभी कोई रोल ठीक ठाक होता है या पैसे थोड़े ठीक ठाक मिलते तो मैं रोल कर लेता हूँ। बाकी मुझे बहुत शौक नहीं है एक्टिंग करने का
0: जी।
1: दुनिया का सबसे आसान काम है एक्टिंग।
0: अच्छा, तो उस समय आपका निर्देशक भी काम करता है आपके भीतर कि जो निर्देशक बोलता है वही करते हैं?
1: जी नहीं, आप उसको स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते कि आप कम्प्लीटली स्विच ऑफ, तो लेकिन ये है कि डायरेक्टर कोई और होता है तो मैं ज्यादा सवाल जवाब करता नहीं हूँ। अंटिल एंड अनलेस बहुत ही मेजर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि जो वो डायरेक्टर समझ नहीं पा रहा, तब मैं कभी कभी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर वो अड़ा रहे तो मैं डायरेक्टर की ही मानता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे एक्टर भी ऐसा ही करे, तो मैं भी डायरेक्टर की ही बात मानता हूँ, माननी भी चाहिए
0: जी।
1: तो लेकिन एंजॉय मैं ज्यादा डायरेक्ट करना करता हूँ
0: जी। एक श्रोता कह रहे हैं कि अवधि में कुछ बोल के बताइए।
1: अरे कहा तो... बताई भैया दोनों एक सवाल बढ़िया से पूछो तो बताई फिर तुमको।
0: तो बतावे कोनो शूटिंग से जुड़ी हुई कोनो बात याद हो तो बतावे दे।
1: अरे अब शूटिंग इतनी पिक्चर बन गई, इतने कांड हुए हैं और इतनी कहानियां हैं कि सुबह से रात हो जाएगी।
0: तो एक आध कोनो छोटा सा अंश बताए दे ताकि हमारा श्रोता खुश हो जाए।
1: नहीं ऐसे जब बहुत कुछ होता था कि एक बजे से पान सिंह तोमर की एक बार शूटिंग कर रहे थे हम लोग चंबल में, तो बहुत खूबसूरत जगह है चंबल, बहुत ही वो नदी इतनी खूबसूरत है।

0: जी
1: साफ, इतनी आप उसको आप ऊपर से देखें बोर्ड से तो आपको नीचे तक दिखाई देता है,
0: ट्रांसपेरेंट है
1: एकदम, आपको नीचे कछुए और ये सब चीजें तैरती हुई दिखाई देंगी। ब्यूटीफुल रिवर, और साथ में वो चंबल की घाटियां और रमीन्स जो है। तो शूटिंग करते थे, फिर सोचते थे यार, क्योंकि सारे दोस्त तैयार है, इतनी 100-150-200 की यूनिट है, हम लोग सोचते थे कि यार एक जैसे जगह शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो हमने कहा साहब, मैं इरफान और मैंने कहा यार रात को ना बैकअप के बाद यही मंदिर बनाएंगे,
0: क्या बात है।
1: तो यही बैठा जाएगा,
0: डर नहीं लगता था रात की शूटिंग में
1: उस, नहीं तब पुलिस तो रहती थी हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग सोचा लगे बैठेंगे अपना कुछ मजा वजा करेंगे, यही आसपास खाना वाना कहीं बनवा लेंगे गांव में, और पूरी तैयारी के साथ सब बहुत कि कैसे जिस कैसे जल्दी पैकअप हो और कैसे हम लोग सब रिलैक्स करें नदी के बगल में, घड़ियाल बहुत है वहाँ, चंबल जो नदी है उसके कट पे एलिगेटर्स जो है बहुत सारे हैं,
0: जी जी,
1: ऐसे मुंह खुले हुए सब लेटे रहते हैं सब। तब तक खबर आई, हमने पूरा इंतजाम कर लिया कि आग वाग का सबका, हर तरह की आग का। तो फिर पाया कि देखो शूटिंग देखने के लिए आते हैं ना बहुत सारे लोग, कौन क्या है उसमें क्या मालूम, कहते नहीं डकैत लग गए हैं यहाँ पे 3-4, और आप लोग ये सब एंजॉय करना भूल जाइए, चुपचाप गाड़ी में बैठिए होटल जाइए। तो वही किया, नहीं तो पता चला कि जो हीरो है उनको उठा के ले गए, पकड़ बन गए, वो हम उनकी रैंसम दे रहे हैं वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं शूटिंग के दौरान, आपको क्योंकि लोकेशन नहीं होती है, आप थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस होना चाहते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे किस्से इस तरह के।
0: जी जी
1: बहुत, लेकिन डाकू आते थे हमारी शूटिंग देखने।
0: अच्छा, तो कभी आपको उनसे डर नहीं लगा, डराया धमकाया नहीं?
1: इस तरह के थोड़ी होते हैं
0: जी,
1: इस तरह के थोड़े गधे बेवकूफ थोड़ी होते बाकी लोग लग।
0: जी,
1: उनको अगर किसी को किडनैप करना हो तो पूरे प्लानिंग के साथ आएंगे तो करेंगे, लेकिन ऐसे वो किसी को
0: हार्म नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
1: अब वो पूरे एरिया में सब घर, हर घर में बंदूकें हैं, क्या करेंगे डाकू परेशान।
0: और आप जैसे जो इलाहाबाद की जो दबंगई है, दबंग किस्म के इंसान तो डर ही नहीं सकते, ये भी बात।
1: ऐसी बात नहीं है, डर तो लगता है, सबको लगता है, मुझको भी लगता है
0: जी,
1: और लगना भी चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है, खतरों से खतरों का सामना करना ठीक है, लेकिन खतरों के खिलाफ खड़े होके अनायास मोर्चा लेना भी ठीक नहीं होता। जी, और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आज के दौर में जब सिनेमा तेजी से बदल रहा है, तो आपको लगता है कि कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसे प्रस्तुत करने का तरीका?
1: फिल्म चलने के पीछे, अच्छी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों पे बात बोल सकता हूं। देखिए, फिल्म के चलने के पीछे अच्छी कहानी हो जरूरी नहीं है।
0: जी, कौन सी फिल्म चल जाए कुछ पता नहीं।
1: नहीं नहीं, नहीं, नहीं, उस पिक्चर का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको क्या चाहे कैसी भी कहानी हो, सिंपल कहानी हो, लेकिन उसको जिस तरह से आप कह रहे हैं, वो अंदाज आपका, उस फिल्म की पैकेजिंग, किस तरह से टाइटल्स आ रहे हैं, किस जगह पे गाना आ रहा है, स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं हम, मंजर कशी, जिसे जावेद साहब पे पूछा गया था कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में फर्क क्या है, तो स्टोरी इज व्हाट एंड स्क्रीन प्ले इज हाउ। तो आपका अगर हाउ बहुत अच्छा है तो एक कमजोर या बहुत ही सिंपल सी सामान्य सी कहानी भी अच्छी फिल्म हिट बन सकती है, लेकिन अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है तो यह है कि कहानी अगर हो तो फिर वो यादगार बन जाती है, अगर कहानी अच्छी है तो।
0: जी बिल्कुल, तो आपको बतौर, चूंकि आप लेखक भी हैं और निर्देशक भी हैं, तो कभी अपने लिखे को एक निर्देशक के रूप में खारिज भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, कोई ऐसे उदाहरण देके बताइए हमारे श्रोताओं को कि
1: लिखना तो एक्चुअली सबसे पड़ी, जब क्योंकि मैं लिखता भी सारी फिल्म खुद की, वो सारी जितना भी अब तक काम किया मैंने खुद ही लिखा है सब, तो वो एक बहुत ही पैनी और उससे स्क्रूटनी से होकर गुजरता है। बहुत आलसी लेखक भी हूँ मैं, मुझे जल्दी भी नहीं लिखा जाता।
0: अच्छा,
1: हाँ, बहुत टाइम लेता हूँ मैं, तो मैं मुझको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कभी कोई खराब, ऐसे नहीं मेरी सारी पिक्चर लिखा, बहुत सारी पिक्चर फ्लॉप ही है मेरी,
0: ये आप कह रहे हैं ना।
1: नहीं, सच बात है, उसमें क्या है, हर पिक्चर तो हिट, किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर का जिसका भी आप बड़े से बड़े के नाम ले, पूरे फिल्मोग्राफी में 3-4 पिक्चरें होती हैं जो अच्छी होती हैं
0: जी,
1: बड़े से बड़े की। बहुत एक्सेप्शनल कोई केस हो गया वो उसकी बात छोड़ देते हैं, बिमल रॉय को हटा देते हैं स्फेरिस से, और राज कपूर साहब और गुरुदत्त जैसे लोगों को हटा देते हैं, वो लोग तो लेजेंड्स हैं, वो लोग उन्होंने ग्रामर लिखा है सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, तो उनसे तो हम कभी देख भी नहीं सकते, सिर्फ नतमस्तक हो सकते हैं उनके सामने। बाकी जो और लोग जिन पे हम लोग जैसे डायरेक्टर आते हैं, तो उन सबकी फेहरिस्त में देखिएगा, तो अगर 15 पिक्चर हैं तो 40 पिक्चर होंगी जो सही पड़ी होंगी, बाकी तो आदमी फेल करता ही करता है।
0: आपकी ये बात बड़ी मन भाई कि इतनी ईमानदारी से अपनी फिल्मों की समीक्षा खुद ही कर रहे हैं, और पुराने दौर के गोल्डन इरा के निर्देशकों की बात की और फिल्मों की बात की, तो पुरानी फिल्में आप देखते हैं, उनके गाने
1: सुनते हैं? मैं तो आजकल पुरानी ही देखता हूँ
0: जी,
1: मैं तो आजकल पुरानी फिल्में ही देखता हूँ। कई फिल्में मिस हो भी, अब सब पिक्चर तो अच्छी नहीं देखी, कई पिक्चर मिसिंग भी है, कहीं आ जाती, तो मैं यूट्यूब में या खोज खाज के वो फिल्में देखता हूँ। मैं
0: कौन कौन सी फिल्में देखी इन दिनों में?
1: मैंने अभी ख्वाजा अदम अहमद अब्बास की एक दो फिल्में देखी जो कि नहीं देखी थी, देव साहब की एक दो फिल्में थी जो मैंने नहीं देखी थी, और जैसे मेरी बहुत अच्छी पिक्चर जो मैंने नहीं देखी थी, इसका नाम था शंकर हुसैन
0: जी, जी
1: जिसके गाने
0: बहुत ही खूबसूरत
1: गाने, तो मैं गाने तो बहुत सुने थे, पिक्चर नहीं देखी थी, वो देखी मैंने। तो ऐसे ऐसे कई फिल्में हैं जो कि मैं देखता रहता हूँ, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी।
0: तो गाने आपकी जिंदगी में कैसे जुड़ते हैं, क्या दखल रखते हैं आपकी जिंदगी में पुराने गाने?
1: अब गानों के साथ म्यूजिक के साथ, जब हम लोग इलाहाबाद में थे तो हमारा बैंड था, तो अंग्रेजी गाने बजाते थे हम लोग
0: जी जी,
1: मैं रिदम गिटार बजाता था और गाता था
0: जी,
1: और मैं गाता ठीक ठाक था, तो मुझे सब जगह जितने इलाहाबाद के लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल में कॉम्पिटिशन या सब फेस्टिवल्स होते थे सब स्टूडेंट्स का अपना
0: जी,
1: तो उन फेस्टिवल्स में मुझको हमेशा बेस्ट वेस्टर्न सोलो मेल अवार्ड हमेशा मिलता था, तो मैंने चैंपियन था मैं उसका।
0: क्या बात है भाई, ये तो
1: जी, मैं गिटार कभी बहुत अच्छा बजा नहीं पाया, रिदम बजा लेता था, लेकिन मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बनना चाहता था, जो मैं कभी नहीं कर पाया। मैं आज भी सोचता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता है, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बन जाऊँ।
0: क्या बात है।
1: तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ म्यूजिक का, और फिर मेरे जो मैंने वही किया जो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने किया, उन्हीं की नक्शे कदम पे मैं चला हूँ। बड़े भाई साहब मेरे वो डिफेंस में चले गए, वो नेवी में थे, रिटायर कर गए, बट अभी भी उनका आर्ट और पोइट्री वो परसू करते रहते हैं गोवा में। बीच वाले भाई साहब वो जुडिशरी में चले गए, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जज बने, फिर चीफ जस्टिस बने गुवाहाटी हाई कोर्ट के, भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो उनकी पूरी जिंदगी जुडिशियल, लेकिन वो भी मुझसे अगर वो फिल्मों में आते तो शायद मुझसे बेटर फिल्में करवाते वो
0: जी जी।
1: अब ये था, मैं छोटा था, हम लोगों में एज डिफरेंस बहुत है, 7-8 साल का डिफरेंस भाइयों में मेरे और उनमें, तो उन्होंने छोटे भाई को प्रमोट किया कि करने दो उसको, तो उनकी बदौलत में बढ़ गया आगे
0: जी जी जी। तो अब यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाएं? शंकर हुसैन का भी जिक्र किया आपने, आपकी पसंद का कोई और गाना?
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है दाग फिल्म का
0: जी जी,
1: विच इज अ वेरी अनलाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सॉन्ग
0: जी जी, तो वही गाना हाँ। सुनते हैं
1: ये मेरे दिल में आज का
0: जी।

0: साई साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी, किशोर कुमार की आवाज और दाग फिल्म। तो ये गाना तो हमने सुना और हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, तो वो उन्हें बड़ी जिज्ञासा है, तो उनकी ओर से एक सवाल है, वो ये कि आपका नाम तिग्मांशु है और धूलिया है, तो ये दोनों का मतलब क्या है? दो नाम है या एक ही नाम है?
1: नहीं, नाम तिग्मांशु है, धूलिया मेरा सरनेम है
0: जी।
1: तो तिग्मांशु संस्कृत नाम है, इसका मतलब है सूर्य, सूर्य। तिग्मांशु तो तेज, जिसकी अंशु है, किरणें हैं, वो है तिग्मांशु। जो तो सूर्य सहस्त्र नाम, अगर आप जो सारे नाम सूर्य भगवान के आप सुनिएगा तो उसमें तिग्मांशु भी आता है
0: जी जी।
1: तो मुझको नहीं लगता मेरे नाम किसी मेरे नाम का कोई और दूसरा है, बड़ा सोच समझ के रखा गया मेरा नाम।
0: बिल्कुल, शायद आहट मिल गई थी आपके माता पिता को
1: क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाइयों का नाम मानशु सुधांशु है, वो चंद्रमा से वो है, तो वो उनको लगा एक तो सूरज हो
0: जी।
1: तो और धूलिया का क्या है, मैं भी पूछता रहता हूँ कि क्या रब है। तो मुझे जो मुझे एकदम साइंटिफिक और हिस्टोरिकली थोड़ा रेलिवेंट और करेक्ट लगता है वो ये लगता है कि शायद हम लोग धूले से हैं, महाराष्ट्र से
0: जी जी।
1: वैसे तो मैं हूँ उत्तराखंड का, हम लोग पहाड़ के रहने वाले, तो तब तो उत्तराखंड तो 2000 में बना, उसके पहले तो यूपी का ही पार्ट था सब। तो मुझको एक मेरी थ्योरी लगती है, जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जब पेशवा साहब वहां से चल के पानीपत मतलब हरियाणा लड़ाई करने आया है मशाद अली से
0: जी।
1: तो वो सिर्फ सेना नहीं आती ना, तब तो साथ में बहुत सारे लोग आते हैं, पुजारी भी आते हैं और गाने वाले भी आते हैं, बहुत मिलों तक का ट्रेवल होता है। तो मुझको लगता है कि पानीपत के उसमें फिर कई पुजारी जो है रह गए वहीं। और ये भी होता था कि वहां तक जा रहे हैं तो जो भी ब्राह्मण्स होते थे उनको ये लगता था काशी तो हो आए या बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर लें, ये सब बहुत होता था ना वहां से आए हैं, यहाँ तो हवाई जहाज तो थे नहीं कि पहुंचे घटाघर, तब तो पैदल चलना है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग धुले से थे और हम लोग रह गए वहां और उनको अच्छा लगा शायद पहाड़ में रहना
0: जी,
1: तो उत्तराखंड में सेटल हो गए, ऐसा मुझे लगता है
0: जी। बात उत्तराखंड की चली है, उत्तराखंड के बारे में हम जानना चाहते हैं तिग्मांशु जी। एक टिप्पणी है, जानी मानी कथाकार है मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने अभी टिप्पणी की है और इस पूरे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रही हैं और लाइव फेसबुक पेज पर देख रही हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं
1: जी। जी बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। और एक श्रोता ने पूछा है आपसे, विविध भारती ने हिंदी सिनेमा के संगीत को घर घर पहुंचाया है, आपकी फिल्मों में जैसे पान सिंह तोमर है, हासिल है, साहबीबी और गैंगस्टर में भी संगीत का एक खास मिजाज है, रेडियो पर बजने वाले पुराने गानों ने आपके संगीत के सेंस को कितना प्रभावित किया है?

0: हिंदी फिल्म म्यूजिक मुझे को मैं एक बहुत ऊंचे लेवल पे रखता हूँ, इससे बड़ा बढ़िया हिंदी फिल्म म्यूजिक, एक फ्यूजन म्यूजिक का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता।
1: जी जी,
0: बाद में सब जैज और फ्यूजन म्यूजिक आया कि इंडियन क्लासिकल और जैज को मिक्स, वो सब हिंदी फिल्म म्यूजिक ये काम 200 साल पहले से कर रहा था।
1: बिल्कुल,
0: बहुत इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड हिंदी फिल्म म्यूजिक है।
1: जी जी,
0: तो उसको पसंद अगर मैं करता हूँ या जो भी लोग पसंद करते हैं वो कई कारणों से करते हैं, ये वो लिरिक्स बहुत पसंद आती हैं। अब पुराने जमाने में क्या था, जो कि लिरिक राइटर जो थे वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, और हिंदी फिल्म के जो राइटर्स थे वो सबसे ज्यादा, बाकी लोग इतने थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, चाहे वो डायरेक्टर्स भी ही क्यों ना हो। तो हमारी हिंदी फिल्म म्यूजिक को इतना पॉपुलर करने के लिए पीछे लिरिक राइटर्स का हाथ बहुत, और मैं आज एकदम पूरे दम से बात कहता हूँ कि गाने कविता की वजह से ज्यादा चलते हैं बजाय उसकी मेलेडी की वजह से।
1: क्या बात कही आपने, सच में।
0: जी बिल्कुल, लिरिक्स की वजह से ज्यादा चलते हैं आज, उनको हम याद ही इसलिए करते हैं बिकॉज लिरिक्स हमको समझ में आती हैं और हमारे दिल को छूती हैं, और डेफिनेटली उसके बाद एक मेलेडी कॉम्पोजिशन का हाथ तो होता ही है, लेकिन इट्स फर्स्ट थिंग आई थिंक इट इज ऑल पोएट्री।
1: जी बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कविता होती है वो गाने खूब चलते भी हैं, इसीलिए शायद हमें पुराने गाने कंठस्थ होते हैं और नए वाले गाने हम बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे भी लगते हैं तो भी हम याद नहीं कर पाते।
0: बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आजकल गाने को, उनको लगता है हम कोई बड़ी बात बात कह दें, अरे महसूस जिंदगी में किया नहीं, से बात करने से थोड़ी होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ इश्क करना सीख लेना, से इल्म से शायरी नहीं आती है, इश्क तो कर।
1: जी बिल्कुल,
0: तो पुराने राइटर से जैसे हिंदी फिल्म म्यूजिक राइटर बहुत ग्रेट ग्रेट राइटर्स हैं, लेकिन जो सब वो राइटर जिनकी फिल्मोग्राफी बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा भी है परसेंटेज, वो मजरूह सुल्तानपुरी हैं, वो आनंद बख्शी जी हैं, सिंपल राइटिंग है एकदम,
1: जो सबके
0: पिक्चर देखती हूँ उनकी फेहरिस्त सबसे ज्यादा है ना
1: जी।
0: तो उसका हिंदी फिल्म गाने लिखने का एक जो शऊर है वो सबको नहीं पास नहीं आता।
1: जी जी, तो इस समय आप जो नए दौर के बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए कुछ कहिए, और हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपकी फिल्मों के गाने कविता के रूप में आए, क्या आप ये वादा करेंगे, और नए बच्चों के लिए कुछ कहेंगे कि वो नए गानों से हिंदी गानों से कैसे जुड़े।
0: देखिए कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि मीडियोक्रेसी ज्यादा है, अच्छा काम तो कम ही होता है
1: जी,
0: बुरा काम ही होता है ज्यादा तो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोशिश करते रहो बस
1: जी,
0: कोशिश करते रहो, भले ही हम लोगों की संख्या कम हो लेकिन फिर इवेंचुअली हम ही लोग असरदार बनेंगे, तो इसलिए कोशिश करना मत छोड़ो, हार मत मानो कि यार ये गाने चलते नहीं है कौन सुनेगा मेरे गाने, नहीं लिखो वही, इवेंचुअली कुछ ना कुछ मिलेगा।
1: बिल्कुल, आज के दौर में भी इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे जैसे गीतकार जो कविता रचते हैं अपने गानों में और हम सब पसंद करते हैं।
0: तो ये दिक्कत ये है ना कि हमारे फिल्मों में अब गाने खत्म हो गए।
1: जी जी,
0: प्रॉब्लम ये है, हम क्यों ये सारे जो हम भी गाने सुन रहे हैं पुराने गाने हैं, नए गाना को तो कोई सुनता भी नहीं है
1: जी,
0: और पिक्चरों का जिस तरह से बजट हो गया है, जिस तरह की चीजें होगी, आप गाने आप रख नहीं सकते कि, तो गाने को रिकॉर्ड करने में पैसा खर्चा होता है, फिर उस गाने को पिक्चराइज करने में 3-4 दिन, अच्छा गाना हो तो 3-4 दिन तो जाएगा ही जाएगा
1: जी,
0: तो वो बजट में बहुत बड़ा एक पैकेट सा बन जाता है म्यूजिक, तो सबसे पहले सोचा म्यूजिक को हटाओ, बैकग्राउंड में रख दो गाने थोड़ा, यही हो गया है, सिर्फ बड़ी फिल्मों में गाने होते हैं, बाकी छोटी फिल्मों में तो बैकग्राउंड में कुछ गाना वो गाना चलते वलते भी नहीं है कुछ।
1: जी जी,
0: पहले जमाने में तो जैसे मैं हमेशा कहता था अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर भी आती थी कोई मुकद्दर सिकंदर, तो साथ में अमोल पालेकर साहब की भी गोलमाल आती थी, उसके गाने भी अच्छे थे।
1: जी जी बिल्कुल, और वो गाने याद किए जाते थे, गुनगुनाए जाते थे, और आज भी जो म्यूजिकल शो होते हैं चाहे वो अंताक्षरी हो निजी तौर पर या कहीं, तो वहाँ पुराने गाने ही गाए जाते।
0: और देखिए बात ये उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो बड़ी पिक्चर भी करते थे और वो छोटी पिक्चर भी, ये जानते थे कि छोटी पिक्चर का बजट कम होगा, आरडी बर्मन के आप मैक्सिमम गाने जो अच्छे हैं वो छोटी पिक्चरों के आप उठा के देख लीजिए।
1: जी जी बिल्कुल, तो
0: गोलमाल, बुड्ढा मिल गया, मासूम, ये सब पिक्चर छोटे बजट की पिक्चर है, फिर उन्होंने बड़ी रमेश सिप्पी शोले ये सब किया, लेकिन उनकी जो छोटी जो कम बजट की पिक्चर है, ऋषिकेश मुखर्जी की सारी पिक्चर बेमिसाल देख लीजिए, कितनी फिल्में देख लीजिए, सब में म्यूजिक उन्हीं का है ना।
1: जी बिल्कुल,
0: छोटी फिल्म है देख लीजिए आप।
1: तो यहाँ पर जिक्र गानों का है, तो कौन सा गाना आपकी पसंद का हम सुनवाए?
0: वो गाना बहुत अच्छा लगता है, वो फिर मैं लोगों को कभी इस बात का वादा कर लो, ओपी नैयर साहब का बहुत खूबसूरत गाना।
1: जी जी, वो गाना हम सुनवाते हैं, ये रात फिर ना आएगी
0: जी,
1: ये वाला गाना आपको आपने पसंद किया तो सुनते हैं।

0: विविध भारती के इस जश्न के मौके पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। तिग्मांशु जी, हमें बताइए कि एक फिल्म थी दिल से जिसमें आपने स्क्रीन प्ले किया,
1: डायलॉग्स
0: किए, और एक नाम है जानुसी, आपकी बेटी का नाम है। तो हमें ये पता चला है कि उसमें एक गाना है गुलजार साहब का लिखा हुआ, उस गाने से कहीं इंस्पायर होकर वो लिखा, क्या है कहानी, बताइए ना हमारे श्रोताओं को।
1: उसमें हुआ ये कि दिल से का जब म्यूजिक रिलीज हुआ तो उस पार्टी में सब लोग जो फिल्म से जुड़े हुए लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है, जो होते हैं
0: तो अजनबी गाना,
1: हाँ, तो उसमें सीडी मिला। पिक्चर अभी घर के गाने पब्लिक में रिलीज नहीं हुए थे
0: जी।
1: तो मैं उसका सीडी, अब जवानसी मेरी बिटिया पैदा हो चुकी थी, उसका नाम भी रख हुए थे, उसका नाम रखा गया था श्रेयसी। तो
0: आपकी वाइफ ने रखा था?
1: हाँ, घर वालों ने भी मिलके, मदर ने भी सब सब करके कि श्रेयसी। मेरी मदर क्योंकि संस्कृत की हैं वो, तो नामों को लेके उनका
0: जी जी,
1: हमारी फैमिली में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अब ये हुआ कि मैं घर में वो सीडी लेके आया, उसमें गाना शुरू हुआ वो छैया छैया के बाद ये, और फिर ये जब गाना शुरू हुआ है अजनबी तू भी, तो उसमें हम लोग सुन रहे थे, गाने तो कमाल थे दिल से के, खैर आज भी झटका दे देते हैं हर एक गाना उसका। तो उसमें वो जानसी कहाँ,
0: क्या बात है,
1: और वे तुलका लेकर रुको जानसी वर्ड, बेटिया का नाम जानसी, मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहता हूँ एक्चुअली बेटी बेटी का नाम गुलजार साहब ने रखा है।
0: क्या बात है। तो जानसी का असल में अर्थ क्या है?
1: जान जैसी सिंपल
0: जी। तो ये तो बिटिया की कहानी हो गई, और बिटिया भी फिल्मी दुनिया में आ चुकी है और आपकी तरह ही धमाके कर रही है।
1: तो अभी अभी जी अभी तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: आपको असिस्ट कर रही है?
1: हाँ।
0: ओ,
1: तो उसने 4 साल का कोर्स किया फिल्म मेकिंग का, और उसके बाद जैसे होते हैं बच्चे पहले शॉर्ट फिल्म बनाना है पापा ये सब जो सभी कब करते हैं वो करते रहते हैं। फिर मैंने कहा थोड़ा रियल फिल्म मेकिंग में आ जाओ। तो वो मेरे साथ है अभी
0: जी। कौन सी फिल्म बना रही है
1: अभी? तो मैं बना रहा हूँ, तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: अच्छा,
1: तो बनाएगी
0: जी। तो उसने भी ट्रेनिंग ली बाकायदा?
1: जी, मैंने कहा ना 4 साल की, उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया।
0: जी जी जी। तिग्मांशु जी, आपकी बहुत सारी फिल्मों में जिमी शेरगिल रहे हैं, और तो जिमी शेरगिल हालांकि अगर शायद वो देश से बाहर है, परदेश में है, नहीं तो आज आपके साथ वो यहाँ माइक के सामने होते और हमें लगता है कि और ज्यादा हमें रोचकता बढ़ जाती।
1: हाँ।
0: तो उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ खास बात बताइए।
1: जिमी से ये था कि मुलाकात, जो पहली फिल्म की मैं कास्टिंग कर रहा था तो मैं उसमें जिमी से मिला, उसको चाहिए था, उस जैसा जैसा है जिमी, बड़ा शरीफ लड़का, मेरा किरदार भी बहुत बहुत ही शरीफ सा था,
0: सलोने से दिखते भी हैं।
1: हाँ, उसमें कैरेक्टर का वो था दिखाना था कि किस तरह से एक सीधा साधा लड़का जो पढ़ाई में है और थिएटर भी करता है, किस तरह से एक उसकी सोहबत खराब हो जाती है, गुंडे के साथ वो रहने लगता है और उसका एक कैरेक्टर बदलता है, फिर इवेंचुअली फिर वो संभलता है। तो मुझको चाहिए था कि उस तरह का एक अच्छा शरीफ बच्चा। तो जिमी के, और ये बात मैं आपको 2026 साल पुरानी बता रहा हूँ,
0: तो जी बताइए। बिल्कुल।
1: हाँ, तो उस वक्त हम लोग भी सब यंग थे और जिमी तो और भी शरीफ लगता था तब। तो ये हुआ, फिर ये क्या भाई, जैसे याराना दोस्ती बढ़ गई, मिलना जुलना, तो फिर इतनी सारी फिल्में की हमने साथ में।
0: जी जी। और आपकी एक फिल्म है बुलेट राजा
1: जी,
0: उसके बारे में जरा बताइए, उसकी क्या कहानी, कहाँ से आपके मन में आइडिया आया बनाने का?
1: और आया तो वो यूपी के कुछ गैंगस्टर्स हैं, उनके उसमें से एक गैंगस्टर की कहानी से मैं थोड़ा उससे उसके कारनामों से आप थोड़ा
0: इंस्पायर हुए।
1: इंस्पायर नहीं, वो कारनामे विचलित भी कर देते थे आपको सुन करके, और ये भी करते थे कि कितना इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई सब करने की, है ना?
0: तो समाज के सामने सच्चाइयां लाना?
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समाज के सामने समाज में सच्चाइयां तो अखबार पढ़ के समझ में आ जाती है, मुझको अखबार थोड़ी बनानी, फिल्म बनानी, एंटरटेनिंग होनी चाहिए वो। तो मैं उस तरह का बदलाव वाला परचम लेके नहीं चलता हूँ, मेरी फिल्मों में दिख जाता है कहीं ना कहीं, और वही काम है फिल्म का,
0: बिल्कुल सच्चाई यथार्थ के करीब,
1: मतलब हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। तो उस एक किरदार को मैंने 2 में स्प्लिट कर दिया, तो एक बन गए हमारे सैफ साहब, सैफ अली खान, और दूसरा बन गए जिमी शेरगिल, क्योंकि मुझे दोस्तों की, मुझे दोस्ती बहुत प्यारी, एक ये रिश्ता होता है ना दोस्ती का,
0: जी बिल्कुल,
1: तो हासिल में डायलॉग भी, बाकी रिश्ते तो बने बनाए मिलते हैं, दोस्ती के ऐसा रिश्ता है जो आदमी खुद बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: आपके चाचा ताऊ मम्मी पापा तो मिले हैं, आपने क्या किया उनको कर, लेकिन दोस्त आप खुद बनाते हैं, तो आपका जो एक वो मोरालिटी का और गुड और बैड का जो सेंस आपके अंदर है, जो इनबॉर्न है, وہ آپ کو اس دوستوں کو اس ترازو پہ کھڑا توڑ رہا ہے کہ نہیں توڑ رہا ہے, یہ آپ کا خود کا اچیومنٹ ہے.
0: جی
1: تو اس لیے میں نے مجھے دوست کا رشتہ بہت اچھا لگتا ہے, تو اس لیے میں نے بلٹ راجا میں یہ دوست رکھے.
0: جی اور اسی فلم میں گلشن گروور بھی تھے.
1: ہاں باقی اس میں اور بھی کیریکٹرز ہیں. جی جی جی
0: تو سیف علی خان اور

0: ऐसे दिखाया था
1: जी,
0: तो,
1: जी.
0: तो बस वो काम हमने साथ में किया, उसके बाद हमने कभी साथ में काम किया नहीं.
1: यहाँ अब गानों का फिर से जिक्र करते हैं और बताइए आपको पुराने गाने ज्यादा पसंद है, हालांकि नए दौर के एक कामयाब डायरेक्टर पसंद करते हैं ज्यादातर पुराने गाने, तो यहाँ पर कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
0: आप वो दिल तो है दिल,
1: मुकद्दर का सिकंदर,
0: मुकद्दर का सिकंदर का वो कल्याण जी आनंद जी का ये भी बड़ा यूनिक सॉन्ग है
1: जी,
0: बहुत बहुत खूबसूरत गाना है.
1: आप चाहें तो इस गाने में सुर मिला सकते हैं.
0: नहीं,
1: आपने कई बार
0: लता जी गा रही, मैं गा सुन लिया.
1: सुनते हैं ये गाना.

0: दिग्मांशु जी विविध भारती के सजीव प्रसारण में हमारे सामने बैठे हैं और आज विविध भारती का जश्न हम मना रहे हैं। 70वां स्थापना दिवस है ये। और दिग्मांशु जी, आपने छोटे पर्दे के लिए भी बहुत काम किया है, लिखा भी है और एक्टिंग, आप कहते हैं कि एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक्टिंग भी की है। छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दोनों आपको कौन सा ज्यादा आकर्षित करता है?
1: हमेशा से बड़ा पर्दा ही आकर्षित किया है। तो छोटा पर्दे पर इसलिए कर रहे थे बिकॉज घर भी चलाना था।

0: तो और उस जब भी लेकिन हमने मैंने जब टीवी किया और मेरे साथ के जितने भी और हमारी क्लास के जितने डायरेक्टर हैं मेरी कक्षा के हम लोग हम उम्र हैं सब थोड़े थोड़े तो सबने टीवी किया है। बट उस वक्त टेलीविजन अच्छा होता था, भले हफ्ते में एक एपिसोड आता था, आप उसको बनाते थे आराम से तीन चार दिन में एक एपिसोड। अब उसके बाद वो डेली सोप हो गया, एक दिन में आधे दिन में बनाइए, तो उसकी क्वालिटी गिरती चली गई। बट एक्चुअली शायद उस तरह के टेलीविजन की डिमांड थी। तो हमने जब टीवी कर रहे थे तो अच्छा टीवी होता था। उसके बाद फिर जाना तो फिल्मों की ही तरफ था।
1: जी जी, तो आप अपने वाले दूरदर्शन की बात कीजिए। जब इलाहाबाद में रह रहे थे या उत्तराखंड में रह रहे थे तो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे, जो धारावाहिक होते थे, वो आज भी हम सबको याद हैं। तो वो कुछ यादें आप ताजा कीजिए।
0: बहुत सारे थे, कितने थे, मतलब बाप रे। श्याम बेनेगल जी का आता था के, फिर भारत एक खो जाता था,
1: फिल्मों का इंतजार होता था,
0: फिल्मों का हर संडे को इंतजार होता था, इलेक्शन होते थे, हम लोग छोटे थे, हम इलेक्शन से हमको लेना देना नहीं, इलेक्शन के टाइम पे फिल्में खूब दिखाई जाती थी, दिन में तीन तीन चार चार पिक्चर है, तो उसका हम लोग घर में बड़े लोगों को चुनाव के नतीजे पे थे, हम लोग को था कि पिक्चर कौन सी दिखी जाए। तो तब तो बहुत अच्छा टीवी था, बहुत ही खूबसूरत था।
1: जी जी, तो पढ़ाई जब आप करते थे तो घर वाले कहते थे, रोकते थे, मतलब कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हो फिल्म, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसी कोई याद?
0: इलाहाबाद में टीवी ना बहुत बाद में आया,
1: एशियाड जब शुरू हुआ था
0: तब आया था 82 में।
1: जी,
0: तो और जब आया था तो सबके घरों में टीवी होता भी नहीं था, धीरे धीरे आने लगा लोगों के। तो जब तक टीवी आया तब तक हम लोग के घर वालों के हाथ के बाहर हो चुके थे बड़े हो गए थे थोड़े तो, लेकिन उतना टीवी के सामने मैंने, छोटे छोटे जब होते तब बहुत गुजारा है, लेकिन उसके बाद नहीं था। आउटडोर एक्टिविटी हम लोग ज्यादा, जैसे मैंने कहा थिएटर करते थे, फिर कहीं बजाना है या फंक्शन में इधर उधर, तो घर के बाहर ही ज्यादा रहते थे, तो टीवी देखना इतना होता नहीं था।
1: थिएटर के लिए जब आपने शुरुआत की, मतलब थिएटर की ओर गए, एनएसडी किया, तो घर वाले आपके इतने सब पढ़े लिखे, माँ प्रोफेसर, पिताजी जज, तो कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हो फिल्मी दुनिया में? अमूमन ये सुना है कि डायरेक्टर, मतलब इस दुनिया में जो आना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है पढ़ो लिखो कुछ बनो, इस दुनिया में मत जाओ। तो
0: कभी कभी नहीं मना किया, कभी नहीं, इनफैक्ट हमेशा प्रोत्साहित ही किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मदर फादर दोनों फिल्में खूब, खुद भी बहुत फिल्में देखते थे, और शायद मैंने छोटा, सबसे छोटा होने का मुझे, मैंने उसका नाजायज फायदा भी उठाया, तो मुझे डांटा भी कम जाता था,
1: दुलारे बेटे थे,
0: दुलारा बेटा था जैसे मैंने, बड़े भाइयों में जो 7-8 साल का डिफरेंस था, तो जो भी होता था उनके साथ उधर मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो जब तक मैं एनएसडी में गया तब तक तो माय फादर हैड पास्ड अवे, गुजर गए थे, लेकिन मदर ने हमेशा जाओ।
1: तो मुंबई आए शुरुआत में, तो मुंबई की शुरुआती संघर्ष किस तरह के थे?
0: मैंने बिल्कुल कोई संघर्ष नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने वड़ा पाव खाया है और लोकल ट्रेन में चढ़ा हूँ और चढ़ा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ
1: तकलीफों से नहीं गुजरे,
0: बिल्कुल नहीं। मैं बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि घर वाला, मेरे भाई, मेरे मदर फादर मुझको ऐसे मिले जिन्होंने मुझको इस तरह की लाइन में भी पहले तो एनकरेज किया कि म्यूजिक बजाओ, करो थिएटर, कभी नहीं रोका। उसके बाद ड्रामा स्कूल गया था, मदर ने भी कभी नहीं रोका कि जाओ। मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ड्रामा स्कूल में
1: जी।
0: तो और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर मैं फिल्में कर रहा था, उस वक्त होता नहीं, फिर बैंडेड क्वीन भी तो शेखर जी के साथ में मुंबई आ गया था, जो मुंबई आया तो मैं ऑलरेडी शेखर कपूर का असिस्टेंट था, तो मुझे कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत, पैसा नहीं मिलता था वहां, लेकिन कहने को होता था कि आप शेखर कपूर के असिस्टेंट हैं, तो उनका नाम सब जानते थे, रिश्तेदार भी सब जानते थे, अच्छा शेखर कपूर, बाकी डायरेक्टर को नाम तो लोगों ने सुने नहीं थे, कि शेखर कपूर का नाम सब जानते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि वो डिग जाम के मॉडल भी हुआ करते थे, तो लोगों को पता था उनके असिस्टेंट हो, ठीक है
1: जी।
0: तो ऐसे करते करते मैं काम करने लगा। मैं जब यहाँ आया तो पहले मैं साल भर अपने बड़े भाई साहब के यहाँ रहा, वो नेवी में थे, ये जब इधर INS हमला जाते हैं
1: जी जी
0: वहाँ रहते थे, तो मैं साल भर उनके साथ था, तो कोई दिक्कत नहीं, नेवी में आप हैं, बढ़िया सा कमरा है, सब नेवल फैसिलिटी, नो प्रॉब्लम।
1: तो हमारे जो युवा श्रोता हैं जो फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ कहिए कि क्या हो तो मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, और क्या ना हो तो ना आए।
0: ये मैंने कल ही कुछ बच्चों को ये बोला कि जिंदगी में इस बात का एहसास अगर हो जाए कि मैं कर पाऊंगा कि हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा।

0: बिल्कुल
1: इसका एहसास आपको अगर हो गया ना, वो सबसे बड़ी चीज है। तब तो आप आपको लगे कि बॉस मैं कर पाऊंगा, तब तो आगे बढ़ो, लेकिन कहीं भी लग रहा है कि नहीं कर सकता तो एकदम पीछे मुड़ जाओ। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप डर के भाग गए, आप रणछोड़ नहीं कहलाओगे, आपने अच्छा करेक्ट डिसीजन। मैंने जब एनएसडी में, मैं थर्ड सेकेंड ईयर में था, मुझको पता चल गया था मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। वो मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था
0: जी। जी
1: नहीं तो मैं एक्टिंग करके आता तो मुझको बालाजी के एक आध सीरियल में कुछ एक आध रोल रोल करके जिंदगी खत्म हो जाती।
0: जी बिल्कुल। और आप तो हमें आपकी इतनी सारी फिल्में कैसे मिलती हैं तो, और आपकी एक फिल्म है साहब बीबी और गैंगस्टर, जिसका जिक्र श्रोता भी बार बार कर रहे हैं और हमने भी किया, उसका एक गाना है जो हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं। उस गाने से जुड़ी हुई कोई बात बताइए, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई, किस तरह से रिकॉर्ड हुआ गाना?
1: ये पार्ट टू का गाना है, जाती इसको पीयूष भाई ने गाया, पीयूष मिश्रा जी ने बहुत खूबसूरत गाया, और छोटा संदीप ने इसको कंपोज किया है। लेकिन कंपोज करते हुए ये ध्यान में रखते हुए कि ये, और संदीप नाथ एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर है, इलाहाबाद से भी उनका कनेक्शन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाड़ा से कई गाने, पान सिंह तोमर के भी गाने लिखे संदीप नाथ ने, तो ये सोच के कि ये भाई गाना जो है गाएंगे पीयूष भाई, तो उसी तरह से गाने का मीटर रूटर की जो उनको, जो उनके इमेज के साथ जाता है, लोग पीयूष भाई को ऑन स्क्रीन भी देखा है लोगों ने, तो आप सुनाइए गाना, बड़ा बहुत बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया गाना है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं
0: जी। सुनते हैं ये गाना।

0: 一生的故事。
1: आप भी राजा हैं और हम भी, मगर आपका खून आलसी हो चुका है, हमारा नहीं।

0: आप चाहते हो ना कि जंग हो, होगी, तो आसान होगी, आपकी कसम।
1: तो ये गाना हमने सुनवाया, तिग्मांशु जी आपकी फिल्म का गाना, और आपकी ओर से हमने नजर किया। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आप जो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं, तो क्या आगे भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनती रहेंगी आप द्वारा या अन्य फिल्म मेकर्स के द्वारा भी?
2: ऐसी कोई बहुत लीक से हटके नहीं बनाता हूँ। अगर आप मेरी फिल्मों की पूरी मेरी पूरी फिल्मोग्राफी देखिएगा तो मैं बहुत ही कमर्शियल, जो चलने वाली फिल्में होती है ना, उसी गली की फिल्म बनाता हूँ। कहने का थोड़ा अंदाज मेरा फर्क है सिर्फ, जिसको बोलते हैं एस्थेटिक्स, वो मेरा बाकियों से फर्क है।
1: जी,
2: बाकी
1: जी।
2: मैं कोई लीक, मैं लीक से बिल्कुल हटना भी नहीं चाहता। मेरे लिए फिल्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैज टू बी एंटरटेनिंग। वो कोई बोरिंग, स्लो पेस्ट, वो सब चीजें मुझे, मैं नहीं देखता भी नहीं, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, मैं कभी बनाऊंगा मैं।
1: जी जी।
2: तो वो एस्थेटिक्स जो है वो ओवर द इयर्स, एक तो आपके खुद की जिंदगी का एक्सपीरियंस से आता है, और फिर एक होता है आपका एक्वायर्ड विजडम, जिससे मैं आपसे मिलूंगा, आपकी, आपने कोई बात कही मुझसे, मैंने आपसे बात, मुझे लगा कि आप अच्छी बात कर रहे हो, किसी दोस्त से, किसी नए आदमी से मिलके, कोई फिल्म देख के, कोई नॉवल पढ़ के, आपकी जो एक्वायर्ड विजडम है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस तो जिंदगी में एक बार आके फिर टिक जाता है, फिर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते आप।
1: जी जी बिल्कुल।
2: आप एक सेट लाइफ में जीने लगते हो, फिर आप बहुत

0: कभी कभी एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन जो एक्वायर्ड विजडम है जो आपको बाहर चीजों से मिलती है उसका जो स्रोत है वो कभी कम नहीं होना चाहिए
1: जी।
0: वही आपके सारी कला, आप किस तरह से कहानी कहना चाहते हैं, सबके पीछे वही है
1: जी बिल्कुल।
0: तो जो एक्सपीरियंस करते रहेंगे वो फिल्म बनाते रहेंगे, जिन्होंने एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया कि मैं हो गया बॉस गॉडफादर अब तो मेरे बराबर कोई है नहीं, उसका पतन निश्चित है
1: जी बिल्कुल। 2026 की फिल्म है घमासान आपकी फिल्म
0: जी, जी।
1: तो उसमें कौन सा ऐसा प्रसंग है शूटिंग में जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा या कठिन रहा, या इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: कठिन तो कुछ नहीं होता
1: आपके लिए तो बिल्कुल नहीं।
0: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब जो काम आप कर रहे हैं आपने किया आपको मालूम है कैसा होना है, वहां पे कठिनाई होती है। अगर आप ऐसी जगह पे जैसे हमने वो घमासान की शूटिंग हमने की चित्रकूट के एरिया में जहाँ पे रामचंद्र जी ने 14 साल पे 11.5 साल अपने वनवास का वहां बिताया
1: जी।
0: और ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका बांदा वाला रीवा सतना मध्य प्रदेश यूपी इलाहाबाद के भी बहुत नजदीकी है
1: जी जी।
0: तो वहां पे एक बार जंगल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सड़क बहुत दूर नहीं थी, वहां पे पुलिस भी थी हमारे साथ, वो बैठे रहते थे अपनी जीप में, तो शूट कर रहे थे हम लोग। सडनली मैं आगे और लोकेशन देखते हैं जंगल में, थोड़ा सा एक दो असिस्टेंट के साथ बढ़ गया आगे जाके मैंने देखा कि एक पेड़ से एक मोटे सा नायलॉन का जो तार ऐसे रस्सी होती है वो ऐसे लटकी हुई थी, नीचे कुछ टूटी पट्टी चप्पल दो पड़ी हुई थी और उस नायलॉन के तार से कुछ फटे फूटे कपड़े ऐसे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आदमी था यहाँ या तो खा गए जंगली जानवर या क्या हुआ, सबमरी या तो मार के लटकाया गया है या खुदकुशी की है किसी ने। और देख के मैं सन्न रह गया, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि आदमी लटका होगा, उसको जंगली जानवर खा गए होंगे, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन बाकी उसका सब कुछ पड़ा था, चप्पल वही नीचे थी, कपड़े स्ट्रिंग्स लटके हुए थे और क्योंकि नायलॉन की थी वो टूटी भी नहीं थी, पक्की सी थी
1: जी।
0: अरे देख के ऐसे दहशत हो गई सबको कि ये क्या देख रहे हैं हम। तो उसका ये एक्सपीरियंस था। फिर हमने वहां देखा, वहां पे एक स्पॉटेड डियर था बड़ा सा मेल, उसको जंगली कुत्तों ने दौड़ा के हमारी आंखों के सामने मारा जंगल में। तो ये सब चीजें हाँ थोड़ा एक्साइटिंग हो जाती है फिल्म मेकिंग, तो मजा आ जाता है आपको
1: जी जी। डरावना भी लगता है लेकिन रोमांचक भी होता है। तो यहाँ क्या घमासान फिल्म का ही गाना सुनवाएं
0: जी? सुनाइए, धाएं धाएं
1: सुनते हैं।

0: तिग्मांशु जी, ये घमासान फिल्म का गाना था और काफी चर्चित है इन दिनों, ये गाना भी खूब बज रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसे हम वायरल कहना कहते हैं इंस्टा और फेसबुक के युग में। अरशद वारसी हैं इसमें और प्रतीक गांधी हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: नहीं, इस फिल्म के बारे में तो मैंने बताया, मैंने वहां पे एक लटका हुआ आदमी के मतलब अस्थि पंजर दिखाई
0: दिया। अब हमें बताइए कि एक लेखक और निर्देशक पढ़ता भी बहुत है और पढ़ना आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, जानकारी भी देता है। तिग्मांशु धूलिया जी क्या पढ़ते हैं अपनी फिल्मों के नजरिए से कि एक अच्छी फिल्म दे दर्शकों?
1: मैं फिक्शन ऑलमोस्ट नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं और चीजें पढ़ता हूँ, मतलब बायोग्राफीज और एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क या पॉलिटिक्स पे किसी ने या जियो पॉलिटिक्स पे किताबें, इस पे मैं ज्यादा इन चीजों को पढ़ता हूँ। फिल्मों पे कुछ किसी ने कुछ अच्छा नई किताब कुछ अच्छी लिखी तो पढ़ता हूँ, लेकिन फिक्शन मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बोरिंग।

0: लगता है फिक्शन बहुत
1: जी
0: मैं और तीन तीन चार चार किताबें एक साथ पढ़ता हूँ मैं, किसी का एक चैप्टर किसी का दूसरा चैप्टर ऐसे जी पढ़ता हूँ मैं। हाँ,
1: और अब बताइए कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए और आपकी आने वाली फिल्म, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है?
0: आने वाला प्रोजेक्ट, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिस जो कि आपको तो पता ही होगा, उदय प्रकाश जी जो हिंदी के बहुत महान लेखक हैं, उनकी एक कहानी है दिल्ली की दीवार, उसको मैंने अडेप्ट किया है। उसका नाम है वो फिर कभी दिखा नहीं।
1: क्या बात है।
0: और उसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब वही है, जब भी आप कुछ नया अलग तरह का काम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी अड़चने आती है, तो उन अड़चनों का सामना करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फिल्म शुरू कर दूँ।
1: जी जी। और अब हमारे श्रोताओं के लिए कुछ पैगाम दीजिए।
0: जो मैं क्या पैगाम दूंगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि पैगाम दूँ। सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सब अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर मैं उनको पैगाम दूंगा, जीते चलो, जिंदाबाद रहो, देश को आगे बढ़ाओ, सब लोग मिलके इस खूबसूरत दिन में, आज विविध भारती के 70 इयर्स पूरे हुए हैं, उसको याद करते हुए विविध भारती के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे जिंदगी में।
1: जी, आपकी पसंद का ये आखिरी गाने की झलक।

0: ये श्रोताओं से भी ये कहना है, तिग्मांशु जी विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और ये 1.5 घंटे कैसे बीत गए हमें तो पता ही नहीं चला। हमारे श्रोता भी यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। आप फिर आइए, वादा कीजिए कि विविध भारती के स्टूडियो में आप फिर आएंगे और आज के इस जश्न में आप शामिल हुए। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं जरूर आऊंगा, जल्दी मिलेंगे।
0: जी शुक्रिया।
2: तराने नए पुराने।

बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई।